103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। हमारी सभा में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है। थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि

0: नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन तीन देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुने चिंतन।

इस संसार में जैसे जैसे आप आत्मज्ञान का चिंतन करते जाओगे, वैसे वैसे आपको संसार की नश्वरता और परमात्मा की शाश्वतता का अनुभव होता जाएगा। जब तक मनुष्य उस परमात्मा की शक्ति से अनभिज्ञ है, तब तक वो नश्वर संसार की माया जाल में उलझता रहेगा, किंतु जैसे ही उसे इस परम शक्ति का बोध होने लगेगा, वो स्वयं ही आत्मचिंतन में लीन होकर जीवन के मूल रहस्यों को समझने लगेगा और लोभ मोह ईर्ष्या का त्याग करके सद्मार्ग का चयन कर लेगा। चिंतन के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आज के वंदना कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सभी मंगल कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री गजानन जी की इस भक्तिमय आराधना से।

शिव शंकर भोलेनाथ को सावन मास सबसे प्रिय है। जो कोई भी इस दौरान उन्हें भांग धतूरा और बेलपत्र से उनकी उपासना करता है, शिव उन पर शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं।

सत्संगति मनुष्य के जीवन को सही दिशा प्रदान करती है। गुरुओं की शरण में रहकर भजन कीर्तन करने से मन शांत व जीवन सरल बन जाता है।

श्रोता, इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस से एक और भक्तिमय प्रस्तुति मानस गान।

श्री राम और लक्ष्मण पिता के वचन पालन हेतु वनगमन के लिए तैयार हैं। इधर सीता अपने स्वामी का साथ छोड़ अयोध्या के महलों में रहने को सहमत नहीं। कहती हैं, स्वामी के संग में पशु पक्षी उनके कुटुंब होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। उदार हृदय वनदेवी और वनदेवता सास ससुर की भांति उनकी देखरेख करेंगे। कंद मूल और फल अमृत के समान आहार होंगे।

अभी आप सुन रहे थे मानस खान 103.94 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से हमारी आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। सात 7:10 पर आप सुनेंगे सुबह सुहानी कार्यक्रम। हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ ब्याग हम आपको सुनवाएंगे 7:40 पर। देश और दुनिया का ताजा हाल समाचारों से आप जान पाएंगे सुबह समाचार प्रभात में 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। इसके अलावा दिन में 1 बजे हिंदी समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, शाम 5 बजे, शाम 7 बजे, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे News@9 और सभा के अंत में रात्रि 11 बजे। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे गाने सुहाने प्रोग्राम और 9 बजे का समय रहेगा ईमेल बेस्ड प्रोग्राम गीतांजलि का। इसमें आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल एड्रेस रहेगा musicmaildshala@gmail.com। प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से आप सुन सकते हैं सुबह 9:20 पर, सुबह 11 बजे, दिन में 3 बजे, शाम 6 बजे और 7:45 पर। ये समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। गीतों का कारवां ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10 बजे और 10:30 पर आनंद लीजिए पहाड़ी लोक गीतों का। कार्यक्रम रहेगा पहाड़ों के सुर। 11:05 पर आज आप सुनेंगे महक पंजाबी कार्यक्रम और 11:30 पर हम आपको सुनवाएंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दोपहर 12 बजे सुनेगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए और 12:30 पर आप सुनेंगे सुनो सखी कार्यक्रम। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5 बजे तक आनंद लीजिए विविध भारती के कार्यक्रमों का। शाम 5:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे सायंकालीन भजन और 5:30 पर आप सुनेंगे युवा मंच कार्यक्रम। 6:05 पर सुनिएगा सुरमई सांझ कार्यक्रम। पर आज आप सुनेंगे मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम और 7:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे खेती बाड़ी कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे सुनेगा संसद समीक्षा और 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कुछ देशभक्ति गीत। रात 9:15 पर आप सुनेंगे एक ही कलाकार कार्यक्रम और 9:30 पर हिमाचली लोक गीतों का आनंद लीजिए गूंज पहाड़ों की कार्यक्रम में। रात 10 बजे आज आप सुनेंगे मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही पर आधारित रेडियो कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से ज्यादा नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्रवाई को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। इन तीनों देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मॉल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। स्पेन ने अतिरिक्त समय में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में यह खिताब जीता था और इस जीत के साथ ही स्पेन एक समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings. A report.
3: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 are also expected to be discussed during the monsoon session. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
2: On the eve of the monsoon session, government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
4: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
2: Lok Sabha Speaker Om Birla yesterday chaired the meeting of the Business Advisory Committee of the Lok Sabha. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other business proposed to be taken up during the session. Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. Delhi police has clarified that no permission has been sought or granted for any protest, march and procession in the New Delhi district in view of Parliament session beginning today. In a social media post, the police said that Section 163 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 is in force in the area. Hence, protest marches, processions, demonstrations and assemblies of five or more persons are strictly prohibited in the area except Jantar Mantar. Delhi police has appealed all the citizens to respect the law, refrain from participating in any unauthorized gathering and march, and cooperate in maintaining public peace, safety and security. Madhya Pradesh Cabinet has approved the Uniform Civil Code UCC Bill during a special meeting held at Jagdishpur, a historic town near Bhopal. Addressing a press conference, Chief Minister Mohan Yadav said that the UCC will provide equal opportunities and rights to all communities, and this law is a major step in that direction. He said the UCC bill does not violate the fundamental rights of the citizens. The bill will now be tabled in the monsoon session of State Assembly beginning today. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian team for securing four gold medals at the 58th International Chemistry Olympiad. In a social media post, Mr. Modi said that this was India's best ever performance at the prestigious global competition. He said the team's brilliance, dedication and passion for science have made the entire nation proud. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Uttarakhand today. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand, West Bengal, Odisha and parts of Northeast India during the next 2 days. Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to become FIFA World Cup 2026 champions. Spain's substitute Ferran Torres scored in the 106th minute to give his team a 1-0 win over Argentina in the final at New York, New Jersey Stadium last night. The victory secured Spain's second men's FIFA World Cup title and their first since lifting the trophy in 2010. In men's cricket, England beat India by 27 runs in the third ODI and seal a 2-1 series win at Lord's in London last night. England set a target of 388 runs for India. Chasing the target, visitors could score 360 runs for 7 in 50 overs. Jacob Bethel was declared player of the match and Joe Root was adjudged player of the series. And that is the end of this news bulletin.
5: हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इधर से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सुबह सुहानी।

0: कार्यक्रम
1: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: रिमझिम बरसता पानी, मौसम की रवानी, खिली खिली सी कलियां, महकी हुई सी गलियां, मौसम की ये बहारें, ये खूबसूरत नज़ारे एक नई सुबह, एक नई शुरुआत लेकर आई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की सुबह सुहानी कार्यक्रम में, जिसे आप सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला पर। जी हाँ दोस्तों, आज के सुबह सुहानी कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे इस सुविचार से। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। जी हाँ, जब कोई आपके दिल की बात बिना कहे समझ जाए, आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखे और जाने अनजाने भी आपके दिल को ठेस ना पहुंचाए, तो आप भी समझ जाइए कि किसी के लिए आपका रिश्ता कितना अहम है। बस आपको भी झट से आगे बढ़कर इन मीठे से एहसासों का हाथ थाम लेना है, फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत बनने वाली है। जी हाँ, तो यूं ही झूमते रहिए, गुनगुनाते रहिए और बने रहिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आनंद लीजिए सुबह सुहानी कार्यक्रम का इस मीठे से गीत के साथ।

जी हाँ श्रोताओं, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुबह सुहानी कार्यक्रम, और कार्यक्रम में आप बात करते हैं आज विशेष की, जिसमें जानेंगे आज के दिन की उन तमाम घटनाओं के बारे में जो इस दिन को और भी अधिक विशेष बनाती है। जुलाई 1942 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का पहला श्रम मंत्री नियुक्त किया गया। वहीं साल 1960 में सिरिमाओ भंडारीकर नायके जो है वो श्रीलंका की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई, जो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 20 जुलाई 1969 की बात करें तो इस दिन अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने अपोलो 11 के जरिए चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग ने तब कहा था, ये मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है लेकिन मानवता के लिए एक ये बड़ी छलांग है। बात करें 20 जुलाई 1990 की तो आज ही के दिन अंतरिक्ष यात्री जोमार्ट बेकेन ने अंतरिक्ष में पहला स्पेस वॉक किया था। वहीं 1997 में तिस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ। साल 1973 में मार्शल आर्ट के दिग्गज और अभिनेता ब्रूस ली ने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। वहीं 20 जुलाई 2017 में रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। सुबह सुहानी कार्यक्रम में अब आपको बता देते हैं आज के दिन जन्म में उन खास शख्सियतों के बारे में। तो 20 जुलाई 1929 में हिंदी फिल्मों के सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार का जन्म हुआ। वहीं साल 1950 में एक और जाने माने फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का भी जन्म हुआ। 20 जुलाई 1989 में माउंट एवरेस्ट

0: EMI के साथ साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। मारुति सुजुकी एरिना, खुशियों की चाबी।
1: सुबह सुहानी प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। चलिए श्रोता, तो बात करते हैं आज के दिन मनाए जा रहे कुछ खास दिवस के बारे में। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल चेस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। इस दिन की शुरुआत साल 1967 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा की गई। 20 जुलाई का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1924 में इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य शतरंज खेल को बढ़ावा देना, बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करना और दुनिया भर के खिलाड़ियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करना भी है। आपको बता दें कि आज और एक खास दिवस भी हमारे द्वारा मनाया जा रहा है। जी हाँ, आज है इंटरनेशनल मून डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस। जी हाँ, ये दिन हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा साल 2021 से मनाने की घोषणा की गई। ये दिन 1969 में नासा के अपोलो 11 मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन के चंद्रमा की सतह पर कदम रखने की ऐतिहासिक घटना की याद हमें दिलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लूनर एक्सप्लोरेशन और बाहरी अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में जो है वो जागरूकता बढ़ाना है। जी हाँ, ये वैश्विक उत्सव न केवल अतीत की सफलता की याद दिलाता है बल्कि भविष्य के लिए किए जाने वाले प्रयासों को और अधिक मजबूती से आगे बढ़ने की प्रेरणा भी हम सभी को देता है।

सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999

चलिए श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ प्रमुख समाचारों की, और आपको बता देते हैं उन हलचलों के बारे में जो हो रही है आप सभी के आसपास। जी हाँ, संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सभी राजनीतिक दलों को शांतिपूर्ण ढंग से सत्र में सुचारू रूप से चर्चा करने की अपील की गई है। वहीं बात करें खेल जगत की, तो आपको बता देते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में कल रात इंग्लैंड द्वारा भारत को 27 रन से हरा कर ये श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। वहीं बात करें फीफा वर्ल्ड कप की, तो कल रात स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में एक रोमांचक मैच में मौजूदा अर्जेंटीना को हरा कर जो है वो स्पेन ने ये प्रतियोगिता जीत कर इतिहास जो है वो कायम कर लिया है। चलते चलते बात करें मौसम की, तो आपको बता दें कि जो है वो मॉनसून की बारिशें पूरी तरह से जोरों शोरों से हो रही है। पूरे भारतवर्ष में जो है वो सभी राज्यों में बारिशों का ये सिलसिला जारी है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, नदियाँ उफान पर है, और आप सभी से हम यही अपील करेंगे कि घर से निकलते समय जो है वो अपना ध्यान रखें, नदी नालों के नज़दीक ना जाएं।

बने हुए हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ और इस वक्त आप सुन रहे हैं सुबह सुहानी प्रोग्राम। जी हाँ श्रोताओं, चलते चलते आप सभी को बता देते हैं कि आज सुबह 9 बजे आप सुनेंगे गीतांजलि कार्यक्रम, जो कि रहेगा ईमेल बेस्ड। और हमारे इस प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं अपने ईमेल्स के जरिए, साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, अपने मैसेजेस वहां पर भी भेज सकते हैं और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं।

0: श्रोता, इसी के साथ हमारा आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।
1: सुबह सुहानी
0: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:40 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम शुभ ब्याग। श्रोताओं, आज के शुभ ब्याह कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं शांति बिष्ट और कमलेश शर्मा की आवाजों में गाए इस लोक गीत के साथ।

श्रोतो, इसी लोकगीत के साथ आज का शुभ ब्याह कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है। देश और दुनिया का ताजा हाल समाचारों से जानने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं।

0: आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो समाचार प्रभात के लिए और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1-4-4-1-6 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
3: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
4: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से ये अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
5: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
6: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो तब तक दूसरे विवाह की परमिशन

0: मिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
1: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गाँव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन 3 देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे होर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
3: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
4: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया।

0: किया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली PV सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, PV सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, PV सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्य ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
0: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
0: And now, it's yours at an effective price of just ₹5.59 lakh. Yes, ₹5.59 lakh. Valid till 31st July only.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
2: Nexa.
3: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
4: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
5: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
6: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
7: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म है हिना।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म संगीत का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म है प्रेम रोग।

श्रोता, इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कानून की बात कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम कानून की बात। आइए श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज सुनते हैं सचिव सह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के श्री उमेश वर्मा से डॉक्टर हुकुम शर्मा की बातचीत। आज का

0: विषय है नालसा योजना 2015 के तहत आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी प्रसारित होगा। आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार, कानून की बात कार्यक्रम में मैं हुकुम शर्मा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम नालसा योजना 2015 यानी जिसमें आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए जो विधिक सेवाएं हैं उनका हम अध्ययन करते हैं या उनकी जानकारी हम तमाम श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक के माध्यम से। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानकारी देने के लिए आकाशवाणी स्टूडियोज में आज हमने आमंत्रित किया है श्री उमेश वर्मा जी को। आप सचिव सह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला हैं। उमेश वर्मा जी, आकाशवाणी स्टूडियोज में हम आपका स्वागत करते हैं।
2: नमस्कार।
1: ये जो नालसा है यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत ये नालसा शायद योजना है या क्या है, ये हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: देखिए, नालसा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एक वैधानिक संस्था है। इसका जो गठन है ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है 1987 का, इसके तहत किया गया है। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो इसका उद्देश्य यही है कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को निशुल्क कानूनी सहायता मिले और सभी तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित हो सके।
1: जी, तो वर्मा जी, जो नालसा है इसमें आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं जो हैं और जो 2015 की बात हम कर रहे हैं, ये क्या है?
2: ये जो योजना है ये 2015 में शुरू की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य है जनजातीय समुदायों के संवैधानिक और कानूनी अधिकार हैं उनकी रक्षा करना, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है और जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े उन्हें निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है।
1: तो इस योजना की जो आवश्यकता है ये क्यों महसूस हुई?
2: देखिए, हमारे देश में अनेक जनजातीय समुदाय दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें अपने अधिकारों कानूनों और सरकारी योजनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं हो पाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि वे भूमि या वन अधिकार हैं या विस्थापन की ऐसी स्थिति आती है कि उन्हें इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पर उन्हें इतनी जानकारी नहीं होती या उन्हें जानकारी का अभाव होता है। तो इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ये योजना का गठन किया गया।
1: जब भी कोई योजना बनती है ना तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य भी निर्धारित किया जाता है। तो अगर हम इस योजना की बात करें, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं?
2: इसके तीन मुख्य उद्देश्यों की बात हम बात करेंगे। पहला तो जो जनजातीय समुदाय हैं उनके लिए न्याय की पहुंच को सुनिश्चित करना है। दूसरा, उन्हें निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण विधिक सहायता प्रदान करना है। और तीसरा, उनको कानूनी अधिकार जो हैं उनके प्रति जागरूक करना है ताकि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता चले।
1: तो इस योजना में जो है ना कौन कौन व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं या हम कहें कि किन लोगों को लाभ मिलता है इस योजना में?
2: देखिए, देश में सभी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति इस योजना के तहत निःशुल्क विधिक सेवा सहायता पाने के पात्र हैं और महिलाएँ, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को इसमें प्राथमिकता भी दी जाती है।
1: उमेश वर्मा जी, इस योजना के अंतर्गत जो है ना जो सेवाएं उपलब्ध होती हैं
2: जी,
1: वो भी हमारे श्रोताओं को बता दीजिए कौन कौन सी सेवाएं रहती हैं इसमें।
2: इस योजना के तहत वैसे तो बहुत सारी सेवाएं हैं पर उसमें जो कुछ प्रमुख हैं
1: जी
2: वो हम बताते हैं। वो है उसमें जैसे निःशुल्क कानूनी सलाह या न्यायालय में कोई केस है इनका तो उसमें अधिवक्ता यानी वकील की सुविधा प्रोवाइड करते हैं हम। लोक अदालत के माध्यम से अगर कोई विवाद है उनका जो कोर्ट में पेंडिंग है तो उनका भी निपटारा किया जाता है। और साथ ही साथ सरकारी योजनाएं जो सरकार ने चलाई हैं और कानून जो अभी पारित हैं इनके फेवर में या उनके लिए, तो उसकी सारी जानकारी हम उनको देते हैं। यानी कानूनी मदद से जो भी हर सेवा एक ही जगह इस स्कीम में उपलब्ध है।
1: तो हमारे हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें या ओवरऑल भी हम बात करना चाहें,
2: हाँ जी,
1: तो जो जनजातीय समुदाय है ना हमारे, इन समुदायों के लिए जो कोई आप कहना चाहेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो कानून बनाए गए हैं कौन कौन से हैं?
2: वैसे तो बहुत सारे कानून हैं परंतु कुछ महत्वपूर्ण कानून की बात करें तो उसमें

0: वन अधिकार अधिनियम आते हैं, 2006 का वन अधिकार अधिनियम है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम है 1996 का, जिसे हम पिसा कानून भी कहते हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है 1989 का है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 का, और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 का भी है।
1: जी,
0: जी
1: तो जो वन अधिकारों की आपने बात की, वन
0: जी
1: अधिकारों के मामले में ये योजना कैसे मदद करती है?
0: देखिए, यदि किसी जनजातीय समुदाय को वन संसाधनों के उपयोग या वन अधिकारों से जुड़ी कोई भी समस्या आती है, तो उन्हें संबंधित कानूनों की जानकारी दी जाती है, कानूनी सलाह दी जाती है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर उनका कोई विवाद है जो कोर्ट में पेंडिंग है, तो उन्हें निशुल्क वकील की या अधिवक्ता की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
1: तो क्या जो
0: जी
1: कुछ विस्थापन के मामले हैं, उन मामलों में भी सहायता मिल सकती है
0: जी
1: इसमें?
0: बिल्कुल, विकास परियोजनाएं होती हैं सरकार की, या खनन या अन्य कारण, कोई भी कारण हो जिससे जनजातीय परिवार विस्थापित हो जाते हैं, तो उनके पुनर्वास या मुआवजा या कॉम्पनसेशन या कानूनी अधिकार के संबंध में पूरी सहायता दी जाती है।
1: किसी भी व्यक्ति को ना उमेश वर्मा जी,
0: जी
1: कोई न्यायिक व्यवस्था की भी हम बात जब करते हैं,
0: जी
1: कोई न्याय पाना हो
0: जी
1: या अपने अधिकारों के प्रति भी हम कह सकते हैं कि हमें जागरूक होना
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: आवश्यक है,
0: जी
1: लेकिन अगर कानूनी तौर पर हमें
0: जी
1: न्याय चाहिए और हम ये आशा रखते हैं कि
0: जी
1: हमें एक न्याय मिले, तो हमें मेरे ख्याल थोड़ा बहुत कानून की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है, थोड़ी बहुत,
0: बिल्कुल
1: इतनी नहीं
0: बिल्कुल
1: जितने हमारे जो इस विधा से जुड़े हुए लोग हैं उनको होती है। तो
0: जी
1: जो
0: जी
1: कानूनी जागरूकता है, इसमें कुछ शिविर वगैरह के भी कई बार हम सुनते हैं कि कुछ लगाए जाते हैं, तो इन शिविरों का क्या महत्व रहता है?
0: देखिए, इन जागरूकता शिविरों का बहुत महत्व है, और खासकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है वो समय समय पर ऐसे जागरूकता शिविरों का आयोजन करता है, और इन शिविरों के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है, सरकारी योजनाएं जो अभी चली हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है, कानूनी प्रक्रियाएं क्या है, कुछ कानूनी प्रक्रियाएं जटिल होती हैं, कुछ
1: जी
0: कानूनी प्रक्रियाएं जो है वो सरल भी होती हैं, परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ व्यक्तियों को ये नहीं पता होता कि मैंने किस अथॉरिटी को अप्रोच करना है,
1: जी जी
0: तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है, और इन शिविरों में इन सारे अधिकारों की, सरकारी योजनाओं की, कानूनी प्रक्रिया की, ये सारी जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में दी जाती है,
1: जी
0: ताकि कोई भी व्यक्ति जानकारी के अभाव में न्याय से वंचित ना रह पाए।
1: आपने लोक
0: जी
1: अदालत की भी अभी थोड़ी देर पहले बात की,
0: जी
1: तो जो जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं, इन लोगों तक भी क्या लोक अदालत के कुछ फायदे पहुंचते हैं?
0: जी बिल्कुल पहुँचते हैं। लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली है, इसमें जो दोनों पक्ष होते हैं वो आपसी सहमति से मामलों का शीघ्र और कम खर्च में समाधान किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो दोनों पार्टीज हैं वो आपस में समझौता करते हैं, और अगर उन्हें किसी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है तो न्यायालय में जज साहब भी होते हैं, वो भी असिस्ट करते हैं कि देखो आपका मामला इस तरह का है, तो आपका जो निपटारा है केस का वो इस दिशा में हो सकता है, और अगर आपको ये चीज़ मंजूर है तो इसको हम फाइनलाइज कर देंगे। तो अगर पार्टी इस चीज़ को मानती है तो दोनों पार्टीज आपसी सहमति से रिटर्न में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और उस बेस पे फैसला हो जाता है।
1: जी, लोक अदालत
0: जी
1: के बारे में तो यही कहा जाता है कि ना किसी की जीत ना किसी की हार,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: लोक
0: सही
1: अदालत
0: कह रहे
1: का
0: हो
1: है
0: आप।
1: यही आधार।
0: जी जी जी
1: तो
0: जी
1: ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो
0: सही।
1: एक जो है ना, इस योजना में पैरालीगल वॉलंटियर्स की भी बात आती है, तो इनकी क्या भूमिका रहती है?
0: देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि DLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो है वो पैरालीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से कार्य करती है। अब पैरालीगल वॉलंटियर्स कौन है? पैरालीगल वॉलंटियर्स वो हैं जो समाज से ही, किसी गांव से ही आते हैं, DLSA के साथ जुड़ते हैं, DLSA उन्हें प्रशिक्षित करता है कि कानूनी प्रक्रिया ये है। अब जैसे नालसा की हमारी 18 स्कीम्स हैं, 18 स्कीम्स हैं, 18 योजनाएं हैं, उन 18 योजनाओं के बारे में हम उन्हें प्रशिक्षित करते हैं, DLSA उन्हें बताता है कि इस तरह के ये स्कीम्स हैं, इनके बारे में आप लोगों को जागरूक करें, गांव-गांव में जाके जागरूक करें, और साथ ही साथ उनको प्रशिक्षित करते हैं इस टॉपिक्स पे कि जो सरकारी योजनाएं हैं जो सरकार ने अभी चलाई हैं, जो हिमाचल के खासकर हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई हैं, सबके बारे में हम उनको प्रशिक्षित करने के बाद वो फिर गाँव में जाके लोगों को अवेयर करते हैं।
1: जनजातीय क्षेत्रों में ना हमारी जो महिलाएं हैं
0: जी जी जी जी
1: उनके प्रति कुछ विशेष हमारे रीति रिवाज रहे हैं, कुछ परंपराएं रही हैं, तो अगर हम जानना चाहें कि क्या जो हमारे जनजातीय क्षेत्रों की जो बहनें हैं उनको इस योजना से जो कोई अगर कोई लाभ होता हो तो हमें ज़रूर बताएं।
0: देखिए, जनजातीय महिलाओं को घरेलू हिंसा, संपत्ति का अधिकार, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, मानव तस्करी, बाल विवाह और ऐसे ही अन्य कानूनी मामलों

0: में निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। और यहाँ निःशुल्क विधिक सेवा का मतलब है, जैसे अभी हमने पहले भी चर्चा की, कि बिना किसी खर्च के कानूनी सहायता और वकील या अधिवक्ता को उपलब्ध कराना होता है।
1: तो जो बच्चों के अधिकारों की अगर हम चर्चा करना चाहें तो क्या बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा भी इस योजना के तहत मिलती है
0: जी
1: उनको?
0: बिल्कुल, ये योजना जो है बाल श्रम, बाल विवाह, शिक्षा के अधिकार, बाल संरक्षण और बच्चों के विरुद्ध होने वाले आपराधिक मामलों से जुड़े जितने भी मामले हैं उसमें कानूनी सहायता और परामर्श दोनों उपलब्ध करवाती है। जी
1: हमारे जो जनजातीय क्षेत्र है वैसे दूरदराज के इलाके हैं आमतौर पर,
0: जी जी जी जी
1: वहाँ तक जो सरकारी योजना है कई बार देर सवेर हो जाती है उसमें पहुँचने में।
0: जी
1: तो
0: जी
1: यदि किसी व्यक्ति को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है
0: जी
1: तो
0: जी
1: इसमें कोई सहायता मिलती है क्या?
0: जी हाँ बिल्कुल, इसमें मिलती है। जैसे कि हमने अभी पहले भी चर्चा की कि PLVs के माध्यम से हम PLVs को बताते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं कि ये सरकारी योजना है और आप जाकर लोगों को अवेयर करें और जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें उनका लाभ सुनिश्चित करें।
1: तो नालसा द्वारा तो बिल्कुल पूरी तरह से कोशिश की जाती है कि जो उचित जो
0: जी
1: लाभार्थी हैं जिन तक लाभ पहुंचना चाहिए पूरी
0: जी जी
1: योजनाएं बनती हैं और भरपूर प्रयास भी किए जाते हैं।
0: जी बिल्कुल
1: लेकिन ये बहुत आवश्यक जो बात है,
0: जी
1: एक व्यक्ति को ये तो मालूम होना चाहिए कि
0: जी
1: अगर मुझे किसी योजना का लाभ लेना है तो मैं संपर्क कहाँ करूँ?
0: इसमें 3 अथॉरिटीज़ हैं जहाँ ये संपर्क कर सकते हैं। एक तो नज़दीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कर सकते हैं, जैसे कि शिमला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में भी कर सकते हैं, जो कि हमारे कसुमटी में स्थित है, शिमला में। तालुका विधिक सेवा समिति में भी संपर्क कर सकते हैं, जैसे सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटी है। जैसे रोहडू की बात करें तो वहाँ पर सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटी रोहडू है, तो वहाँ ये संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा एक निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर भी है, कोई व्यक्ति जो इन जगहों पर नहीं आ सकता, कि DLSA नहीं आ सकता, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नहीं आ सकता है, तो एक निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है 1500-15100, इसमें भी संपर्क कर सकते हैं। जी
1: आपने जो तमाम बातें बताई इससे हमें ये ज्ञात हुआ कि इस योजना के लिए शुल्क कोई नहीं देना है, क्या ये सही है?
0: बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है इसमें, बिल्कुल फ्री है ये।
1: तो जो आम नागरिक है इस योजना को सफल बनाने के लिए क्या अपना कोई योगदान दे सकते हैं?
0: जी आम नागरिकों से तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि यदि आपके आसपास किसी जनजातीय परिवार को कानूनी सहायता की आवश्यकता हो तो उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करने के लिए प्रेरित करें, और स्वयं भी जागरूकता कार्यक्रम जो DLSA समय समय पर ऑर्गेनाइज करता है उसमें भागीदार बने, उसमें भाग लें।
1: उमेश वर्मा जी, आप हमारे आकाशवाणी स्टूडियोज में आते हैं और तमाम जो बातें आप या
0: जी
1: जानकारियां जो हमारे श्रोताओं से साझा करते हैं उनके ऊपर लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि माननीय जज साहिबान जब आते हैं कार्यक्रम
0: जी
1: में
0: जी
1: तो वैसे ही लोगों में जो है ना एक
0: जी
1: विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है
0: जी
1: और कार्यक्रम को सुनकर वो लाभान्वित होते हैं। कोई आपका विशेष संदेश हमारे श्रोताओं के लिए?
0: श्रोताओं के लिए तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि न्याय प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। यदि आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति किसी कानूनी समस्या का सामना कर रहा हो तो अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क करें, या फिर हेल्पलाइन नंबर 1500 पर फ़ोन भी कर सकते हैं। जागरूक बने, अपने अधिकार जानें और आवश्यकता पड़ने पर विधिक सेवाओं का लाभ उठाएं। जी
1: धन्यवाद उमेश वर्मा जी, आप आकाशवाणी स्टूडियोज में आए और आपने नालसा योजना 2015 जिसमें कि आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं जो प्रदान की जाती हैं उनके बारे में आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारियां दी। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी।
1: श्रोताओं, इसी के साथ कानून की बात कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: कानून की बात कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नालसा योजना 2015 के अंतर्गत आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं। इस कार्यक्रम में श्री उमेश वर्मा से बातचीत कर रहे थे हुकुम शर्मा। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी प्रसारित किया गया।
3: अभी आपने सुना कानून की बात कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं।

जी हाँ, सुबह के 9 बज चुके हैं और घड़ी की सुइयां इशारा दे रही है कि ये समय हो चुका है आपकी सब पसंदीदा प्रोग्राम गीतांजलि का। जी हाँ, ट्यून इन है आप 103.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी धर्मशाला पर, फ्रिक्वेंसी वही जानी पहचानी सी जहां आपका भरपूर इंटरटेनमेंट होता है कुछ बेहतरीन से प्रोग्राम्स के साथ। तो चलिए भाई, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए जल्दी से आगाज कर लेते हैं आज के इस खास प्रोग्राम का, जहां आपके दिलों का हाल हम तक पहुंचेगा आपके भेजे गए मैसेजेस के जरिए। तो आप भी जल्दी से शामिल हो जाइए हमारे इस प्रोग्राम में अपनी ईमेल्स के साथ, जहां हम शामिल करेंगे आपके मैसेज आपके नाम के साथ और आपकी फरमाइश पूरी होगी यहाँ से एकदम लाइव ओनली ऑन धर्मशाला। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि आपको करना क्या है मेल करने के लिए। आपको हमारा ईमेल एड्रेस musicmail@gmail.com पर जल्दी से मैसेज करना है, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। फटाफट से हमें मैसेज कीजिए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपनी लोकेशन और भेज दीजिए उसे हमारे ईमेल एड्रेस पर। आपकी लोकेशन से हम ये जान पाते हैं कि आप कहाँ से हमें मैसेज कर रहे हैं, हमारे लिसनर्स कहाँ कहाँ से हमसे जुड़ रहे हैं। तो देर ना कीजिए, जल्दी से मेल कीजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत। ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर। और देखिए हमारे लिसनर्स जो है ना वो कितने एक्टिव है, जल्दी से जल्दी उनकी मेल्स जो है हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पर फ्लैश होने लगी है। और पहली मेल शामिल करते हैं जो कि हमें मिली है ग्राम दलहरा उत्तर प्रदेश से, और मैसेज करने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिका, बलवीर सिंह। ये सभी सुनना चाहते हैं हमारी पसंद का कोई सा भी गीत। एक पहेली लीला फिल्म से गीत सुनने के लिए हमें मेल भेजी है डबकी रोड अकोला से, मेल करने वाले हैं सुशीला देवी और इनके साथ है सदानंद मंदूरकर, और इनके साथ ही है कुमार गौरव, आरव और अर्पिता। गुड मॉर्निंग लिखकर हमें भेज रहे हैं दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू और इनके साथ ही है इंद्राणी माया साहू, और जी ये सुनना चाहते हैं हमारी ही पसंद का कोई सा भी गीत। हमारी पसंद से ही कोई सा भी गीत सुनने के लिए अगली मेल हम तक पहुंची है कटरा चांद खान मौर्य, मंदिर वार्ड रोड 11, पुराना शहर बरेली से। जी हाँ, ये मेल करने वाले हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, आरोही मौर्य और स्वाति मौर्य। तो चलिए इन सभी सुनने वालों की रिक्वेस्ट पर इन सभी के लिए प्ले करते हैं इस फिल्म से ये गीत। हमारे जितने से ज़्यादा लिसनर हमारे साथ जुड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे उन सभी की फरमाइश को पूरा करने के लिए।

जी हाँ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं ईमेल बेस्ड प्रोग्राम गीतांजलि। तो चलिए, आपकी मेल्स पहुंचने का सिलसिला जो है वो बरकरार है और अगली मेल को जल्दी से शामिल करते हैं और बताते हैं कि किस फिल्म का गीत सुनने के लिए हमें मेल किया है। मेल मिला है हमें जैन मंदिर कुरावली से और मेल करने वाले हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसमा अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी और मोहम्मद फैज़ अंसारी। इसके साथ ही अगली मेल जो हमें मिली है वो लिख रहे हैं कि किसी भी गीत में हमारी मेल को आप शामिल कर दीजिए। और ये मेल हमें मिला है बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरीत रमेश साहू और डुमराव बिहार से ही मेल किया है डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और इनके साथ ही है दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से हमें

मेल किया है श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य ने। सरीमपुर बक्सर से हमें मेल किया है राज एस डी अंसारी ने और इनके साथ ही है आसमा खातून। और ये सभी कोई सा भी गीत सुनना चाहते हैं, इसके साथ ही अगली मेल जो है वो हम तक पहुंची है। मेल किया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, मेल करने वाले हैं टीडी मल्होत्रा, रितिका मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, शुभचंद्र बजाज और इनके साथ ही है बिट्टा बजाज। ये सभी भी सुनना चाहते हैं हमारी पसंद से कोई सा भी गीत। और अगली मेल जो है वो हमें नज़र आ रही है। जी हाँ, ये मेल हमें किया है गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, मेल करने वाले हैं जयद मसरूर, इनके साथ ही है शायना हसन, अक्सा, नाजिया और इब्राहिम। ये सभी सुनना चाहते हैं हमारी पसंद से कोई सा भी गीत। तो चलिए हम अपने लिसनर्स को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे प्रोग्राम में शामिल होते रहिए और यहाँ से हम आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने की पूरी पूरी जो है वो शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये सुनिए।

प्रेम रतन धन पायो फिल्म से कोई सभी गीत सुनने के लिए एक और मेल हम तक पहुंची है। गांव फरासी जिला हिसार से मेल करने वाले हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी।

जी हाँ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम गीतांजलि, जो कि है आज ईमेल पर आधारित। आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं अपनी ईमेल्स के साथ और सुन सकते हैं अपनी पसंद का गीत। जी हाँ श्रोताओं, आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं अपनी ईमेल्स के साथ। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज पर भी आप मैसेज कर सकते हैं अपनी फरमाइश के साथ, और मेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस रहता है musicmaildishala@gmail.com। जल्दी से मेल कीजिए और शामिल हो जाइए हमारे आज के गीतांजलि प्रोग्राम में। बहरहाल 9:18 हो चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, और प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सुनेंगे गीतांजलि का शेष भाग। हमारे ये प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखे युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निवेशकों से प्रदेश में निवेश करने का किया आह्वान।

0: शुरू की जाएंगी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र पर मुहर लगने की संभावना है। बैठक में मुख्यमंत्री की बजट व विभिन्न स्थानों पर की गई घोषणाओं पर निर्णय होगा। इसके अलावा विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने व CBSE शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े विषय पर भी चर्चा होने की संभावना है। मॉनसून से निपटने की तैयारियों सहित MIS पर सेब खरीद की व्यवस्था में बदलाव के प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा होगी। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिनों के इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेताओं ने भाग लिया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से मुख्य मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा में भागीदारी करने और संसद की निर्बाध कार्यवाही सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सहयोग के बावजूद राज्य सरकार द्वारा केंद्र की आलोचना करना हास्यास्पद है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनेक योजनाएं केंद्र के सहयोग से चल रही हैं, मगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आभार जताने के बजाय केंद्र सरकार को कोसने में व्यस्त हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 320 मेडिकल PG की सीटें बढ़ाई गई हैं, जिसमें प्रति सीट केंद्र सरकार 1.5 करोड़ जबकि कुल 480 करोड़ रुपए दे रही है। उन्होंने कहा कि जीका परियोजना के तहत कुल ऋण का 90% केंद्र सरकार द्वारा चुकाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत जिला शिमला के हर ब्लॉक में भी आदर्श गांव विकसित किए जा रहे हैं। इन गांवों में किसानों को रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों पर निर्भरता कम कर प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
2: जिला के हर खंड में एक गांव चिन्हित किया जाएगा, जबकि टूटू खंड में 2 मॉडल विलेज स्थापित किए जाएंगे। इन मॉडल विलेज में कृषि, उद्यान, मत्स्य और पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं का संयुक्त लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए कार्य किया जाएगा। मॉडल विलेज में किसानों के खेतों पर प्राकृतिक खेती के प्रदर्शन प्लॉट विकसित किए जाएंगे, जहाँ जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत और अन्य प्राकृतिक कृषि पद्धतियों का व्यवहारिक प्रदर्शन किया जाएगा। इससे आसपास के किसान भी इन तकनीकों को सीखकर अपने खेतों में अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत विकसित होने वाले मॉडल विलेज प्राकृतिक खेती के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। यह पहल आत्मनिर्भर एवं टिकाऊ कृषि व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता के चलते राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक विभिन्न जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
3: बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में लोगों को नदी नालों तथा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी बारिश के रेड अलर्ट के चलते कांगड़ा, चंबा, मंडी और सिरमौर जिला प्रशासन ने आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश

0: जारी किए हैं। इसके अलावा मंडी व कांगड़ा जिला के शिक्षण संस्थान कल भी बंद रहेंगे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर किन्नौर जिला में कड़छम बांध में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। परियोजना प्रबंधन के अनुसार कभी भी बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा सकता है। इसके मद्देनजर लोगों से सतलुज नदी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार जाने के लिए नौहराधार चापधार सड़क के बन जाने से श्रद्धालुओं को चूड़धार पहुंचने में और आसानी होगी। हमारे सिरमौर जिला संवाददाता ने बताया कि इस सड़क को औपचारिक रूप से पास कर दिया गया है।
2: कई राज्यों के लोगों की आस्था का केंद्र शिरगुल स्थली चूड़धार पहुंचने के लिए अब श्रद्धालुओं को अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल चूड़धार जाने के लिए नौहराधार से चापधार तक जाने वाली 8 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इसे औपचारिक रूप से पास भी कर दिया गया है। सड़क की पासिंग के बाद नौहराधार चापधार मार्ग के अंतिम छोर तक बस का सफल ट्रायल किया गया है। अब इस मार्ग पर जल्द नियमित बस सेवा शुरू होने की भी उम्मीद है, जिससे चापधार क्षेत्र के ग्रामीणों और चूड़धार जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। 8 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर करीब 8 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
1: विधायक सुधीर शर्मा ने कहा है कि धर्मशाला में दूषित पेयजल व पीलिया के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। धर्मशाला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पीलिया के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और मरीजों को जोनल अस्पताल की बजाय टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल भंडारण टैंकों की सफाई व्यवस्था भी बदहाल है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, सभी जिला मुख्यालयों के लिए शुरू की जाएंगी हेलीकॉप्टर सेवाएं। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, हिमाचल में करें निवेश, उद्योगों को सस्ती बिजली उपलब्ध करवाएगी सरकार। सतलुज जल विद्युत निगम का 3 प्रोजेक्टों पर 6,500 करोड़ रुपए का दावा शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है, कंपनी ने तैयार की ऑडिट रिपोर्ट, इस सप्ताह सरकार को सौंपेंगे ब्यौरा। मौसम से जुड़ी खबर को दिव्य हिमाचल ने शीर्षक दिया है, हिमाचल में 2 दिन रेड अलर्ट, पठानकोट भरमौर राजमार्ग बंद। जबकि पंजाब केसरी की सुर्खी है, किन्नौर में फ्लैश फ्लड, चंबा में परियोजना की निर्माण सामग्री बही, 18 एचएएस अफसर बदले, 3 के आदेश रद्द, अमर उजाला की एक खबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निवेशकों से प्रदेश में निवेश करने का किया आह्वान। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज, विधानसभा के मॉनसून सत्र पर मुहर लगने की संभावना। संसद का मॉनसून सत्र आज से होगा शुरू, सरकार ने विपक्ष से सहयोग का किया आग्रह। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, सहयोग के बावजूद केंद्र को कोसने में मुख्यमंत्री व्यस्त। और प्रदेश में मॉनसून फिर सक्रिय, अधिकांश जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट, 4 जिलों में आज सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
3: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
4: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
3: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
4: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: जी हां, प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के शेष बचे हुए गीतांजलि प्रोग्राम में। श्रोता, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारा आज का ये कार्यक्रम है आप सभी की भेजी हुई प्यारी प्यारी सी ईमेल्स पर आधारित, तो जल्दी से शामिल हो जाइए अपनी मेल्स के साथ और सुनिए अपनी पसंद का गीत। मेल करने के लिए आपको टाइप करना है musicmail@gmail.com, उसे भेज देना है अपने नाम अपनी लोकेशन के साथ और साथ में लिख देनी है अपनी फरमाइश। विल प्रोग्राम में अगली मेल को शामिल करते हैं और आप सभी को बता देते हैं कि ये मेल हमें मिला है पटमा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, और मेल करने वाले हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और

राजेंद्र जी शाह, ये सभी सुना चाहते हैं हमारी पसंद का कोई सा भी गीत। इस प्रोग्राम में नेक्स्ट मेल हमें किया है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। मेल करने वाले हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। इसके साथ ही हकीकतपुरा मऊ से मेल किया है मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने। ये सभी सुनना चाहते हैं कैलाश खेर की आवाज़ में कोई सा भी गीत।

जी, प्रोग्राम में नेक्स्ट मेल को हम शामिल कर रहे हैं, जो कि हमें मिला है जिनेंद्र श्रोता शंघ परभणी महाराष्ट्र से। मेल करने वाले हैं रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार। तो चलिए, इन सभी के लिए हम प्ले करने जा रहे हैं, सुपर कूल है हम फिल्म से ये गीत। आप इसी तरह से अपनी मेल्स को हमारे प्रोग्राम में शामिल करते रहिए। सुनते रहिए गीतांजलि प्रोग्राम।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
0: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
0: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: बने हुए हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ और इस वक्त आप सुन रहे हैं ईमेल बेस्ड प्रोग्राम गीतांजलि। जी हाँ, लता मंगेशकर की आवाज में कोई सभी गीत सुनने के लिए हमें मेल किया है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। मेल करने वाले हैं हिमकेश्वर साहू, करण साहू और चंपा साहू। आदरणीय प्रस्तोता को नमस्कार, ये लिखकर हमें भेजा है सूर्यवाड़ी छत्रपति भंजाणी से और मेल करने वाले हैं प्रकाश बोरेगांवकर, सुषमा बोरेगांवकर, प्रांजलि, सोहम बोरेगांवकर, सदानंद, विराज, स्वीटी, अंशुमन और बेबी ओवी।

में अगली मेल हम तक पहुंची है मजनू का टीला से, और मेल करने वाले हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। इसके साथ ही जनकपुरी सहारनपुर से अगली मेल हम तक पहुंची है जॉन डिक्रेस्टो, रोजी डिक्रेस्टो, पर्ल और विलिस की। ये सभी सुनना चाहते हैं हमारी पसंद का कोई सा भी गीत। और अगली जो मेल हमें पहुंची है वो हमें किया है चंडीगढ़ से, मेल करने वाले हैं सनीश अनेजा और सतीश अनेजा, विमला अनेजा। तो चलिए इन तमाम लिसनर्स की रिक्वेस्ट पर हम इन्हें सुनाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत। आप यूं ही सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। जी हाँ, इस प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं अपनी मेल्स के साथ, और हमें मेल कीजिए musicmatedshala@gmail.com पर और सुनिए अपनी पसंद के गीत एकदम लाइव। एक और मेल इस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं जल्दी से, और ये मेल हमें किया है बदायूं से। मेल करने वाले हैं धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, जिनके साथ ही है डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता, डीके हिटलर और इनके परिवार के सभी सदस्य मिलकर हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और सुनना चाहते हैं कोई सा भी गीत हमारी पसंद पर। तो चलिए इन्हें सुनवाते हैं ये गीत।

जी हम प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गीतांजलि, और इस प्रोग्राम में अगली मेल जो हमें मिली है वो है, मेल करने वाले हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, और इनके साथ ही है बबलू और डब्लू। ये सभी सुनना चाहते हैं हमारी पसंद का कोई सा भी गीत। टाइगर जिंदा है इस फिल्म के लिए अगली मेल हम तक पहुंची है, और ये मेल किया है हमें गांधी चौक बाड़मेर से राजस्थान से, और मेल करने वाले हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से हमें दिनेश चौहान मेल कर रहे हैं। इसके साथ ही खलीफों की बावड़ी से हमें मेल किया है खुदा बख्श खलीफा ने। नमस्कार जी, ये लिखकर भेज रहे हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। इसके साथ ही अगली मेल हम तक पहुंची है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से मेल करने वाले हैं हरदेव मलिक, बलविंदर विर्क और इनके साथ ही है मिक्का विर्क। ये सभी सुनना चाहते हैं हमारी चॉइस से कोई सा भी गीत। अगली जो मेल हम इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं वो है भाटापारा छत्तीसगढ़ से, मेल किया है हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू ने। प्रोग्राम में नेक्स्ट मेल हमें पहुंची है सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से, मेल करने वाले हैं प्रकाश वोरेगांवकर, सुषमा बोरेगांवकर, प्रांजलि, सोहम बोरेगांवकर, सदानंद, विराज, स्वीटी, अंशुमन और इनके सभी परिवार के सदस्य। तो चलिए आप सभी के लिए हम प्ले करने जा रहे हैं टाइगर जिंदा है फिल्म से ये गीत। अगर आप भी अपनी फरमाइश से कोई गीत सुनना चाहते हैं तो जल्दी से अपने नाम, अपनी लोकेशन और फरमाइश के साथ भेज दीजिए म्यूजिक मेल dshala@gmail.com पर।

जी हाँ, स्टूडियो की घड़ी समय दिखा रही है ठीक 9:53, और ये जो है वो टाइम जो है वो बिल्कुल समाप्त होने जा रहा है, और आप जल्दी से मेल करके इस प्रोग्राम में अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। प्रोग्राम में नेक्स्ट मेल हम तक पहुंची है चमनपुरा उत्तर प्रदेश से। मेल करने वाले हैं भूकेश गौतम, सुनील गौतम, अमल गौतम, और बुद्धनगर खंडवा से नदीम भाई बहजोई और राजू की घड़ी वाले हमें जो है वो मेल कर रहे हैं। ये सभी सुनना चाहते हैं हमारी पसंद से कोई सा भी गीत। इसके साथ ही अगली मेल हमें मिली है नवाशहर पंजाब से। मेल करने वाले हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, और इनके साथ ही है डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम और बेबी वामिका और वाणी। ये सभी सुनना चाहते हैं SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में कोई सा भी गीत। और अगली मेल हमें मिली है गांव फरासी ज़िला हिसार से। मेल करने वाले हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, और इनके साथ ही इनके परिवार के अन्य सदस्य भी। ये सभी सुनना चाहते हैं कोई सा भी गीत। और अगली मेल हमें मिली है गुजरात गांधी ग्राम से। मेल करने वाले हैं प्रवीण सोनी, कमलावती सोनी, जगदीश चौहान, और एक और मेल जो है वो हमें नज़र आ रही है, ये हमें मिली है कस्बा वराड़ा ज़िला अम्बाला से। मेल करने वाले हैं रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर प्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकिरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल, और ये सभी भी सुनना चाहते हैं हमारी पसंद से कोई सा भी गीत। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमें मेल किया है अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक ने। इसके साथ ही हमारी पसंद से ही कोई सा गीत सुनने के लिए हमें मेल किया है VPO क्योलीधार तहसील चिच्योट डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से। मेल करने वाले हैं यशपाल और योगिता। तो चलिए इन तमाम लिसनर्स की रिक्वेस्ट पर इन्हें प्ले करते हैं ये गीत।

नमस्कार जी, ये लिखकर भेज रहे हैं पाडुक झारखंड से, और किसी भी गीत में हमारा नाम शामिल कर दीजिए। ये लिखकर भेजा है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद ने।

0: நீ ரொம்ப அழகா இருக்க.
1: ரொம்ப? ये रुम्बा रुम्बा क्या है?
2: जी हाँ दोस्तों, इसी गीत के साथ हमारा आज का ईमेल पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं पर संपन्न होता है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी धर्मशाला पर, क्योंकि कुछ ही पलों में शुरू होने जा रहा है प्रोग्राम गीतों का कारवां।

कार्यक्रम गीतों का कारवां सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की युगल स्वरों में गाए इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म मैंने दिल तुझको दिया। फैज अनवर की शब्द रचना है और संगीत है दाबू मलिक का।

0: हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।
1: श्रोताओं लीजिए अब सुनिए सुखविंदर सिंह और आयशा दरबार का गाया ये गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म किसना से। इस्माइल दरबार का संगीत निर्देशन और बोल हैं जावेद अख्तर के।

कार्यक्रम गीतों का कारवां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म अंदाज से। इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने और बोल हैं समीर के।

श्रोता, गीत संगीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लीजिए अब सुनिए उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू के मिले जुले स्वर में ये खूबसूरत सा गीत। फिल्म है दिल है तुम्हारा और शब्द रचना समीर की, संगीत है नदीम श्रवण का।

दिल है तुम्हारा, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म आशिक से। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजें हैं, और समीर के बोलों को संगीत में ढाला है संजीव।

मोहित चौहान के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीतों का कारवां यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं पहाड़ी गीतों और लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम की पहली पेशकश ये लोक भजन।

शक्तिचंद और साथियों का गाया ये लोक भजन अभी आपने सुना। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला लोकगीत, विशाल पठानिया और साथियों का गाया हुआ।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
1: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी।
0: बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
3: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
0: Nexa. सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
1: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी।
0: बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ।

0: और सुरक्षित शिशु की पहचान।
1: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर, और ये रहा कार्यक्रम का अगला लोकगीत, जिसे गाया है नीमो चौधरी और साथियों ने।

नेक सिंह ठाकुर के आवाज में गाए इसी लोकगीत के साथ है, आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 11 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निवेशकों से प्रदेश में निवेश करने का आह्वान किया है। चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश निवेश की दृष्टि से देश के सर्वोत्तम गंतव्यों में से एक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा और सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तीव्र गति से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है और भविष्य में सभी जिला मुख्यालयों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जाएंगी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र पर मुहर लगने की संभावना है। बैठक में मुख्यमंत्री की बजट व विभिन्न स्थानों पर की गई घोषणाओं पर निर्णय होगा। इसके अलावा विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने व CBSE शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े विषय पर भी चर्चा होने की संभावना है। मॉनसून से निपटने की तैयारियों सहित MIS पर सेब खरीद की व्यवस्था में बदलाव के प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सहयोग के बावजूद राज्य सरकार द्वारा केंद्र की आलोचना करना हास्यास्पद है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनेक योजनाएं केंद्र के सहयोग से चल रही है, मगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आभार जताने के बजाय केंद्र सरकार को कोसने में व्यस्त हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 320 मेडिकल PG की सीटें बढ़ाई गई हैं, जिस

0: में प्रति सीट केंद्र सरकार 1.5 करोड़ जबकि कुल 1,480 करोड़ रुपए दे रही है। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता के चलते राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक विभिन्न जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में लोगों को नदी नालों तथा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी बारिश के रेड अलर्ट के चलते कांगड़ा, चंबा, मंडी और सिरमौर जिला प्रशासन ने आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा मंडी व कांगड़ा जिला के शिक्षण संस्थान कल भी बंद रहेंगे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार जाने के लिए नौहराधार चाबधार सड़क के बन जाने से श्रद्धालुओं को चूड़धार पहुंचने में और आसानी होगी। हमारे सिरमौर जिला संवाददाता ने बताया कि इस सड़क को औपचारिक रूप से पास कर दिया गया है।
2: कई राज्यों के लोगों की आस्था का केंद्र शिरगुल स्थली चूड़धार पहुंचने के लिए अब श्रद्धालुओं को अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल चूड़धार जाने के लिए नौहराधार से चापधार तक जाने वाली 8 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इसे औपचारिक रूप से पास भी कर दिया गया है। सड़क की पासिंग के बाद नौहराधार चापधार मार्ग के अंतिम छोर तक बस का सफल ट्रायल किया गया है। अब इस मार्ग पर जल्द नियमित बस सेवा शुरू होने की भी उम्मीद है, जिससे चापधार क्षेत्र के ग्रामीणों और चूड़धार जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। 8 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर करीब 8 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: विधायक सुधीर शर्मा ने कहा है कि धर्मशाला में दूषित पेयजल व पीलिया के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। धर्मशाला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पीलिया के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और मरीजों को जोनल अस्पताल की बजाय टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल भंडारण टैंकों की सफाई व्यवस्था बदहाल है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
3: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम महक पंजाब दी।
4: महक पंजाब दी प्रोग्राम लेके मैं जतिंदर हाजिर हाँ। पंजाब दी मिट्टी दी खुशबू, लोग गीतां दी मिठास ते दिलां नूं जोड़दे सुर। लो जी, शुरू करदे हां महक पंजाब जी दा सफर एक सदाबहार लोक संगीत नाल।

0: संगीता हर रंग हर पल बदलता है, कदे प्यार दी गल, कदे जोश दी, ते कदी तान दी। इसे जोश नाल पेश है अगला गीत।
1: Then you know, it's a lover boy style.

0: प्रोग्राम महक पंजाबी जारी रहेगा एक कमर्शियल ब्रेक तो बाद।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
4: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
5: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
4: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
5: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
5: Don't

0: स्वास्थ्य उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मिट्टी दी महक, सुरां दी छो ते दिलां दी धड़कन, यही तो है पंजाब दी पहचान। लो जी, इस सोने एहसास नूं होर रंग दिंदा है एक होर प्यारा जिहा गीत।

अभी आप सुन रहे थे पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश काले इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
1: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है। लिखते हैं,
2: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
1: जी, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां

0: कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
1: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओं हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं।
1: इसका उत्तर है साथियों कंगारू के 4 पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो 5 पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के 5 पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
0: जी तो श्रोताओ अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है।
1: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पट्टियों पर पेंसिल नुमा नुकीले कील से लिखते थे जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
0: जी और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
0: जी और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं।
1: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
0: जी और हमारा अंतिम प्रश्न था जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया।
1: इसका उत्तर है साथियों जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओं मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा फेसबुक लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
0: तो श्रोताओं अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ उद्यान की ओर चलते हैं सरोवर के पास। कैसी शांति है। पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है। अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे जो शाक्य गणराज के राजा थे जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज तनिक ऊपर देखो कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
2: हाँ लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी सब ठीक हो जाएगा घबराओ नहीं। मैं हूं ना। न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है।
5: दोष ये

0: है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
1: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है?
2: प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।
1: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
0: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हो।
4: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
1: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
4: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
1: क्यों दे दो?
4: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
1: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
4: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
7: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
4: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
7: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
7: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
1: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
4: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
1: जी, पहले मारा था तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
7: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
8: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
7: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो क्या?

0: से आज्ञा है।
1: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
2: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
3: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा,
4: गद्दी पे बैठ कर सिद्धार्थ को मिलना चाहिए, इसके पास जा रहा
1: है। कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
5: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
2: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
1: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
6: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
2: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
0: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
7: महाराज की जय हो,
8: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
9: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

0: सर्वस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
1: पौराणिक उपनिषद छांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए है। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।

0: वत्स श्वेत केतु।
1: आज्ञा तात।
0: क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
1: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।
0: मैं समझाता हूं
1: जी।
2: उद्दालक श्वेत केतु को फूलों के एक उद्यान में ले जाते हैं।

0: श्वेत केतु। जी पिताजी। क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
1: हाँ हाँ तात।
0: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
1: नहीं तात।
0: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
1: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
0: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
1: जी तात।
0: उसी ब्रह्म को तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
1: जी।
0: उसी से उसका अनुभव होता है, किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।
1: जी पिताजी।
0: वो उससे दूर है, वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे

0: वत्स श्वेत केतु।
1: जीतात,
0: क्या तुम जानते हो हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: ये रहा फलतात।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी। पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी।
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
0: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वं तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है।

0: así.
1: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है, और यही सब में स्वयं मौजूद है।
0: तत् त्वम् असि, ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग
5: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। हाजिर हैं हम लेकर कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सोनू निगम और साथियों के गाए इस देशभक्ति गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म LOC कारगिल से।

कार्यक्रम में लीजिए, अब सुनिए फिल्म आया साबन झूम के। इस फिल्म का गीत आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

परदेस फिल्म का गीत अभी आपके रेडियो सेट्स पर है, के एस चित्रा और शंकर महादेवन के युगल स्वरों में, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में पिरोया है नदीम श्रवण ने।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और

0: की पहचान।
1: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
2: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के संग, और ये रहा कार्यक्रम का अंतिम गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं सखी सहेलियों का कार्यक्रम सुनो सखी।

सुनो सखी कार्यक्रम सुनने वाली सभी प्यारी दुलारी और न्यारी सखियों को मेरा यानी सीमा का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत हार्दिक अभिनंदन आप सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम में। जी सखियों, कैसी हैं आप और क्या है हालचाल आप सभी सखियों के? भाई हालचाल तो इन दिनों थोड़े भीगे भीगे से ही होंगे क्योंकि बरसात का मौसम पूरे यौवन पर है। इन दिनों कहीं झमाझम बारिश है तो कहीं काले घने बादल, कहीं उफनते नदी नाले हैं तो कहीं फिसलन भरे कठिन रास्ते। इसीलिए तो हमने कहा सखियों कि हालचाल इन दिनों थोड़े से भीगे भीगे से हैं। खैर सखियों, बरसात है, इन दिनों बारिश नहीं होगी तो कब होगी? बस आप सभी ने सावधान रहना है इस मौसम में, साथ ही इस मौसम की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी हमेशा तैयार रहना है। जी हाँ सखियों, बहुत से स्कूलों में इन दिनों छुट्टियाँ चल रही हैं और हमारी सखियों का काम थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि बच्चे आजकल घर पर हैं। अच्छा, घर पर हैं फिर उन्हें थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ खाना भी है और वो भी कुछ स्पेशल, कुछ अच्छा सा। और हमारी सखियां बेचारी परेशान हो जाती हैं कि उन्हें हर दिन क्या अच्छा बनाकर खिलाएं और क्या स्पेशल बनाएं उनके लिए। और हाँ सखियों, छुट्टियां हैं तो उन्हें घूमने भी जाना है। कभी नानी के घर के लिए बैग पैक करके तैयार हो जाता है तो कभी बुआ के घर जाने की तैयारी हो जाती है, फिर मौसी के घर को भला कैसे हम छोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर सखियों, बच्चों का बैग सारी छुट्टियों में यहाँ से वहाँ घूमता ही रहता है और साथ ही घूमती रहती हैं उनकी हॉलीडेज़ होमवर्क की कॉपियाँ, किताबें, पेंसिल बॉक्स और कलर्स भी। और फिर की कुछ यहाँ छूट रहा है तो कुछ वहाँ, काम हो ना हो लेकिन परेशानी ज़रूर हो जाती है और कई बार तो चीज़ें मिलती भी नहीं हैं। तो कोशिश करिए सखियों, पहले बच्चों का सारा काम हो जाए फिर कहीं घूमने निकलिए। और हाँ, जहाँ भी जाएं वहाँ के पारंपरिक खान पान बच्चों को ज़रूर खिलाएं सखियों। और क्योंकि आज है सोमवार और आज हिमाचल संस्कृति के अंतर्गत बात होगी सखियों खान पान की ही। जी हाँ, अलग अलग प्रांत हमारे, अलग अलग ज़िले, और वैसा ही अलग वहाँ का खान पान और रहन सहन। हर क्षेत्र की अपनी एक अलग भूगोलिक विशेषता और उतने ही विशेष वहाँ के व्यंजन, वहाँ के पकवान। तो आज बात सखियो जायके की, पहाड़ों के स्वाद की, और हमारे हिमाचल प्रदेश के व्यंजन सखियो अपने अनोखे स्वाद और पारंपरिक विधि के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जानेंगे कुछ खास व्यंजनों के बारे में, लेकिन उससे पहले जी हाँ, पहाड़ों की ही सुंदरता को बयां करता ये खूबसूरत सा गीत सभी सखियों की नज़र

जी सकी हो। बहुत खूब कहा है कि प्यार से रास्ते बिल्कुल कट जाते हैं और ज़िंदगी बहुत खुशनुमा बन जाती है जब किसी का साथ हो, और हमारी सखियां तो हमेशा हमारे साथ हैं और हम भी सखियों के साथ ही हैं, तभी हर दिन कुछ नई जानकारी और कुछ नए तराने लेकर आ जाते हैं कार्यक्रम सुनो सखी में। तो सखी, जितने सुंदर पहाड़ों के नज़ारे उतने ही स्वादिष्ट यहाँ के खान पान होते हैं, साथ ही हमारी दादी नानी के हाथों से बने पारंपरिक व्यंजनों की तो बात ही अलग है। फिर चाहे वो बबरू हो, चिल्टे हो, पत्रोड़ू हो या फिर कोई और मीठा पकवान, जी हाँ सखियों, अलग ही स्वाद है इन पहाड़ों के व्यंजनों का। और चलिए पहले बात कर लेते हैं कांगड़ा की। तो यहाँ की कांगड़ी धाम का स्वाद भला कौन कैसे भूल सकता है। विवाह शादियों और धार्मिक अवसरों पर परोसा जाने वाला ये पारंपरिक भोज है। इसमें चावल, मदरा, राजमा, तेलिय माह, खट्टा कड़ी और मीठे चावल शामिल होते हैं। मांसाहारी लोगों के लिए खट्टा मीट, जो कि दही और पारंपरिक मसालों से तैयार किया जाता है, वो भी काफ़ी मशहूर है। साथ ही यहाँ के बबरू, पत्रोड़ू जो कि अरबी के पत्तों से बनते हैं और खासकर बरसात के मौसम में ही इन्हें खाया जाता है, सखियों, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और बात करें खीर, जो कि स्थानीय चावल और दूध से बनाई जाती है, शीरा, जी हाँ, जिसे देसी घी में बनाया जाता है और बहुत ही लोकप्रिय ये व्यंजन है। शीरा की अगर हम बात करें सखियों, तो कम से कम एक हफ्ता गेहूं को भिगोकर रखा जाता है, उसके बाद उसे पीसा जाता है और फिर बनता है ये शीरा। तो जितना मुश्किल इसको बनाना है, उतना ही जब इसे ये बन जाता है तो उतना ही ये स्वादिष्ट हमें जो है वो खाने में लगता है सखियों। कांगड़ा के बाद रुख कर लेते हैं चंबा की ओर, जहाँ का मदरा जो कि दही और घी की ग्रेवी बनाकर राजमा से बनाया जाता है, ये भी बहुत मशहूर है। और राजमा भी यहाँ के लोकल ही होते हैं, यानी ये लोग उन्हें अपने खेतों में ही उगाते हैं। बात करें एक और खास रेसिपी की, तो वो है बिच्छू बूटी का साग, जिसे बहुत ही सावधानी से तोड़ा जाता है और फिर उबाल कर इसे बनाया जाता है। अदरक लहसुन का तड़का लगाकर एक अलग ही स्वाद से तैयार होता है ये साग सखियों। अच्छा, मदरा भी बना लिया, खा भी लिया, साग का स्वाद भी हमने ले लिया, लेकिन एक और स्वाद अभी रह गया, जी हाँ, और इस स्वाद के बिना अधूरा है हमारा हर खान पान, जी हाँ, चंबा चुख। इसे हम कैसे भूल सकते हैं सखियों, लाल मिर्च की ये तीखी चटनी है जो हर थाली का स्वाद बढ़ा देती है। सूरत और सीरत दोनों में ही बेहतरीन ये चटनी आपके मुंह में पानी ला देगी सखियों। तो जब भी मौका मिले इन पकवानों को खाने का, बनाने का, तो मौका छोड़िएगा मत सखियों, क्योंकि ये पारंपरिक व्यंजन ना सिर्फ हमें पहाड़ों पर मिलते हैं, बल्कि अगर हम इन्हें सीखें तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो इन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अब कुल्लू मनाली की तरफ और ले लेते हैं आनंद वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध सिड्डू और अखरोट की चटनी का। जी हाँ, गेहूं के आटे से भाप में पकाया जाने वाला ये पारंपरिक व्यंजन, जिसे सिड्डू कहा जाता है, इसे घी, चटनी, दाल या फिर अचार के साथ खाया जाता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। साथ ही सखियों, यहाँ बनते हैं लाल चावल और राजमा भी। एक और पकवान यहाँ बनाया जाता है जिसमें दाल को पीसकर रोटियों में उसकी स्टफिंग की जाती है और फिर उसे उन्हें तल लिया जाता है। और जब भी कोई विशेष त्यौहार या पर्व होता है तो ये इस तरह की नमकीन रोटियों को तैयार किया जाता है। साथ ही साथ सखियों, यहाँ दाल के पकौड़े भी बनाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में बड़े कहा जाता है, जी हाँ। और अब थोड़ा मंडी की तरफ रुख कर लेते हैं, तो मंडी में भी मंडी की कचौरी बहुत ही प्रसिद्ध है। उसमें भी दाल की स्टफिंग रोटी के बीच में जाती है और किसी भी चटनी के साथ इसे परोसा जाता है, तो बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है सखी आज के इस कार्यक्रम में। और उम्मीद है कि आपको भी भूख शुरू हो गई होगी, वैसे भी दोपहर का समय है तो आज मौका है बिल्कुल, और दस्तूर भी है, इतने अच्छे अच्छे पकवान हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, तो क्यों ना आपके किचन में भी कुछ स्पेशल आज बन जाए। बिल्कुल सखियो, आप तैयारी कर लीजिए, साथ ही साथ एक प्यारा सा गीत सुनिए और हम आते हैं गीत के बाद।

जी सखियो, सचमुच इतना कुछ है हमारे हिमाचल में कि हम बताते बताते थक जाएंगे, लेकिन आप खाते खाते नहीं थकेंगे। हर प्रांत हर क्षेत्र की अपनी विशेष पकवान और व्यंजन है जो अपने आप में अपनी संस्कृति को समाए हुए हैं, आज भी अपनी पहचान जो है वो बनाए हुए हैं। जी हाँ, कहते हैं कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, यानी थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद पानी का स्वाद बदल जाता है, स्थानीय लोगों की बोली भाषा का लहजा बदल जाता है, और यही विविधता यही बदलाव हमारे भारत की सांस्कृतिक भूगोलिक और भाषाई संस्कृति का प्रतीक भी है। हिमाचल में चाहे कांगड़ा हो, चाहे मंडी हो, कुल्लू हो या चंबा हो, या फिर हो किन्नौर की पहाड़ियाँ, जी हाँ, हर किसी का अपना अपना खान पान है, बोलियाँ हैं, रीति रिवाज हैं, एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन यही विविधता सखियों हमारी एकता का प्रतीक भी है और साथ ही साथ हमारी अनूठी संस्कृति का परिचायक भी। किन्नौर की बात कर ही दी है तो किन्नौर जो कि पहाड़ी जलवायु, स्थानीय कृषि और अपने पारंपरिक जीवन शैली से जुड़ा हुआ एक हम ये कह सकते हैं ज़िला है, और यहाँ के भोजन में जौ, गेहूँ, राजमा और कुटू, साथ ही साथ फाफड़ा, आलू और यहाँ की स्थानीय सब्जियों का यहाँ प्रयोग होता है, और सिड्डू भी यहाँ बनता है, साथ ही चिल्टा, एक तरह की ये एक रेसिपी है जो कुट्टू के आटे से बनती है और इसे बहुत पतला घोल इससे तैयार किया जाता है और फिर तवे पे फैलाकर एक पतली सी रोटी तैयार की जाती है। साथ ही साथ किन्नौरी राजमा बहुत प्रसिद्ध है, थुपका भी यहाँ खाया जाता है और अखरोट, सेब और चिलगोजा यहाँ के प्रसिद्ध फल हैं सखियों। तो भांति भांति के पकवान हैं और हर ज़िले की अपनी एक विशेषता है सखियों, और आज लगभग कोशिश हमने की कि जो वहाँ के यानी कहीं भी किसी भी क्षेत्र के जो विशेष पकवान हैं उनको आपके साथ साझा हम करें, और एक छोटी सी कोशिश थी क्योंकि कार्यक्रम बहुत छोटा है और विरासत हम ये कह सकते हैं इतनी ज़्यादा है, इतनी समृद्ध है कि इसे एक कार्यक्रम में तो हम शामिल नहीं कर पाते हैं, तो अगले किसी कार्यक्रम में फिर से शामिल करेंगे यही जानकारी। फिलहाल आगे है सेपू बड़ी की बात। जी हाँ, खान पान में सेपू बड़ी बहुत ही खास ये एक खान पान है सखियो, और सेपू बड़ी जी हाँ ये उड़द की दाल और पालक के मेल से बनाई जाती है, इसे भाप में पकाया जाता है, फिर तला जाता है और बाद में दही और मसालों की गाढ़ी ग्रेवी में इसे पकाया जाता है। इसका चटपटा स्वाद बहुत ही हम ये कह सकते हैं अलग तरह का होता है, और सबसे पहले बता दें आपको किस तरह से बनता है ये। सबसे पहले भिगोई हुई उड़द की दाल को दरदरा पीस लें, इसमें बारीक कटा पालक, अदरक, मिर्च का पेस्ट और नमक मिलाएं। अब एक थाली को तेल से चिकना करें और इस मिश्रण को उसमें फैला दें और 15-20 मिनट तक भाप में पकाएं। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे छोटे चकोर टुकड़ों में काट लें और इन्हीं टुकड़ों को गर्म तेल में सुनहरा होने तक भून लें। और सखियों, आप एक भारी तले वाली कढ़ाई में सरसों का तेल, साथ ही इसमें हींग, मेथी दाना, तेज पत्ता, बाकी सारे खड़े मसाले इसमें डाल दें। अब इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर और भी जो भी मसाले आप डालना चाहें वो इसमें डाल सकती हैं, और जब मसालों से तेल अलग हो जाए तो धीमी आंच को कर दें थोड़ा सा, और उसमें फेंटा हुआ दही डालें और दही को लगातार चलाते रहें जब तक कि वो तेल ना छोड़ दे। जब दही में उबाल आ जाए तो इसमें तली हुई बड़ी आप डाल दें और आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा गर्म पानी आप इसमें डाल सकते हैं, और बस थोड़ी देर इसे पका लें और गर्मा गर्म मसाला इसमें जो है आप गर्म मसाला डाल सकते हैं, और बस हरे धनिया के साथ इसे आप सजा सकते हैं। अलग अलग तरीके से ये

बनती है सखियों, कुछ लोग इसमें टमाटर की प्यूरी भी यूज़ करते हैं, है ना, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालते हैं, प्याज भी डालते हैं, और खासकर सेपू बड़ी जो है वो मंडी की बहुत प्रसिद्ध है। तो जब भी मंडी का आप रुख करें, जब भी आपका मन करे कि मंडी की सैर पर जाया जाए, तो ज़रूर वहाँ का सेपू बड़ी का जो मदरा है ज़रूर ट्राई करें और वहाँ से रेसिपी सीखें भी कि वो किस तरह से बनाते हैं। चलिए अब फिर से रुख करते हैं गीत संगीत की तरफ, और ये रहा कार्यक्रम का अंतिम गीत।

जी सखियों, तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले किसी कार्यक्रम में कुछ नई बातों, कुछ नए तरानों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।

बता दें सखियों, इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया विपिन कुमार ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जतिंदर पाल सिंह। इसी के साथ अपनी रेडियो सखी सीमा को दें अनुमति। प्यारी सखियों, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर का 1:00 को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 25 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे को उठाया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर में पहले स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा, जिसके बाद राज्यसभा को 2 स्थगित किया गया। अभी लोकसभा की कार्यवाही जारी है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर 2 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। 3,74,000 से अधिक पांडुलिपियां पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे, आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।
1: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक, सेवा तीर्थ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट भी खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता

0: करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत भी करेंगी। श्रीमती मुर्मू तीन देशों मॉल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है, जिससे ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल कर अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The monsoon session of Parliament began today when the Lok Sabha met at 11 a.m. The House paid tributes to six of its former members who passed away recently. They were Nadendra Bhaskara Rao, Omvati Devi, Sudhanshu Seel, Major General Bhuvan Chandra Khanduri, retired, K.P. Dhanapalan and Pyare Lal Sankwar. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. When Lok Sabha Speaker Om Birla tried to take up the question hour, the opposition members, including from the Congress and Samajwadi Party, raised the issue of paper leak of NEET examination. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in running the House and maintain decorum, but the opposition members continued their protest, which led to adjournment of the Lok Sabha till 12 noon. When the House met after the first adjournment at 12 noon, the opposition members continued their protest. Amid ruckus, the chair adjourned the House till 12:30 p.m. When the House met after the second adjournment at 12:30 p.m, the opposition members again continued with their protest over NEET paper leak issue. The presiding officer, Dilip Saikia, tried to take up the zero hour, but the opposition members continued their protest. Mr. Saikia said there should be healthy debate in the House and people have sent their representatives to raise important issues. The opposition members did not pay heed to the chair's advice. It led to adjournment of the House till 2 p.m. In the Rajya Sabha, the proceedings began with the oath of the newly elected and re-elected members. Leader of the opposition, Mallikarjun Kharge, tried to raise the issue of NEET examination paper leak. However, due to uproar, the protest continued. The chair adjourned the House till 2 p.m. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal today introduced the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha. The bill aims to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance to increase the number of Supreme Court judges from 33 to 37. Prime Minister Narendra Modi has said, be it the monsoon or the monsoon session, if both are proactive, they prove to be highly productive. Speaking to the media before beginning of the monsoon session of Parliament, he said, when both are productive, it leads to the welfare of the nation and the well-being of all living beings. Mr. Modi said it is a powerful message that the potential and aspirations of the country's youth are as boundless as space itself.
2: Monsoon ho ya monsoon satra, agar dono proactive ho, to bahut hi productive hote hain. Aur dono ko productive hote hain, to desh ka kalyan hota hai, jeev matra ka kalyan hota hai. Aur isliye hum yahi prarthana karte hain कि मानसून भी प्रोएक्टिव रहे, मानसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे।
1: Union Minister Dr. Mansukh Mandavia has said over 8 crore manuscripts have been digitized under the Gyan Bharata mission. Replying to supplementaries in the Lok Sabha today, Dr. Mandavia said the Modi government has launched the Gyan Bharata mission to preserve and digitize manuscripts to facilitate research and make them accessible to the public. Special traffic arrangements have been put in place in New Delhi during the monsoon session of Parliament 2026, which began today. In a social media post, the Delhi Traffic Police said heavy vehicular movement and traffic restrictions are expected in and around the Parliament complex. According to the advisory, the public have been advised to avoid roads such as Rafi Marg, Motilal Nehru Marg, Maulana Azad Road, Parliament Street, Ashok Road, Talkatora Road, Rajendra Prasad Road, Janpath and adjoining stretches, as traffic diversions and congestion are likely in these areas. In Assam, the flood situation has worsened as incessant rain continues across the state, affecting thousands of people in several districts of Upper Assam. Several rivers in Upper Assam are reported to be flowing above the danger level. And with that, we end this news bulletin.
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
4: जो आपके दिमाग में, आपके जेहन में आ रही है, जो फिल्म चली गई है जिसमें बेटा या बेटी बाहर चले गए हैं पैसा कमाने के लिए, तो हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं, अर्पण फिल्म है। जी बिल्कुल, उसमें एक और फिल्म का नाम कई लोगों ने लिया है, जो फिल्म का नाम है नाम। एक और फिल्म है नाम, फिल्म के बारे में कई सारे लोगों ने कहा है, बरसात फिल्म का जिक्र किया है कि ये बरसात फिल्म का गीत है, बिल्कुल सही। जी हमारे एक और श्रोता ने बताया कि स्वदेश फिल्म है जिसमें शाहरुख खान अपने गाँव को छोड़कर जाता है, बिल्कुल सही बात है, गाँव को छोड़कर जाते हैं, अपनों को छोड़कर जाते हैं, फिर वापस भी आते हैं। इसके साथ हमारे श्रोताओं ने और भी कई सारी फिल्मों के नाम दिए हैं, जैसे पूरब और पश्चिम, नाम, देश परदेश, ऐसी कई सारी फिल्मों के नाम यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे गाँव में या छोटी जगहों पर जब उन्हें पेट की भूख पूर्ति नहीं कर पाती है, उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो उस समय लोग यहाँ से चले जाते हैं कहीं और। स्वदेश के बारे में फिर से जिक्र हुआ है और जी हमारे एक श्रोता ने लिखा, उन्हें फिल्म नाम याद आ रही है जिसमें संजय दत्त पैसा कमाने के लिए भारत से बाहर चले जाते हैं और गलत हाथों में भी पड़ जाते हैं। देश परदेश में प्राण इंग्लैंड के लंदन शहर में जाते हैं। जी उनकी खोज में देवानंद भी लंदन जाते हैं। जी ऐसी कई फिल्मों के नाम आप सब ने बताए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक और हमारे श्रोता बड़े अच्छे से लिख रहे हैं कि यह कड़वी सच्चाई है कि कई बार लोग रिश्तों में पैसे और भौतिक सुखों के बदले भावनात्मक जुड़ाव और सम्मान और अपमान अपनापन के लिए तरसते हैं। अक्सर ऐसा इसलिए होता है कि पैसा एक सीमा तक आराम और सुरक्षा दे सकता है, लेकिन यह प्यार, भरोसा, मानसिक शांति नहीं कर ही सकता। लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते हैं, लेकिन रिश्तों में संवाद, अपनापन गायब हो जाने के कारण वे भीतर से अकेले पड़ जाते हैं। जी बिल्कुल सही, हमारे एक और श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि इंसान अक्सर थोड़ी सी कमाई और लालच के लिए अमूल्य पारिवारिक संबंधों और अपनों का साथ पीछे छोड़ देता है, धन कमाने के लिए घर आंगन छोड़ देता है, वही बात है, परदेसी हो जाता है। परंतु हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, उन्होंने एक पद्यांश का जिक्र किया है महाकवि सूरदास की रचना का, कि उन्हें भ्रमर गीत की याद आ रही है। जी ये बहुत खूबसूरत भ्रमर गीत है, जब उद्धव गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों से इस बात के बारे में बातें होती हैं कि कृष्ण क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, तब गोपियाँ जब उस भ्रमर गीत में अपनी व्यथा को कहती हैं, उस व्यथा को यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद अवधि वधि हमसों हरि आहार चली जात। और इस बात में वह बड़े अच्छे से बता रही हैं कि उद्धव यानी उद्धव दादा उस परदेसी कृष्ण की बातें क्यों कह रहे हो, जो एक बखवाड़े का वादा कर कर गया था और अब तक एक महीने से अधिक बीत गए हैं और वो अभी तक आया नहीं है। तो यहाँ पर जब परदेश कोई चला जाता है और परदेश से वापस नहीं आता है, तो वहाँ पर वो गया क्यों था, इसके पीछे के भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी, उन्हीं बातों में से एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, वह प्रश्न मैं आपको बस छोड़ देती हूँ कि क्या हर बार एक इंसान केवल पैसे कमाने के लिए जाता है? आपके अपनों में से कितने लोग शहर से बाहर गए हैं किसी उपलब्धि के लिए या देश हित के लिए या कभी किसी और काम के लिए? बताइएगा ज़रूर। और इसके साथ मैं आपको अगला गीत सौंप रही हूँ। ये गीत बहुत अच्छा है, बता दीजिए कि इस गीत

के गायक कलाकार कौन है, जल्दी से बताइएगा। और बताइए कि आपके में से अपना कोई गया होगा, हम दूसरे पक्ष से बात कर रहे हैं, देख कर देखिए कि आपके उस ओर से कोई बाहर गया होगा, उसके जाने का कारण क्या था।

हम सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत जो कि फिल्म आवारा में आवारा से लिया गया, शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। और हमने आपसे पूछा था कि बता दीजिए इसके गाइस गीत के गायक कलाकार कौन है, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लता मंगेशकर। और हम उसमें जोड़ देते हैं उनके साथ गाया साथियों ने। चलिए हम आपसे पूछ रहे थे कि अगर कोई बाहर जाता है तो आप बताइए, अगर कोई आपकी पहचान का है जो कभी बाहर गया है तो बताइए कैसा क्या हुआ। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे अपने तो बहुत लोग विदेश गए पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वहाँ रहते हुए नागरिकता मिलने के बाद घर वापस आने को तैयार नहीं है, क्या कर सकते हैं, पलायन भी जीवन का एक हिस्सा है। ठीक है, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बेटा कमाने के लिए बाहर गया था, बहुत दिनों तक विदेश में रहा, टिक नहीं सका, वापस आ गया और अब तो बहू भी जाने को तैयार नहीं है। जी अच्छी बात है। हमारे श्रोता ने लिखा कि फिल्म आप लौट चले में एक लड़का विदेश जाता है, लेकिन वहाँ सब कुछ मिलने के बाद अंत में वापस आने के लिए मजबूर हो जाता है। जी हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से उत्तर दिए कई सारी चीज प्रश्नों के, और इन प्रश्नों में से एक प्रश्न मेरी ओर से आपके लिए आता है कि विचार करते हैं हम सब मिलकर कि जो अपना घर छोड़कर, अपना वतन छोड़कर, सीधे देश छोड़ने की बात करते हैं, जो अपना घर छोड़कर, जो अपना देश छोड़कर बाहर जाते होंगे, उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना होता होगा, जल्दी से बताइएगा कि उन्हें क्या क्या परेशानियां होती होंगी। आप ये परेशानियां हमारे साथ साझा कीजिए,

तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, और बता दीजिए इस गीत में को हमने किस फिल्म से चुना है, यानी ये गीत किस फिल्म से है, उस फिल्म का नाम आपको बताना है। और तब तक ये भी बताइए कि जो लोग विदेश जाते हैं उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता होगा, किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा।

हम सुन रहे थे गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। हमने आपसे पूछा था ये किस फिल्म का गीत है, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, अर्पण फिल्म का यह गीत है। और हमने आपसे और भी एक बात पूछी थी कि परदेश जाकर कितनी समस्याएं होती होंगी, तो हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से उत्तर दिए हैं कि जब परदेश जाते हैं तो अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहाँ जाकर सारे काम उन्हें स्वयं करने पड़ते हैं। जी, ये बात भी सही है। उसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने ये बात भी बताई कि वहाँ जाते हैं, वहाँ मिलता तो सब कुछ है लेकिन अपनापन नहीं मिलता। आपने बात तो बिल्कुल सही कही है कि अपनापन तो नहीं मिलता है। इसके साथ ही कई बार हमारे श्रोताओं ने बताया कि कई बार विदेश जाते हैं तो दूसरी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह उनके देश के नहीं हैं, तो एक व्यक्ति अपने देश के व्यक्ति का पहले साथ देगा ना कि आपका, तो ये समस्याएं भी, कुछ इस तरह की समस्याएं भी शायद उनके जीवन में आती होंगी। ये सारी समस्याओं के साथ एक और बहुत बड़ी समस्या हमें लगता है कि उनके जीवन में आती होगी, जिसके बारे में भी हमारे श्रोता ने लिखा है कि अपनत्व। उसने लिखा है कि उनके परिवार के लोग, बहुत से लोग परदेश में हैं लेकिन जब जब वो भारत आते हैं उनमें अपनत्व की कमी का एहसास लगता है। ऐसा नहीं होता, कई बार क्या होता है जब लोग दूर रहते हैं ना, तो हम और वो एक ही तार पर यानी एक ही बात पर नहीं चल रहे होते हैं, तो कभी कभी जब वो बातें समझ में नहीं आती तो अपनत्व शायद कम लगने लगता होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं, हम बहुत पहले दिल्ली मुंबई नौकरी के लिए गए थे और असफल रहे। घर से 2 किलोमीटर दूर गोरखपुर में प्राइवेट नौकरी करके दिन गुजारे। हफ्ते में बार बार घर आना होता था, फिर हम परदेश के का अनुभव क्या बताएं। जी बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब बाहर गए थे तो उन्हें सबसे ज़्यादा पापा मम्मी और अपने दोस्तों के साथ पौधे पक्षियों की भी बड़ी याद आती थी, और उससे भी अधिक जिस बेटे को यहाँ छोड़कर गए थे। जी, और उन्होंने ये भी लिखा कि उन्हें 1 बजे की विविध भारती की गीतमाला की भी बड़ी याद आती थी। जी, अब हम उसे सुरीला सफ़र के रूप में आपको सुनाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हर बरस भारत से करीब 3 करोड़ 30 लाख लोग विदेश की यात्रा करते हैं। 2 करोड़ लोग घूमने जाते हैं, कुछ लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, कुछ काम धंधे के सिलसिले में जाते हैं। जी, हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बताया कि उनका भाई जो है वो बाहर पढ़ने गया था अमेरिका, और उसके बाद फिर वो वापस आ गया, कुछ कुछ कारण हुए और उन्होंने अपने जीवन में कई सारे काम किए। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि इसी विषय को लेकर कि जब जो परदेसी होता है उसकी ज़िंदगी जो दो दुनिया जो है वो दो में बटी रहती है, एक दुनिया वहाँ जहाँ वह अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा होता है और दूसरा जहाँ वह लौट कर आना चाहता है। हर त्यौहार, हर खुशी, हर दुख में सबसे ज़्यादा अपने घर की कमी महसूस होती है। उसे मालूम है कि मेहनत से किसी अपने की आँखों में खुशी आएगी और परदेसी शरीर से भले दूर हो जाए लेकिन उसका मन हमेशा अपने गाँव, अपने शहर, अपने लोगों के बीच में रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब परदेश जाने वालों की तो बहुत सारी बातें हमने कर ली और परदेश जाने वालों की समस्याओं के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अभी हमको ये बता दीजिए कि अगला जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं उस गाने को संगीतबद्ध किसने किया है, यानी संगीतकार कौन है। पर इसके साथ एक बात और बताइए कि अगर आपको कभी मौका मिलता, कभी एक चांस मिले, एक मौका मिले अपने देश से बाहर जाने का, वापस आने का भी चांस है, यानी आप बाहर जा रहे हैं तो आप वापस भी आएंगे कुछ ही दिनों में, कुछ दिनों के लिए परदेसी होने का मौका मिले,

आप अपने देश से कहाँ जाना चाहेंगे, किस जगह पर घूमने जाना चाहेंगे या किस जगह पर जाकर परदेसी बनना चाहेंगे, जरूर से बताइएगा। तब तक सुनिए ये गीत और बताइए इसके संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे ये गीत मिस्टर नटवरलाल फिल्म से, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल। और हमने आपसे पूछा कि इसके संगीतकार कौन हैं, तो आप सबने सही बताया, इस गीत के संगीतकार राजेश रोशन हैं। और हमने आपसे पूछा कि अगर आप कहीं जाना चाहेंगे, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे उत्तर दिए कि हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि अब हमें विदेश नहीं जाना, बहुत दूर है, हाँ अमृतसर, कश्मीर और मुंबई आना है विविध भारती में। जी ज़रूर, स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे कोई परिवार के जन हैं जो फ्लोरिडा, अमेरिका में और कतर में रहते हैं, तो वो देश वो घूम कर आए हैं, तो ऐसी कोई उनकी ख्वाहिशें ज़्यादा दिख नहीं रही हैं। इसके साथ ही कई सारे लोग का ये कहता है इंग्लैंड जाना है, कोई कहता है स्विट्ज़रलैंड जाना है, किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी को कहीं जाना है, सभी को सभी जगह जाकर घूमकर आना है और घूमकर वापस आना है, है ना। ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक विचार रखते हैं कि जब हम बाहर जाएं तो वापस आएं। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे पति जब छोटे उनके पति जब उनके बच्चे छोटे थे तब वो NGC में बहुत अच्छी जॉब करते थे, तो वो चले गए, तो बच्चों के साथ सास ससुर देवरनंद के साथ रह गए, उनको भी बहुत तकलीफ़ हुई और बच्चों के साथ सबके साथ रहने के बाद भी तकलीफ़ तो इनको भी हुई, तो उनका कहना है कि बाद में उनके पति वापस आ गए तो घर बड़ा खुशनुमा हो गया। हमारे एक श्रोता ने बहुत ही आवश्यक बात लिखी, वो लिखते हैं कि जब बाहर जाते हैं तो ट्रेन में रिजर्वेशन की समस्या आती है दीपावली आदि त्योहारों के समय अपने परिवार तक लौटने के लिए। जी हाँ, ये समस्या भी, जब भारत के लोग भारत में ही किसी और शहर में काम करते हैं तो ये समस्या तो आती है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं विदेश में खाने पीने की समस्या होती है, अमेरिका में 97% लोग मांसाहारी हैं और भारत में शाकाहारी लोग निवास करते हैं, और मांसाहार और शाकाहार की तो समस्या है, उसके साथ एक और समस्या है स्वाद की, हमारा स्वाद अलग है, उनका स्वाद अलग है, हम मसालों भरा भोजन करते हैं और वहाँ पर वैसा भोजन मिलता नहीं, तो शायद समस्या तो होती है। और हमारे एक श्रोता लिख रही है इस चीज़ के लिए बड़ी सकारात्मक बात लिखी है कि उनकी बेटी जब बाहर गई थी उसे घर की बड़ी याद आती थी, धीरे धीरे नए माहौल में ढल गई, अब छोटी बड़ी समस्या का सामना खुद करती है और आत्मविश्वास भी उसका बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है, ये सारी बातें तो चल रही हैं, लेकिन एक बड़ा गंभीर सा प्रश्न मेरे दिमाग में आया है अभी आपसे बात करते करते, हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों को पढ़ते पढ़ते, कि जब भारत के शिक्षित बच्चे विदेश जाते हैं तो विदेश जाने के बाद उनका क्या होता होगा, यानी हमारे भारत का क्या नुकसान होता होगा और भारत का क्या लाभ होता होगा, यानी हमारे देश का क्या लाभ या क्या नुकसान हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दीजिए इस गीत के साथ कि हमारे देश का जब पढ़ा लिखा बच्चा विदेश जाता है तो हमारे देश का क्या लाभ है और क्या हानि है, ज़रूर से बताइए। और ये गीत मैं आप सबको सौंप रही हूँ और मुझे विश्वास है कि ये गीत तो आप सबकी लिस्ट में पक्का होगा और सबकी पसंद का ये गीत है, सुरेश वाडकर और बेला की आवाज़ में ये गीत है, समीर के बोल है, नदीम श्रवण का संगीत है, बताइएगा फिल्म कौन सी है।

जी, आप सबने सही पहचाना, हम राजा हिंदुस्तानी फिल्म का यह गीत सुन रहे थे। और हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि आप अगर भारत का जो शिक्षित बच्चा है वो अगर विदेश जाता है तो क्या होता है, इसका उत्तर हम आपसे सुनना चाहेंगे, ज़रूर से इसका उत्तर दीजिएगा। और बहुत खूबसूरत सा बात है कि हमारे श्रोता बता रहे हैं कि वो जब विदेश, वो शाकाहारी हैं विदेश, क्या उन्हें भारत में भी दिक्कत आती है कई बार। अच्छा, अब हम विदेश को छोड़कर जब हम अपने ही देश में आते हैं और अपने गाँव को छोड़कर बाहर जाते हैं, तो जाने के लिए या आप कभी उस जगह पर काम करने के लिए गए होंगे, तो कई सारी चीज़ें भी तो नई नई मिलती है ना, कई सारे रिश्ते मिलते हैं, कई सारे लोग मिलते हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ मिलती हैं, उन सब संस्कृतियों के साथ भी जुड़ जाते हैं। और जो विदेश जाकर रहते हैं वो लोग भी अपने जीवन में बड़ी अलग तरीके से अपनी एक दुनिया सजाते हैं। हाँ, रिश्ते जो अपने रक्त के हैं ये अपने हैं, वो छूट भी जाते हैं। तो जल्दी से बताइएगा कि कभी कोई ऐसा मजबूत रिश्ता आपका छूटा है जो आपको छोड़कर कभी चला गया हो।

हम सुन रहे थे माचिस फिल्म का ये गीत हरिहरन, सुरेश वाडकर, विनोद सहगल और केके की आवाज़ में, गुलजार के बोल और विशाल के संगीत के साथ। हमने आपसे प्रश्न पूछा कि भारत के पढ़े लिखे बच्चे जब विदेश जाते हैं तो लाभ होता है, हानि होता है, जो भी आपके मन में विचार है वो आप अवश्य रखें। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से उत्तर दिए हैं कि कई बार विदेशों में गए बच्चे के माँ बाप इतने अकेले हो जाते हैं कि मृत्यु पर अगल बगल के पड़ोसियों को भी पता नहीं चलता, और जब तक 3-4 दिन बाद फ़ोन करें तब पता पड़ता है, और कई बार वीज़ा आदि की समस्याओं के कारण भी कई सारी चीज़ें होती हैं। हमारे एक और श्रोता लिखता है, रिश्ता कैसा भी हो दर्द बड़ा सहनीय होता है, उसे भूलना बड़ा कठिन है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ रहती हैं कि हमें दूर जाना भी होता है, दूर जाकर भी दिल तो उस इंसान से जुड़ा ही रहता है, क्योंकि रिश्ते कांच के नहीं होते जो टूट जाएं, दिल से जुड़े होते हैं। कितनी सकारात्मक बात आपने कही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शिक्षित बच्चे विदेश जाकर नौकरी करते हैं, वहाँ की उपलब्धियों से उनका हुनर दिखाई देता है, राष्ट्र और मजबूत होता है, पर अपने देश में केवल नाम की प्रसिद्धि मिलती है, लाभ कुछ नहीं मिलता। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने देश में जब काम करते हैं तब आपको लाभ बहुत मिलता है, यहाँ पर रहकर भी कई सारे बच्चों ने बहुत कुछ कमाया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो जगदलपुर गए थे बस्तर, वहाँ का कल्चर, वहाँ का चित्रकूट जलप्रपात, हरे भरे जंगल, हरियाली उनको आज भी याद है, मन मचल जाता है। हाँ, बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत खूबसूरत जगह है, बड़ा आनंद आता है जगह पर, वो बड़ा अपनापन भी है लोगों में। वैसे भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाते हैं हर जगह प्रेम ही मिलता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आजकल विदेश जाने वाले विद्यार्थी वापस आते तो अपने साथ अंग्रेजी मैम लेकर आते हैं। नहीं, ऐसा सभी नहीं करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब हमारे देश के बुद्धिजीवी जब उसी ज्ञान को प्रदेश में जाकर सेवाएं देते हैं तो कभी कभी गर्व होता है, उससे अधिक दुख भी होता है कि इसी ज्ञान को भारत माँ को समर्पित करते तो करोड़ों लोग लाभान्वित होते। मैं कई बच्चों को जानती हूँ जो 5-6 साल बाद वापस आ गए, क्योंकि वहाँ उन्हें अपनापन और अपने देश की हर बात याद आती थी, इसलिए वो वापस आ गए। कितने अच्छे बच्चे हैं जो अपने देश के लिए वापस आ गए। इसके साथ उन्होंने, हमारे श्रोता लिखते हैं, अपने बच्चों को कहा कि कम कमा कर भी अपने देश में रहकर तरक्की करने की सलाह दी गई है। हमारे श्रोता ने लिखा, भारत का बच्चा विदेश क्यों जाए, इस देश में अपार संभावनाएँ हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं, जब हमारे देश के बच्चे विदेश जाते हैं तो देश को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई महत्वपूर्ण लाभ होते हैं, इससे विदेशी मुद्रा रेमिटेंस की प्राप्ति होती है, तकनीकी एवं ज्ञान का हस्तांतरण और वैश्विक मंच से देश की शाख बढ़ती है, जिससे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव मजबूत होता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोताओं ने, एक ने और वही विवाह वाली बात को कहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब, जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैं जब विद्यालय में पढ़ा करती थी तब मेरे शिक्षक ने एक बात बहुत अच्छी सिखाई थी कि जब आप विदेश जाते हैं तो एक काम करिए, आप

विदेश जाइए, लेकिन विदेश जाकर वहाँ कुछ देर कुछ रोज़ रहकर वापस आ जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो आप सीख कर आएंगे, देख कर आएंगे, वो अपने देश में अगर लगाएंगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, और वो भारत में आकर उस चीज़ को लगाएगा तो भारत की साख और बढ़ जाएगी। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, आप भी अपने लोगों को बता सकते हैं। हमारे लोग लिखते हैं कि पहले लोग अपने प्रदेश से दूसरे राज्य में कमाने जाते थे तो उन्हें परदेश कहा जाता था, और ऐसा उन्होंने बताया। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं उनकी भाई की कई ट्रांसफ़र कई जगह होती है, कई सारी संस्कृति से वो शिक्षा भी लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बहुत सारी बातें हैं कि अलग अलग वर्गों में अलग अलग लोग बाहर जाते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो हम उनसे बस यही बात कह सकते हैं कि आप चले तो गए हैं लेकिन आपका देश आपसे बहुत प्यार करता है। इस गीत के गायक कलाकारों के नाम बताइए।

हम सुन रहे थे ये गीत आप लौट चलें, और हमने आपसे पूछा इसके गायक कलाकारों के बारे में, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, उदित नारायण और अलका याग्निक इस गीत के गायक कलाकार हैं। हमारे श्रोता जो हैं उन्होंने एक बड़ी दिल को कचोटने वाली बात या कहें हृदय से रोने वाली बात लिख दी है, जहां पर सच में हर किसी का हृदय द्रवित हो जाएगा। वो लिखते हैं कि जब पहली बार बेटा विदेश जाता है तो माँ का कलेजा मुँह में आ जाता है और माँ को बहुत घबराहट होती है, होती ही होगी ना, अपने हृदय के टुकड़े को अपने से दूर भेजने में। हमारे श्रोताओं ने कई चीज़ें बताई हैं विदेश जाने पर, कि विदेश चले जाते हैं, परिवार दूर हो जाता है, पर कई बार उस ओर से देखें तो उनकी भी मजबूरी होगी जो उन्हें जाना पड़ा। अपने घर को छोड़कर कोई नहीं जाना पड़ता, पर कई बार रोटी उन्हें दूर खींच ले जाती है और कई बार तो वापस आने का रास्ता भी नहीं मिलता। और ऐसे समय में हम और आपने जो चिट्ठियाँ लिखी होती हैं, उन्हें संदेश भेजे होते हैं, उन्हें प्यार भेजा होता है, वो उनका साथ देता है। हमारे श्रोता बताते हैं।

उन्होंने ये फिल्म करतारपुर सनम सिनेमा में देखी हुई थी। हमारे श्रोता बताते हैं कि वो नेपाल घूमने जाते थे और दोस्तों को कहते थे कि विदेश गए हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, घूमने तो गए हैं। तो चलिए एक काम कीजिए, जितने लोग आपसे दूर रहते हैं या जो लोग दूर रहते हैं, दोनों आपस में चिट्ठियाँ ज़रूर भेजिए। व्हाट्सएप, मैसेज, वीडियो कॉल, ये सब तो होता रहेगा, लेकिन चिट्ठियाँ एक बार नहीं, कई सौ बार एक दूसरे की याद, एक दूसरे के प्यार में डुबो देती हैं। तो चलिए सुनते हैं ये गीत और बताइएगा ये गीत गाया किसने है।

0: चिट्ठी।
1: और इसी के साथ हमारे एक और श्रोता ने एक चिट्ठी लिखी है छोटी सी, और वो चिट्ठी ऐसी है कि देसी बायना सब जग मीठा। यह विद्यापति जी ने कहा है, बिल्कुल अपना देश जहाँ है, जहाँ की मिट्टी, वहाँ से खान पान, वहाँ से गोली, और वहाँ अपनापन दुनिया की सारी सुख समृद्धियों से ऊपर है। पर दुनिया कहीं भी बहुत सुख समृद्धि हो, सोने चांदी के पलंग बिछावन है, पर हमें तो अपने भारत की खटिया ही बहुत प्यारा है। जी धन्यवाद। और हम सुन रहे थे नाम फिल्म का यह गीत, पंकज उदास और साथियों ने इसे गाया, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के

त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं जो इंसान भीतर से मजबूत होता है उसे हर बात पर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानता है कि हर बहस जीतना सफलता नहीं है, बल्कि सही समय पर सही बात कहना ही असली समझदारी है। कुछ लोग हालात के आगे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और कुछ आखिरी दम तक मुकाबला करते रहते हैं। इंसान अगर अपने दिल और दिमाग पर नियंत्रण कर ले तो वो अपने जीवन में ऊंचे से ऊंचा मुकाम भी हासिल कर सकता है। लेकिन अगर वो जीवन में मिलने वाली असफलताओं को ही अपनी नियति मान ले तो वो निराशा की ऐसी खाई में गिर सकता है।

मजबूत इंसान बनने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर काम करना बेहद जरूरी है। खुद को अनुशासित रखें, चुनौतियों से घबराने की बजाय उन्हें सीखने का अवसर मानें। कठिन समय में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना ही असल मजबूती है। भीतर से मजबूत और निडर बनने के लिए चुनौतियों से हमें डरना नहीं बल्कि चुनौतियों का डटकर सामना करना आना चाहिए और यही जीवन के लिए बेहद जरूरी भी है।

महान विचारकों और दार्शनिकों के अनुसार मानसिक मजबूती और दर्द सहने की क्षमता का विकास केवल परिस्थितियों से भागने में नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करने में है। आंतरिक दृष्टि से मजबूत व्यक्ति अपनी कमजोरियों और ताकतों को स्पष्ट रूप से जानते हैं और खुद को अंधेरे में नहीं रखते। साथ ही ये भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपने मूल्यों और नैतिकता के अनुसार सही राह पर चलते हैं। भीतर से मजबूत और दृढ़ व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहता है और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, ऐसे मजबूत लोग शिकायत करने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

0: दोपहर के 2:15 होने को है। बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:00 चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
2: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
1: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1:00 तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1:00 कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2:00 दो

0: इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
1: To put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला जो लाखों बच्चों की भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
2: I appeal to members across all sides of the house to uphold the dignity, discipline and decorum of this august institution. While differences of opinion are integral to parliamentary democracy, they must be expressed in a manner that preserves the sanctity of the house.
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
3: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित 4 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440.42 करोड़ रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद

रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध

0: लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे, जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया, वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई 3 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज 4 धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
1: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और 4 धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले 2 दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: ये गीत हमने सुना गुमराह फिल्म से, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
6: हो तो

0: रहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है फिल्म दिल ही तो है से। आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और रोशन का है संगीत।

0: सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में शकील बदायूनी के बोल और नौशाद के संगीत से सजा हुआ यह गीत, जिसे जो कि है फिल्म मेरे महबूब से।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत, ब्लफ मास्टर फिल्म से मुकेश की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ। और इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: बहुत खाक दुनिया की छानी थी हमने, बहुत खाक दुनिया की छानी थी हमने, अब तक किसी की ना मानी।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से पहले प्रादेशिक समाचार और 3:05 पर सामायिक चर्चा रिले की जाएगी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिनों के इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉनसून सत्र के अच्छे माहौल में चलने की उम्मीद जताई है। उन्होंने ये भी विश्वास जताया कि इस सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। इस कदम से अनुसंधान का कार्य सुगम बनाया गया ताकि उन्हें आम जनता के लिए सुलभ बनाया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मिशन के तहत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि 3,74,000 से अधिक पांडुलिपियां पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल के एआई उन्नयन को डिजिटल भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उन्होंने लोकसभा में कहा कि इस पहल से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व

0: क्षेत्र लिख रहे हैं विकास की नई इबादत। वाचक स्वर है प्रभा शर्मा का।
1: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी और भरमौर जैसे दुर्गम क्षेत्रों में वर्षों तक कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, भारी बर्फबारी और कम जनसंख्या विकास की राह में बड़ी चुनौती रही हैं। लेकिन अब इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, डिजिटल कनेक्टिविटी और आजीविका के क्षेत्र में लगातार नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश का लगभग 42% भौगोलिक क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, जबकि यहां राज्य की कुल आबादी का केवल लगभग 5.7% हिस्सा निवास करता है। इसके बावजूद राज्य सरकार इन क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जनजातीय क्षेत्रों का लिंग अनुपात भी प्रति 1000 पुरुषों पर 1018 महिलाएं हैं, जो राज्य के औसत 972 से कहीं अधिक बेहतर है। ट्राइबल सब प्लान के माध्यम से हर वर्ष विकास योजनाओं के कुल बजट का 9% हिस्सा जनजातीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाता है, जिससे आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को गति मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हजारों विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट छात्रवृत्तियों का लाभ मिल रहा है। प्रदेश के 4 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में बड़ी संख्या में छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन विद्यालयों के विद्यार्थी IIT, मेडिकल कॉलेज और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंचकर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं।

0: प्रोत्साहन देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दी जा रही है। पांगी घाटी को प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित करना भी एक महत्वपूर्ण पहल है। प्राकृतिक खेती के साथ किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सामयिक चर्चा समाप्त हुई, नमस्कार। चर्चा विषय था, हिमाचल के जनजातीय क्षेत्र लिख रहे हैं विकास की नई इबारत। वाचक स्वर था प्रभा शर्मा का। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3:10 हुए हैं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
2: कुमारी क्या राम दुलारी की असलियत जान सकेगी? आइए सुनते हैं आज इस कहानी की तीसरी और अंतिम कड़ी।
3: एक हफ्ता तक रूप कुमारी हैजान की हालत में रही, बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, शोहर को कोसती, अपनी तकदीर को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, वरना नई आफत आ जाती। लेकिन अब किसी काम से उसे दिलचस्पी न थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीजों से उसे दिली ताल्लुक हो गया था, जिनके सफाई और सजावट में वो मुनहमीक रहा करती थी, उनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखती। घर में एक खिदमतगार था, उसने देखा कि बहू जी खुद घर की तरफ से लापरवाह है तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। दोनों बच्चे भी माँ से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साए से भी भागते थे। जो भी कुछ उनके सामने आ जाता जहर मार कर लेते, दफ्तर चले जाते, दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ लेकर कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ बोलते रूह फना होती थी, वहाँ उनकी तफ्तीश जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिन बाद जमाने से मसालहत कर ली थी और उस वक्त से झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाइयां साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने उसे अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई, उमानाथ पर बेहद गुस्सा आया।
4: क्या करते हैं आप, उन्हें यहां लाकर क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। अब इस हालत में देखकर गुरु सेवक ने दिल में क्या समझा होगा हम लोगों को, मगर आपको अकल आई ही कब थी? मैं अपना पर्दा ढांकते फिरती हूं और आप उसे खोलते फिरते हैं, जरा भी शर्म नहीं। जैसे बेहयाई का जामा पहन लिया आपने तो, खामख्वाह मुझे जलील करते रहते हैं बस।
3: दुआ देकर आफियत पूछी और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा,
5: आज भाई साहब ने मेरी दावत की है, मैं इनकी दावत पे तो ना आता, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम्हारी दीदी का सख्त तकाजा है तो वक्त निकालना पड़ा।
3: रूप कुमारी ने बात बनाई।
4: हाँ, वो तुमसे उस दिन रवा रवि में मुलाकात हुई, देखने को जी लगा हुआ था।
5: जी
4: जी।
3: गुरु सेवक ने दरो दीवार पर नजर डाली और कहा,
5: ये घर दीदी, इस पिंजरे में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी, हैं?
3: रूप कुमारी को अब मालूम हुआ कि ये कितना बदमजाक है, दूसरों के जज्बात की उससे बिल्कुल परवाह नहीं। ये इतनी सी बात भी नहीं समझता कि दुनिया में सभी तकदीर वाले नहीं होते, लाखों में कहीं एक ऐसा भगवान निकलता है। किसी कदर तुर्श होकर बोली,
4: पिंजरे में रहना कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में मासूम चिड़िया रहती हैं, कटघरे तो दरिंदों का मस्कन होता है।
3: गुरु सेवक किनाया न समझ सका, बोला,
5: मुझे तो इस घर में, ऐसे घर में हब्स हो जाएगी, दम घुट जाए। मैं आपके लिए दीदी, मैं आपके लिए अपने घर के पास एक घर तय कर दूंगा, खूब लंबा चौड़ा, और आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। हाँ, सुन रहे हैं दीदी? मकान हमारी मालकिन का है,

0: मैं भी तो उन्हीं के मकान में रहता हूं। सैकड़ों मकान है उनके पास, सैकड़ों। सब मेरी इख्तियार में है, मेरी इख्तियार में। सुन रहे हैं आप दीदी?
1: सुन रही।
0: जिसको जो मकान चाहूं दे दूं, सब मेरे इख्तियार में है, किराया लूं या ना लूं। अब मैं आपके लिए अच्छा सा मकान ठीक कर दूंगा दीदी, जो सबसे अच्छा है। मैं आपका बहुत अदब करता हूं, मैं बहुत अदब करता हूं आपका। आप मेरी दीदी है। हाँ
2: रूप कुमारी समझ गई हजरत इस वक्त नशे में हैं। जब ही बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, उनकी आंखें सिकुड़ गई हैं, रुखसार कुछ फूल गए हैं, जबान में हल्की सी लग्जिश थी जो हर लम्हा नुमाया होती जाती थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा और बेगैरत बन गया था, जिसे कुछ देखकर नफरत होती थी। उसने एक लम्हा बाद फिर बहकना शुरू किया।
0: दीदी, आपके लिए मेरी जान हाजिर है। दीदी, आपके लिए मकान का इंतजाम करना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मैं मिसेज लोहिया का मुख्तार हूं। कौन हूं? मुख्तार। सब कुछ मेरे अख्तियार में है, सब कुछ। मैं जो कुछ कहता हूं वो आंख बंद करके मंजूर कर लेती है। मुझे अपना बेटा समझती है। क्या? बेटा, बेटा समझती है मुझे। मैं उनकी सारी जायदाद का मालिक हूं। आपको बताता हूं, मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए का नौकर रखा था। कितना? 20 रुपए का। बड़ा मालदार आदमी था, मगर ये किसी को मालूम न था कि उसकी दौलत कहां से आती थी। मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं था, किसी को नहीं, कोई नहीं जानता था। वो खुफिया फरोश है। किसी से कहना नहीं दीदी, किसी से कहना नहीं। वो खुफिया फरोश था, कोकेन बेचता था। लाखों की आमदनी थी उसकी। मैं भी अब वही काम करता हूं। हर शहर में हमारे एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में यकता कर दिया। जी हाँ, मजाल है कि कोई मुझे गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूंस ठूंस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूं। कोई
1: अंकल,
0: चू नहीं कर सकता। हिसाब में लिखता हूं 1,000, देता हूं 500, बाकी बाकी यारों का है। बेदरेग रुपये आते हैं, बेदरेग खर्च करता हूं। और वो बुढ़िया, बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है। साधु संतों की सेवा में लगी रहती है और बंदा चैन करता है। जितना चाहूं खर्च करूं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। दीदी, 1 मिनट,
1: क्या
0: ये
1: है
0: थोड़े से रुपए।
1: ये? थोड़े से रुपए नहीं है, ये तो पूरा नोटों का बंडल है। ये इतने रुपए
0: हाँ
1: क्या?
0: दीदी, ये आपके कदमों का सदका है, मुझे दुआ दीजिए। जो ईमान और उसूल के उपासक हैं, उन्हें दौलत लात मारती है। दौलत तो उन्हें पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन ईमान सब कुछ निसार करने को तैयार है। मुझे बुरा न कहिए, अब जितने दौलतमंद हैं सब लुटेरे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। कल मेरे पास रुपए हो जाए और मैं एक धर्मशाला बनवा दूं, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह वाह वाह होती है। कौन पूछता है कि ये दौलत मुझे कहां से मिली? किसी को भी देख ली, जो है सो अपने

0: में माहिर है, काम इतना सा करते हैं, पैसा इतना सारा बना लेते हैं, हैं? अगर उनकी आमदनी जायज है तो मेरी आमदनी भी जायज है ना दीदी? जायज है ना? जी हाँ, जरूरतमंदों को लूटकर मालदार हो जाना हमारी सोसाइटी का पुराना दस्तूर है। और दीदी, मैं भी वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं, और मेरी जिंदगी का मकसद है ऐश करना। मैं भी ऐश करूँगा दीदी, मैं भी लूटूंगा, समझे ना? ऐश करूँगा और खैरात करूँगा। कहिए तो गिनवा दूँ, यहाँ कितने लोग जुआ खेलकर करोड़पति हो गए, न जाने कैसे कैसे गलत काम करके करोड़पति हो गए लोग दीदी। अब मैं भी तो वही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं? मैं भी ऐश करूंगा, लूटूंगा, मैं भी, और मैं भी ऐश करूंगा, खैरात भी करूंगा।
1: उमानाथ ने आगे कहा, अरे मिस्टर गुरुसेवक, क्या कर रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरुसेवक उठा, पैर लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा, फिर संभल कर उठा, झूमता झामता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली। यहां बैठे बैठे उसका दम घुट रहा था, कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो तरगीबें कई दिन से अच्छे अच्छे दिल आवेज रूप भर कर उसके सामने आ रही थी, आज उसे उनकी असली मकरूह घिनावनी सूरत नजर आई। जिस सादगी, खुलूस और इसार की फिजा में अब तक जिंदगी गुजर रही थी, उसमें हरामकारी और आबला फरेबी का गुजरना था। इन दामों में वो दुनिया की सारी दौलत और सारे ऐश भी खरीदने को आमादा न हो सकती थी। अब वो रामदुलारी की तकदीर से अपनी तकदीर का बदला न करेगी। वो अपने हाल में खुश है, रामदुलारी पर उसे रहम आया जो नमूद और नुमाइश के लिए अपने जमीर का खून कर रही है। मगर एक ही लम्हा में गुरु सेवक की तरफ से उसका दिल नर्म पड़ गया।
2: जिस सोसाइटी में दौलत पुजती है, जहां इंसान की कीमत उसके बैंक अकाउंट और शानो शौकत से आंकी जाती है, जहां कदम कदम पर तरगीबों का जाल बिछा हुआ है और सोसाइटी का निज़ाम इतना बेढंगा है कि इंसान की हद, गजब और फिरोमायगी के जज्बात को उकसाता रहता है, वहां गुरु सेवक अगर रौ में बह जाए तो ताज्जुब का मुकाम नहीं।
1: उस वक्त उमानाथ ने आकर कहा,
3: सुनो, यहां बैठा बैठा क्या बक रहा था भाई? मैंने तो उसे रुखसत कर दिया। जी डरता था कहीं उसके पीछे पुलिस ना लगी हो, कहीं मैं नाकर्दा गुनाह में पकड़ा ना जाऊं।
1: रूप कुमारी ने उसकी तरफ माजरत ख्वाहाना नजर से देख कर जवाब दिया,
2: वही अपनी खुफिया फरोशी का जिक्र कर रहा था।
3: मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने की दावत दे गया है, शायद कोई अच्छी जगह मिल जाए।
2: जी नहीं, आप क्लर्की किए जाइए, इसी में आपकी खैरियत है।
3: मगर क्लर्की में ऐश कहाँ, क्यों ना साल भर की रुख्सत लेकर जरा उधर का भी लुफ्त उठाऊं।
2: लेकिन मुझे अब वो हवस नहीं रही।
3: मगर एक बात तो है,
2: क्या?
3: मैं तुमसे आकर ये किस्सा कहता तो तुम्हें यकीन ना आता।
2: हाँ, यकीन तो ना आता, और मैं तो कयास भी नहीं कर सकती कि अपने फायदे के लिए कोई आदमी दुनिया को जहर खिला सकता है।
3: मुझे सारा किस्सा मालूम हो गया था, मैंने उसे खूब पिला दी, नशे में बहकने लगा और सब कुछ खुद ब खुद कबूल कर लिया।
2: वैसे ललचाई तो तुम्हारी तबीयत भी थी।
3: हाँ ललचाई तो है, मगर ऐप करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है ना, वो कहां से लाऊंगा?
2: ईश्वर ना करे कि वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आता है, मालूम नहीं रास्ते में उस पर क्या गुजर है।
3: नहीं, वो तो अपनी कार पर थे।
1: रूप कुमारी एक मिनट तक जमीन की तरफ देखती रही, फिर बोली,
2: सुनो, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो अभी। हाँ ले चलो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है, उसके चारों तरफ दरिंदे खा

0: बैठे। शायद मैं उसे बचा सकूं। मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं।
1: कथा सुधा में आपने सुना मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने की तीसरी और अंतिम कड़ी। पात्र परिचय इस

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और अब हम बात करेंगे मौसम से जुड़ी यानी बारिश की कुछ बातें। बारिश के पानी की बचत क्यों ज़रूरी है, क्यों करनी चाहिए, और अगर हम बात करें कि संदेश हमारे श्रोताओं के आ रहे हैं तो आज एक बड़ा अच्छा संदेश मैंने पढ़ा, किसी श्रोता ने लिखा है कि आज विषय बहुत कम है, शायद विषयों की कुछ कमी पड़ गई है, इस तरह से हमारे श्रोता ने लिखा है।
1: अच्छा,
0: तो उनकी बात का जवाब सिर्फ मैं इतना देना चाहूँगी कि विषयों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सोमवार का दिन है और आज के दिन होता है कथा सुधा, जो कि एक बड़ा विषय है जो समय बहुत ज़्यादा लेता है। किसी भी कहानी को सुनने के लिए 15-17-18 इतने मिनट का समय लग जाता है और इस दौरान अगर हम बहुत सारे विषय ले लेंगे तो उस विषय के साथ न्याय नहीं हो पाता, उस पर पूरी चर्चा नहीं हो पाती। फिर हमारे श्रोता जो संदेश भेजते हैं हमें बड़े प्यार से, उन संदेशों को भी हम सबको शामिल नहीं कर पाते, जबकि हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे श्रोता जो हमें संदेश लिखकर भेज रहे हैं उनमें से ज़्यादा संदेश उनके हम पढ़कर आप सब तक पहुंचा सकें।
1: बिल्कुल,
0: तो इसीलिए कथा सुधा का दिन था तो हमने विषय थोड़े कम चुने।
1: बिल्कुल, तुमने सही बात कही है, सबको समझ में भी आ गया होगा कि क्या वजह है ना, तुमने रिप्लाई दे दिया। तो चंचल, बारिश का पानी प्रकृति का सबसे शुद्ध और मुफ्त उपहार

0: ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है कि उस सोसाइटी में, उस बिल्डिंग में साल भर भी आपूर्ति दे देता है।
1: बिल्कुल। और इसमें छत पर गिरते पानी को पाइप के माध्यम से नीचे लाया जाता है और फर्स्ट फ्लश सिस्टम से गंदे पानी को अलग निकाल दिया जाता है, जिससे धूल, मिट्टी और पत्तियां टैंक में ना जाएं। फिल्टर यूनिट के द्वारा बजरी और चारकोल डालकर पानी साफ किया जाता है और भंडारण टैंक में साफ पानी जमा कर लिया जाता है।
0: और इसका दूसरा तरीका एक ये भी है कि रिचार्ज पिट, इसमें पानी को ज़मीन में उतारना होता है और इसमें घर या किसी भी भवन जो है, इमारत जो है, उसके पास 3 से 6 फीट का गड्ढा बनाया जाता है, उसमें ईंट, गिट्टी और फिर रेत भरी जाती है। पानी को पाइप से इसमें गिराया जाता है और इस तरह से भूजल स्तर जो है वो बढ़ जाता है।
1: और इसके साथ साथ एक सोक पिट यानी सोखता गड्ढा भी तैयार करना

0: पानी है, लेकिन इसे पीने लायक बनाना बहुत ही सीमित है। शायद इसीलिए बारिश आती है और पानी के भंडारण के लिए सूरज की गर्मी खींच ले जाती है, वहीं पानी प्रकृति पानी के रूप में प्रकृति से वापस लौटा देती है।
1: क्या बात है।
0: और कटे हुए टीडीएस की तरह उस पानी को हमें सहेज कर उसका उपाय करना चाहिए।
1: जी, बहुत अच्छी से बात लिखी है। और एक इसी तरह चंचल हमारे साथी और लिखते हैं कि बारिश के पानी की बचत ही असल में अपने कल की सुरक्षा है, क्योंकि धरती पर जितना पानी है वो सीमित है और हर बूंद अनमोल है। प्रकृति हमें मुफ्त में बारिश का उपहार देती है, अगर हम इसे छतों पर और सड़कों से बहाकर नालियों में बहा देंगे तो सूखे को खुद बुलावा देंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोखता गड्ढे और पेड़ लगाकर हम उस पानी को धरती में उतार सकते हैं, जिससे भूजल बढ़ेगा, बाढ़ रुकेगी और आने वाली पीढ़ियों की प्यास भी मिटेगी। याद रखो, बूंद बूंद से ही सागर बनता है और बूंद बूंद बचाने से ही जीवन बचता है। मैंने अपने घर के बगीचे में एक गड्ढा बना रखा है जिसमें बारिश से छत के पानी का अधिकांश भाग उसी में समा जाता है। बहुत अच्छी सी जानकारी हमारे सभी श्रोताओं ने दी है।
0: यानी कि ये तो हुई पानी की बचत की बात, लेकिन वो जो पानी गड्ढों में भरा रह जाता है, जो मच्छर पैदा करता है, वो पानी आपको भरने नहीं देना है। ये जो पानी हम संचय की बात कर रहे हैं, ये वो पानी का भराव है जो हमें आगे तक काम देगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक अलग चीज़ है और गड्ढों में पानी जमा हो जाना, उस पानी का ना सूखना, जो बीमारियाँ पनप जिससे बनपती हैं, वो एक अलग चीज़ है।

0: जरा सा पीस लीजिए। फिर एक भारी तले की कढ़ाई में घी गर्म करके इस पिसी हुई दाल को डालें और धीमी आंच पर तब तक इसे भूनना है जब तक कि इसका रंग सुनहरा ना हो जाए, अच्छी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें कटे हुए सूखे मेवे, इलायची का पाउडर डालकर फिर से 2 मिनट भूनना है और इसकी आँच को बंद कर देना है। मिश्रण जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसमें गुड़ या फिर पिसा हुआ चीनी, बूरा जो भी है वो अच्छी तरह से मिला दें और जब तक ये हल्का गुनगुना है तभी तक हाथों में थोड़ा घी लगाकर गोल गोल या अंडाकार किसी भी तरह की शेप में इस पिन्नी को आकार दे दीजिए और बस एयर टाइट डब्बे में पैक करके रख दीजिए और आनंद लीजिए।
1: बिल्कुल। और देखो, एक उड़द दाल और राजमा की जो रेसिपी बताई गई दाल मखनी की, तो उड़द और राजमा को अच्छे से धोकर पानी में भिगोइए। रात भर भिगे हुए दाल में राजमा को छान लीजिए और 2 कप पानी और नमक डालकर प्रेशर कुकर में 7 सीटी बजने तक इसको पकाइए। खोलने से पहले भाप को पूरी तरह निकाल दीजिए। दाल को मखनी से अच्छी तरह से फेंट कर रख दीजिए। तड़के के लिए एक गहरे पैन में मक्खन को गर्म करके उसमें जीरा डालिए। जीरा उसके साथ साथ उसमें हरी मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची, प्याज डालिए और भूनिए और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, टमाटर पल्प डालिए और मध्यम आंच पर तेल छोड़ने तक पकाइए और इसमें दाल, नमक और ज़रूरत के अनुसार 2-3 टेबलस्पून पानी डालिए और 10-15 मिनट तक उबालने दीजिए। इसमें फ्रेश क्रीम डालकर अच्छी से मिलाइए और धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक पकाइए और धनिया और फ्रेश क्रीम से सजाकर गरम गरम आप सर्व कीजिए।
0: और इन रेसिपी के बाद अब आनंद लेते हैं गीत का।

0: तो देखो चंचल, देखते ही देखते समय कितनी तेजी से चला गया और अब हमको भी चलने की तैयारी करनी चाहिए। तो सभी से लेते हैं विदा, सभी को मंजरी वर्मा
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार, नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: तो मैंने बताया ऐसे हमें ब्लैडर स्ट्रांग रखना ज़रूरी है, इसलिए समय समय से यूरिन कर लेना महत्व की बात है। सेकेंडली, इसे हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो रेगुलर करना ज़रूरी है
1: जी
0: ताकि पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग रहने से अगेन ये लीकेज का प्रॉब्लम कम हो सकता है। तीसरा है, प्रेगनेंसी के समय आजकल तो काफ़ी एंटीनेटल और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस बताई जा रही है, वो रेगुलर करना ज़रूरी है।
1: जी
0: अगर इस प्रकार से हम ख्याल रखेंगे तो शायद ये इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम काफ़ी कम हो सकता है।
1: जी तो किन आयु वर्ग के लोगों को ये समस्या ज़्यादा होती है? आजकल सुना है कि कम उम्र के युवाओं में भी
0: सो यंग
1: ये।
0: लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज़्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है,
1: जी
0: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण,
1: ओ
0: कभी कभी कैफीन वगैरह ज़्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीज़ों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफ़ी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। एल्डरली पेशेंट्स में या प्रेगनेंसी के बाद में अगर वो पेल्विक फ्लोर मसल्स का ख्याल नहीं किया, तो उनको जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, वो तकलीफ होती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के कारण अगर वहाँ के नर्व्स काम नहीं कर रही है, तो उन्हें परमानेंट या तो कंटिन्यूस इनकॉन्टिनेंस होता है, जो हर समय उठ के खड़े होते यूरिन लीक हो जाती है। सो कभी कभी जिसे नर्व्स के कारण जो ये पूरी सिस्टम कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल चले जाने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है।
1: जी
0: बट वहाँ ज़्यादा करके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहते हैं, जिसको एड्रेस करना भी इक्वली महत्व का है।
1: जी और जिनको ये समस्या होती है तो लोग कहते हैं कि या तो पैड का इस्तेमाल करें, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, या फिर कुछ थैली का इस्तेमाल, उसके बारे में बताइए वो क्या है तरीका?
0: सो यस, डायपर्स या पैड यूज करना कभी कभी जरूरी हो जाता है, लेकिन एक मैं बताता हूँ, कभी कभी जो दिन में लोगों को स्ट्रेस रहता है और फिर उनको एक डर रहता है कि मुझे यूरिन हो जाएगी, सो वो जहाँ भी बाहर जाते हैं पहले बाथरूम ढूंढते हैं।
1: जी
0: ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये अभी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। ऐसे लोगों को कभी कभी पैड यूज करने में या टेम्प्रेरी डायपर यूज करने में काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि वो टेंशन चला जाता है और
1: कि
0: उसके कारण अगर वो देखेंगे तो कभी वो पैड गिला भी नहीं होता है, लेकिन वो
1: जी
0: एक अश्योरेंस हो जाता है। मैंने काफ़ी लेडीज देखी है जो काम कम कर देते हैं, काम बंद कर देते हैं, घर पे बैठे रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है आज के ज़माने में, काफ़ी ट्रीटमेंट मिलती है और ये ट्रीटमेंट लेके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के अपनी डे टू डे लाइफ कंटिन्यूस रखना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ों से क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र नहीं होनी चाहिए।
1: जी
0: सो ये मन में से डर निकालना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेने से आजकल काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है।
1: जी
0: लेकिन इस डर से ये प्रॉब्लम दूसरों को न बताने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है।
1: जी जी
0: सो ये महत्व का है कि आप मेडिकल एडवाइस लीजिए, उनका सॉल्यूशन मिल जाता है और उससे काफ़ी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को ये उनसे सुना है कि हम तो बस अब घर में ही बैठे रहते हैं, ये डर बना रहता है। ये ज़रूरी नहीं है,
1: बिल्कुल
0: ट्रीटमेंट लेके अपना काम, अपनी डे टू डे एक्टिविटी, बाहर जाना ज़रूर चालू रखना चाहिए,
1: जी
0: क्योंकि नहीं तो एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम
1: जी
0: शुरू होने का डर रहता है।
1: जी
0: तो ये इसके बारे में ये बहुत महत्व का समझना ज़रूरी है कि टॉक टू पीपल, टॉक टू डॉक्टर्स, और
1: बिल्कुल
0: सही समय में ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए।
1: जी बुज़ुर्गों को हमने सुना है, कई बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो यूरिन की समस्या के कारण कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं कि हम जाएंगे हमें वहाँ फिर बाथरूम की समस्या होगी। तो आपकी बातों से काफ़ी इंस्पायर होंगे कि आप उसका एक तरीका है, उसकी व्यवस्था है, वो करके आ जाइए। तो
0: एब्सोल्युटली, कुछ लोग जैसे रहते हैं जिनको पेशाब की थैली काम नहीं करती है,
1: जी हाँ
0: उन लोगों को कभी कभी नली और बैग लगाना ज़रूरी
1: जी
0: पड़ता है,
1: जी जी
0: और जब तक वो प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट न हो, वो नली लगानी पड़ती है। आजकल उसके लिए भी हम एडवाइस करते हैं, जिसे हम इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन बोलते हैं,
1: अच्छा
0: ताकि पेशेंट खुद छोटी नली से दिन में 3 या 4 बार यूरिनरी ब्लैडर खाली कर सकता है,
1: जी
0: और उनको कंटिन्यूस बैग लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है,
1: जी जी
0: और अपनी डेली लाइफ और काम पे वो जा सकते हैं।
1: जी
0: सो कभी कभी लोगों को एक माइंड ब्लॉक जैसा रहता है कि ये कैसे होगा, लेकिन काफ़ी लोग कर रहे हैं।
1: जी
0: सो इन शॉर्ट, ये सब प्रॉब्लम की समस्या रही,

0: एक्सपर्ट से बात कीजिए, अपना माइंड ओपन रखना बहुत ज़रूरी है।
1: जी
0: मान लेना कि नहीं अभी इसकी कोई सोल्यूशन ही नहीं है, मुझे सफ़र ही होना है, ये गलत बात है।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि मेडिकल एडवाइस और आप अगर ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहे तो काफ़ी ऑप्शंस हैं जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़रूर इम्प्रूव हो सकती है।
1: जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अभी बहुत सारी बातें चल रही थी, हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि जो तुरंत यूरिन पास करके आते हैं वॉशरूम से और तुरंत 5 मिनट के अंदर वापस जाते हैं, और वो जांच कराते हैं तो सब कुछ नॉर्मल आता है, तो ये क्या वजह हो सकती है और इसका किस तरह से इलाज हो सकता है?
0: सो ये दो चीज़ होती है, अगर पूरी यूरिन एक समय में निकलती नहीं है तो वो बार बार जाने की इच्छा रहती है, जो कभी कभी यूरिनरी पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन या यूरिनरी ब्लैडर वीक होने से हो सकता है। दूसरा है जिनकी ब्लैडर सेंसिटिव होती है,
1: जी
0: जिसके कारण थोड़े बूंद रहने से भी वो सेंसेशंस बने रहते हैं और इसके कारण बार बार जाने की इच्छा रहती है, जाके बाथरूम में काफ़ी समय तक बैठते हैं लेकिन ज़्यादा यूरिन होती नहीं है। सो ये कभी कभी सेंसिटिव ब्लैडर के कारण हो सकता है,
1: जी
0: जो पहले जांच करके हम देखते हैं कि अंदर कोई रोग नहीं है, अगर वैसे नहीं रहा तो दवाइयों से वो सेंसेशन कैसे कंट्रोल में करना वो हम कोशिश करते हैं।
1: जी
0: और तीसरी बात कि पेशेंट को भी कभी कभी अपने आप वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने की आवश्यकता रहती है
1: जी
0: कि एक बार करके आए तो सेंसेशन बाईपास करना सीखना पड़ता है, कि थोड़े सेंसेशंस रहें हम उसको बाईपास कर देंगे, एक बार वो पेशेंट अगर बिजी हो गया तो सेंसेशन काफ़ी समय तक वापस
1: नहीं
0: चला जाता
1: आता
0: है और
1: है।
0: बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
1: जी बिल्कुल।
0: लेकिन ये सब चीज़ें एक बार टेस्ट कराने के बाद करनी चाहिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि अंदर कोई रोग नहीं है,
1: जी
0: और फिर ये काफ़ी चीज़ों से लोग अपने आप अपने को सेल्फ ट्रेन कर सकते हैं कि छोटे छोटे ऐसे सेंसेशंस हुए उसको बाईपास करके हम अपने काम में लग जाएं,
1: जी
0: क्योंकि नहीं तो वो सेंसेशन इतना इरिटेबल हो जाता है कि बार बार फिर उनको इच्छा रहती है कि मैं जाके यूरिन करके आऊं।
1: जी और सारा फोकस, सारा ध्यान उसी पर रहता है कि
0: एब्सोल्युटली।
1: कुछ भी शुरू करने से पहले पहले यूरिन के
0: और
1: लिए
0: फिर वो
1: चले
0: डर सा
1: जाए।
0: रहता है कि अगर
1: जी
0: कपड़े में कुछ बूंदे

0: बाईपास करना भी सीखना जरूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी आपने स्मेल की बात की, तो यहाँ पर एक बात जहन में आई है कि अमूमन लोग ये कहते पाए जाते हैं कि हमारी यूरिन में दुर्गंध है, तो ये क्या लक्षण हो सकता है, स्मेल आ रही है अलग तरह से और कलर चेंज होता है कई बार?
0: सो एक बात कि शायद यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है
1: जी,
0: क्योंकि काफ़ी लोग पानी कम कर देते हैं ये डर से कि मुझे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली यूरिन शरीर का

0: काफी कम हो जाती है
1: जी।
0: दूसरी बात है जिनको कुछ ड्रॉप्स कपड़े में रह जाते हैं देन वो स्मेल कंटिन्यूसली उनको ऐसे लगता है कि यूरिन की स्मेल आती है। सो वहाँ कभी कभी एब्जॉर्बेंट पैड वगैरह पहनने से ये प्रॉब्लम कम होती है कि कपड़े में यूरिन जमा न होने से वो भी स्मेल कम हो सकती है।
1: जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को, कौन सा गाना?
0: जरूर, आई थिंक श्रेया घोषाल इज अनदर एक्सलेंट सिंगर
1: जी जी,
0: और उनका एक अच्छा गाना है मुहे रंग दो लाल।
1: क्या बात,
0: बाजीराव मस्तानी से।
1: जी बाजीराव मस्तानी फिल्म का बड़ा ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गाना हम सुन रहे थे। और अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि किडनी स्टोन और यूरिन की समस्याओं का आपस में क्या तालमेल है और किस तरह की बीमारी ये मिलके रचते हैं?
1: सो यूरिनरी स्टोन्स वो भी एक काफ़ी बड़ी समस्या बन रही है,
0: जी
1: और कुछ कुछ इलाके में जहाँ ज़्यादा गर्मी है वहाँ स्टोन डिजीज़ काफ़ी लोगों को तकलीफ दे रहा है। स्टोन के दो प्रॉब्लम

0: हो सकते हैं, कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, स्टोन बढ़ते जाता है
1: जी जी
0: और किडनी पूरी डैमेज हो जाती है तब तक पता नहीं चलता है। और कुछ स्टोन्स, छोटे स्टोन्स रहते हैं, जब वो स्टोन नीचे निकलने की कोशिश करती है इतना दर्द देता है कि पता चलता है कि स्टोन है। अब स्टोन बनने के अलग अलग कारण है, सबसे बड़ा कारण है पानी कम पीना,
1: जी
0: क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन से जो क्षार जो बनते हैं वो किडनी में एक बार जमा होने लगे तो वो फोकस बन के स्टोन्स बढ़ने लगते हैं।
1: जी जी
0: सो सबसे बड़ी दवाइयाँ पानी है। दूसरी बात, कुछ लोगों को कैल्शियम और यूरिक एसिड, उनकी मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल शरीर में होने से भी ये स्टोन्स बन सकते हैं। तीसरी बात, अगर यूरिन कॉन्स्टेंटली जमा होती है किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में, उसके कारण भी स्टोन बन सकते हैं। सो ये अलग अलग कारणों से स्टोन बनते हैं। सो हमारे देश में रेगुलर हेल्थ चेकअप जैसा कोई लोग मानते नहीं है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूरी है।
1: जी।
0: कुछ लोग मानते हैं कि हम हेल्थ चेकअप कराएंगे, उसमें कुछ निकलेगा, हमको डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा,
1: इसलिए मत चेकअप कराओ,
0: इसे चेकअप मत करवाओ।
1: जी जी।
0: लेकिन चेकअप करना जरूरी है ताकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुए तो उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, आजकल स्टोन के लिए काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं और ट्रीटमेंट आसान हुई है। कभी कभी छोटे स्टोन्स के लिए कुछ दवाइयां देते हैं, उससे निकल सकता है। लेकिन महत्व का ये, हमें कॉन्स्टेंटली चेकअप रखना कि स्टोन के कारण किडनी पे प्रेशर आके किडनी डैमेज नहीं हो रही है। क्योंकि कभी कभी पेन नहीं होता है लेकिन किडनी पे प्रेशर आने से धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाती है और फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सो ये भी गलत बात है कि अगर दर्द नहीं है तो स्टोन के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तपास करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि स्टोन की पोजीशन क्या है, उसके कारण किडनी में कुछ डैमेज हो रहा है कि नहीं, और पेशेंट को कितनी तकलीफ हो रही है, उस हिसाब से निर्णय लेते हैं कि कुछ करने की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है। आजकल एंडोस्कोपिक या दूरबीन से और लेजर एनर्जी के सोर्स अवेलेबिलिटी के कारण ट्रीटमेंट काफ़ी ईजी हो गई है और बड़ा कट वगैरह करके स्टोन निकालने की आवश्यकता नहीं रही है। सो अर्ली स्टेज में अगर हम ट्रीट करेंगे तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन एक बात हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि कोई भी दवाई या कोई भी ऑपरेशन की आड़ असर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छी तरह ऑपरेशन करने के बाद में भी अगर पेशेंट के टिश्यू ठीक नहीं रहे तो फिर वहाँ दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, स्टोन के साथ डर लगता है इन्फेक्शन का, क्योंकि जब किडनी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और उसके साथ में इन्फेक्शन बन गया तो वो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है, जिसे हम यूरोसेप्सिस कहते हैं। क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हुआ, किडनी ब्लॉक है, इन्फेक्शन निकलने के लिए रास्ता नहीं है, फिर इन्फेक्शन पूरे बदन में फैल जाता है, वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आते हैं। सो स्टोन के साथ इन्फेक्शन वो दूसरी चैलेंज है। तीसरी बात, स्टोन और डायबिटीज, क्योंकि अगेन डायबिटीज के कारण इन्फेक्शन होने की शक्यता बढ़ जाती है। सो ये सब चीज़ों से सिंपल स्टोन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और कभी कभी काफ़ी सीरियस बीमारी के साथ हमारे पास आते हैं। सो अगेन इन शॉर्ट, अगर रेगुलर चेकअप रखेंगे तो वो समय से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: दूसरी बात है, वंस अ स्टोन फॉर्मर इज ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर, और हमारे पास ऐसी कोई दवाइयां नहीं है जिससे हम आपको अश्योर कर सकें कि आप ये लीजिए आपको भविष्य में स्टोन नहीं होगा।
1: जी जी।
0: ये गलत बात है, इसलिए रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है। तीसरी बात है, लोग आके पूछते हैं कि हम इस कुएं का पानी पिए या इस प्रकार की ट्रीटमेंट करें, आप जो ठीक लगे वो ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन महत्व का है कि चेकअप रखना जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि हमने ये ट्रीटमेंट की, कुछ पान खाए, कुछ काढ़ा पिया, अच्छी बात है, अगर जो ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट नहीं है और आप उसे कोशिश करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोग फिर तपास नहीं करते हैं और मान लेते हैं कि स्टोन चला गया, लेकिन अगर स्टोन अंदर बड़ा होके किडनी को डैमेज करे तो आपको पता नहीं चलेगा।
1: बिल्कुल।
0: सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन रेगुलर चेकअप और एक बार अच्छा मेडिकल ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: ये गलत बात है कि हर समय

0: आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बताएंगे कि आप ऑपरेशन करवा लो। ये कुछ कुछ चीज़ें लोग मानते हैं
1: मान के
0: लेकिन वो
1: चलते
0: सही
1: हैं।
0: नहीं है। हर डॉक्टर ये करने में कोई अच्छी बात है वैसे नहीं मानता है, लेकिन उस डर से अगर हमने व्यवस्थित ट्रीटमेंट नहीं ली और फिर ऐसा समय आता है कि किडनी एक बार डैमेज हो गई, फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं।
1: जी
0: सो यस, स्टोन के लिए चेकअप महत्व का है। कुछ कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जैसे पानी पीना बहुत महत्व की बात है। एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करना ज़रूरी है। ज़्यादा एनिमल प्रोटीन लेना एडवाइजेबल नहीं है। और कुछ कुछ जिसे ऑक्सलेट के प्रॉब्लम हैं उनको कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी है, लेकिन सब पेशेंट को डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करके जैसे बीज जैसी चीज़ें, सब वो बीज जैसी टोमेटोज वगैरह खाना बंद कर देना, वो भी सही नहीं है। सो स्टोन ट्रीटमेंट में भी काफ़ी मिथ्स है, वो ज़रूरी नहीं है।
1: जी। तो अभी बीज की बात की तो अभी ध्यान में आया कि आजकल तो सोशल मीडिया पर, गूगल पर छाया हुआ है कि ये कद्दू का बीज और फ्लैक्स सीड और जाने कौन कौन से बीज खाएं तो स्टोन से निजात पाया जा सकता है, यूरिन की समस्या ठीक हो जाएगी, ये प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा। तो
0: सो ये मेरी राय में काफ़ी गलत बातें हैं। एज अ साइंटिस्ट, जब तक मुझे एडिक्वेट एविडेंस नहीं है, जब तक इतना एक्सपीरियंस जो रिपोर्ट के साथ बताया नहीं गया कि ये करने से डेफिनेट फायदा होता है, वो चीज़ें मान्य करना वो पॉसिबल नहीं रहता है।
1: बिल्कुल।
0: एट द सेम टाइम, एवरी पथी हैज सम ट्रीटमेंट फॉर एवरी प्रॉब्लम, बीट होम्योपैथी, बीट एलोपैथी, बीट आयुर्वेदिक। बट ये समझना ज़रूरी है कि ऐसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए जिसकी आड़ असर ना हो, एट द सेम टाइम रेगुलर चेकअप करके उसका रिजल्ट देखना ज़रूरी है।
1: जी
0: बाकी ये काफ़ी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे या गूगल में आती है, साइंटिफिकली उस सब चीज़ें प्रूव नहीं हुई है।
1: जी
0: ये कुछ लोगों का अनुभव है, लेकिन वो अनुभव सब पेशेंट के लिए सही है कि नहीं, वो एक बड़ा प्रश्न है।
1: बिल्कुल।
0: सो इन्फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट आई थिंक एनालिसिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट।
1: जी, इस तरह की बीमारियां जब होती है तो डॉक्टर के शरण में ही जाना चाहिए, वही ज़्यादा अच्छा होता है। किडनी स्टोन जब होता है तो उसके क्या बेसिक लक्षण क्या होते हैं और उस क्या स्थितियां हो कि मरीज़ डॉक्टर के पास जाए और किस डॉक्टर के पास जाए।
0: सो बेसिकली पेन, अगर
1: जी
0: सीवियर पेन रहा पीछे के भाग में या फ्लैंक जिसे हम कहते हैं, तो वो स्टोन के लिए कॉमन सिम्टम है।
1: जी
0: इन्फेक्शन दूसरा सिम्टम है। ब्लड इन द यूरिन, ये एक सिम्टम बहुत महत्व का है, क्योंकि स्टोन के कारण तो ज़रूर ब्लड आ सकता है, लेकिन हमें हमेशा फिक्र रहती है कैंसर की, क्योंकि वो एक सिम्टम है जो अगर किसी मरीज को हमने सुना कि उनके उनमें ब्लड जाती है, ये चेकअप करना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ यूरिनरी ट्रैक्ट में कैंसर नहीं है। सो बेसिकली जहाँ तक स्टोन का प्रश्न है, मेनली पेन इज द कॉमनेस्ट सिम्टम, सेकेंड इज इन्फेक्शन, एंड थर्ड कभी कभी रूटीन इन्वेस्टिगेशन से भी पता चल जाता है। जो सोनोग्राफी इज अ सिंपल टेस्ट,
1: जी
0: जो सोनोग्राफी रूटीनली करवाने में न तो कोई उसकी आड़ असर है, न तो इतनी एक्सपेंसिव है, लेकिन काफ़ी यूरिनरी ट्रैक के प्रॉब्लम प्राइमरी डिटेक्ट करने के लिए सोनोग्राफी महत्वपूर्ण
1: जांच
0: इन्वेस्टिगेशन
1: है
0: है।
1: जी, तो उसे पता चल जाता
0: जी
1: है।
0: जी
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुने।
0: जरूर, वापस हम पुराने गानों की तरफ चले तो रफ़ी साहब का एक बहुत अच्छा गाना है, अकेले हैं चले आओ।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है आपने, सुनते हैं यही गाना।

0: में पड़ जाते हैं, क्या है ये, दोनों में किस तरह का अंतर
1: यहां
0: है?
1: मैं एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि जब भी ऑपरेशन का प्रश्न आता है, अगर आपके मन में डाउट है तो जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए,
0: जी,
1: क्योंकि ये महत्व की बात है कि कभी कभी हमें डाउट होता है कि ये जो सलाह दे रहे सही है कि नहीं। सो आई थिंक नथिंग इज रॉन्ग कि
0: बिल्कुल।
1: बड़ी अगर सर्जरी आपको करवानी है जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, या कोई भी सर्जरी फॉर दैट मैटर, अगर आपको रहा कि जरूरी है या नहीं, जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए, पहली बात है। दूसरी बात, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज वैसा है कि उसके कारण एक तो हमें बड़ा कट लेना नहीं पड़ता है, दूसरी बात है कि रिकवरी पीरियड ज़्यादा अच्छा रहता है, कम रहता है, तीसरी बात है कि टेक्निकली ये सब साधनों से जो मैग्निफिकेशन और प्रिसिशन हमें मिलता है, उससे ऑपरेशन करना और आसान हो जाता है। लेकिन महत्व का है दैट इट्स नॉट ओनली द टूल, इज द पर्सन बिहाइंड द टूल दैट इज इम्पॉर्टेंट।
0: जी,
1: सो हर टेक्नोलॉजी आई और वो कराने से फायदा ही होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी हैं कि जहां ओपन सर्जरी गिव्स बेटर रिजल्ट्स।
2: दोस्तों, विविध भारती से ये है कार्यक्रम सेहतनामा। आज आपको सुनवा रहे हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। ये बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: दोस्तों, विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहतनामा।
1: ये बात नहीं कि हर चीज लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक करने से ही अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। ओपन सर्जरी से भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, और इसी के कारण एक्सपर्ट के पास जाके हर प्रोसीजर के क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेज वो समझना जरूरी है। लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण भी काफी आउटकम में इम्प्रूवमेंट होता है, उसमें भी प्रश्न नहीं है। ये बैलेंसिंग एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई टेकिंग प्रॉपर एक्सपर्ट ओपिनियन अपने आप या अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों की राय लेने से ज्यादा महत्व का है। आप मेडिकल राय लीजिए और जरूर पड़ी तो सेकंड ओपिनियन लीजिए।
2: जी बिल्कुल, उससे निश्चिंतता हो जाती है कि सेम बात दो डॉक्टर्स ने बोली है। और ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है, और ये बड़ी ऑनेस्ट बात है कि एक डॉक्टर की ओर से ये सलाह दी जा रही है, बड़ी बात है। और वापस हम एक बार प्रोस्टेट की ओर जाते हैं। प्रोस्टेट की सर्जरी के बारे में, कितनी ये आसान होती है और कितनी कठिन होती है मरीज के लिए?
1: मरीज के लिए आजकल ये न्यू टेक्नोलॉजी के कारण इतनी तकलीफदायी नहीं है। वो एनेस्थीसिया में करते हैं, दूरबीन से करते हैं ताकि कोई कट वगैरह या उसका पेन नहीं रहता है।
2: जी हाँ।
1: और रिकवरी भी काफ़ी फास्ट होती है। और आजकल ये सब नई टेक्नोलॉजी से काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है, और पहले जैसे बड़ा कट लेना, बहुत ब्लीडिंग हो रहा, बहुत दिनों तक नली रखना, वो सब

0: दे आर थिंग्स ऑफ पास्ट. सो रिकवरी काफ़ी जल्दी होती है और पेशेंट अपने काम पे बहुत जल्दी वापस जा सकता है. महत्व का है दैट डिसीशन मेकिंग कि ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है
1: जी.
0: और किस प्रकार की सर्जरी उस पर्टिकुलर केस के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. ये डिसीशन और डिस्कशन महत्व का होता है.
1: जी,
0: अब हर ऑपरेशन के मैंने बताया कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं. ब्लीडिंग हो सकती है, कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है, ऑपरेशन के बाद में वीर्य बाहर आना बंद हो सकता है, कभी कभी वापस पैसेज नैरो होके जिसे हम स्ट्रिक्चर कहते हैं वो भी हो सकता है. सो कोई भी सर्जरी 100% सक्सेसफुल नहीं रहती है और हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर रहती है. इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि हम क्यों सर्जरी करवा रहे हैं, उसके कितने फ़ायदे हैं, कितने गैर फायदे हैं, और फिर वो समझ के फाइनल निर्णय लेना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है.
1: जी, तो प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से, उसकी सर्जरी से क्या उनकी मैरिज लाइफ पर भी असर पड़ता है?
0: सो मैंने बताया ऐसे कि वो जो वीर्य बाहर आना कभी कभी बंद हो सकता है, आजकल कुछ नई टेक्निक ऐसे भी आई है कि ये भी कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो सकता है. इसलिए यंग पेशेंट्स में हो सके इतनी हम दवाइयों से कोशिश करते हैं कि अगर उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो हम ऑपरेशन की तरफ कम जाना पसंद करते हैं. फिर भी मैंने बताया ऐसे आजकल काफ़ी प्रोसीजर लाइक यूरोलिफ्ट, रेज्यूम, आईटीन, ये अलग अलग नाम है लेकिन उससे ये प्रॉब्लम कम होने की शक्यता ज़्यादा है, लेकिन उसके रिजल्ट्स लंबे समय तक कितने अच्छे रहेंगे वो बताना मुश्किल है. सो उस पर्टिकुलर पेशेंट की ज़रूरत क्या है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि कौन सी प्रोसीजर वो पेशेंट के लिए अच्छी है.
1: जी बिल्कुल. और अब आखिर में हमें बताइए डॉक्टर साहब कि अपने देश में प्रोस्टेट संबंधी जागरूकता को लेकर किस तरह की सजगता है और क्या सजगता बरतनी चाहिए कि प्रोस्टेट जो आजकल ये बीमारी बढ़ रही है कम हो जाए?
0: काफ़ी चीज़ें, लोग हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ रही है. जैसे काफ़ी रेगुलर हेल्थ चेकअप करने से भी पता चलता है कि प्रॉब्लम है कि नहीं. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रेगुलर हेल्थ चेकअप. कुछ एब्नॉर्मल यूरिनरी सिम्टम्स रहे तो समय में जांच करना, ये सबसे बड़ी बात है. अदरवाइज कंपेयर टू जब हम पहले प्रोस्टेट के बारे में सोचते थे, लोग आते थे कॉम्प्लिकेशंस लेके आते थे, नली लगा के आते थे, वो काफ़ी अवेयरनेस के कारण प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो रही है. प्लस अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट मिलने लगी है. पहले दवाइयाँ नहीं थी, अभी दवाइयाँ से ऑलमोस्ट 60-70% पेशेंट्स को हम राहत दे सकते हैं. सो ये काफ़ी चेंजेस हुए हैं, लेकिन अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग.
1: जी बिल्कुल.
0: और आपके जैसे प्रोग्राम के माध्यम से ये लोगों को अश्योरेंस देना बहुत ज़रूरी है कि खाली रिपोर्ट देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है.
1: जी, जी.
0: और जब हम भी निर्णय लेते हैं उस समय हम भी ये देखते हैं कि हमें रिपोर्ट को ट्रीट नहीं करना है, हमें पेशेंट को ट्रीट करना
1: है.
0: सो ये बहुत महत्व की बात है. सो ये डर रखना कि हम चेकअप करेंगे कुछ निकल आएगा और ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ये बात नहीं है. लेकिन अगर पता चला तो समय में प्रिकॉशंस ले सकते हैं और राइट समय पे राइट ट्रीटमेंट हम एडवाइस कर सकते हैं.
1: जी सही बात है. प्रोस्टेट कैंसर के बारे में तो जाहिर सी बात है कैंसर के नाम से लोग डरते ही हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर क्या पूर्णतः इलाज हो जाता है?
0: आई थिंक बहुत महत्व की बात आपने कही है.
1: जी
0: पहली बात, एज वेरी राइटली यू सेड, कैंसर नाम सुन से लोग घबरा जाते
1: जी,
0: हैं.
1: जी बिल्कुल.
0: प्रोस्टेट का कैंसर आजकल जब अर्ली डिटेक्ट होता है तो इट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग एट ऑल. कैंसर शब्द बड़ा है लेकिन उसका ट्रीटमेंट प्लान, कभी कभी कैंसर जानने के बाद भी हम बोलते हैं कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है.
1: जी जी.
0: क्योंकि इतना लो ग्रेड और अर्ली स्टेज में रहता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती. और दूसरा, ऐसे स्टेज में भी लोग आते हैं कि जहाँ पूरे बदन में वो स्प्रेड हो चुका रहता है.
1: अच्छा.
0: तो फिर उसकी ट्रीटमेंट काफ़ी दिक्कत वाली बन जाती है. लेकिन आजकल प्रोस्टेट कैंसर की काफ़ी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जहां हम अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ, हम ये बात करते हैं कि हम क्योर करने की कोशिश करते हैं. ज़्यादा करके पहले जब कैंसर की बात आती थी हम बताते थे हम कंट्रोल कर सकते हैं. सो कैंसर प्रोस्टेट के लिए काफ़ी ट्रीटमेंट अवेलेबल है.
1: जी.
0: जब खाली लोकली प्रोस्टेट में डिजीज़ रहता है तो जिसे हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं, जहाँ पूरी ग्रंथि निकाल देते हैं, या तो रेडिएशन

0: करके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स रहता है। अगर वो आगे थोड़ा स्प्रेड हुआ रहता है तो फिर उस हिसाब से रेडिएशन या हार्मोन इंजेक्शंस की हम मदद लेते हैं, और जिनको काफ़ी स्प्रेड हुआ रहता है उनको हार्मोन ट्रीटमेंट से हम कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी,
0: बट आई कैन टेल यू ये कैंसर इतना डरने वाला कैंसर नहीं रहा है, और रेगुलर चेकअप, पीएसए चेकअप अगर हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं।
1: डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ने से पहले आपकी पसंद का एक गाना और हो जाए, कौन सा गाना सुनवाएं?
0: सरस्वती चंद्र का वो गाना, चंदन साबदन
1: चंचल चितवन।
0: चंचल चितवन
1: बेहतरीन
0: गाना,
1: बहुत
0: अच्छा गाना है
1: जी। मुकेश की आवाज में भी है
0: आवाज में, और लता जी की आवाज में भी है
1: जी।
0: मुझे लगता है कि मुकेश की आवाज में सुनेंगे।
1: मुकेश की आवाज वाला गाना सुनते हैं
0: जरूर।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों की बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, तो किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति कब आती है और किस तरह के जोखिम होते हैं उसमें, और क्या किडनी ट्रांसप्लांट से किडनी की समस्याएं दूर हो जाती हैं?
1: सो जिसे किडनी फेलियर होता है, जिसके अलग अलग कारण हैं, और जब दोनों किडनी फेल हो जाती है तब परिस्थिति आती है कि वो किडनी रिप्लेसमेंट करना या किडनी फंक्शन रिप्लेस करना ज़रूरी हो जाता है। हमारे देश में अब सबसे कॉमन कारण डायबिटीज़ बन रहा है, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर,
0: जी
1: और कुछ किडनी के इन्फेक्शन या कभी कभी स्टोन्स वगैरह की किडनी ऑब्स्ट्रक्ट होके अगर सही समय में ट्रीटमेंट नहीं ली तो फिर ये किडनी डैमेज हो जाती है।
0: जी
1: सो जब दोनों किडनी डैमेज हो जाती है तब हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि किडनी के बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इज अ फिल्ट्रेशन प्लांट इन आवर बॉडी,
0: जी जी
1: और जब वो काम नहीं करता है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाना शुरू हो जाता है, एसिड बेस बैलेंस में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, खून बनाने में तकलीफ होने लगती है, किडनी हमारा बोन मेटाबॉलिज्म में भी ख्याल करती है, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। और कभी कभी जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस या पोटाशियम बढ़ने से या एसिडोसिस बढ़ने से वो कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, और उस समय इसे हम एंड स्टेज रिनल डिजीज कहते हैं, ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो जाती है, या तो डायलिसिस या तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डायलिसिस ये एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है, जो
0: जी
1: हफ्ते में 2 या 3 बार मरीज को मशीन के ऊपर जाके ये ब्लड साफ करना या जो केमिकल्स जो बदन में तकलीफ देती है उनको क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है, दैट इज डायलिसिस।
0: जी
1: लेकिन डायलिसिस के लिए हफ्ते में 2 या 3 बार जाना पड़ता है, और उससे पूरे किडनी के फंक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं होता है।
0: जी जी
1: सो द बेटर ट्रीटमेंट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन।
0: जी
1: नाउ किडनी ट्रांसप्लांटेशन से नई किडनी मरीज को देके जो फिर वो किडनी का काम अपने आप ले लेती है, जिससे नियर नॉर्मल लाइफ पेशेंट की हो सकती है।
0: जी
1: लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, शॉर्टेज ऑफ ऑर्गन्स। हर साल कुछ 2 लाख मरीज इंडिया में है जिनको ये रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, और अल्टीमेटली 10% मरीज हैं जिनको ये ट्रीटमेंट मिल सकती है,
0: जी
1: क्योंकि डायलिसिस अब काफ़ी सेंटर्स में डायलिसिस की सुविधा मिल रही है, लेकिन वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन मिलना डिफिकल्ट है।
0: जी
1: 2 प्रकार के किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, जिसे हम रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं या डिजीज डोनर या कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। लिविंग डोनर में जहां पेशेंट और डोनर दोनों की किडनीज मैच होती है, जो अलग अलग ब्लड टेस्ट से हम चेक करते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पर्सन डोनेट करता है उनकी हेल्थ को हमको ज़्यादा चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने डोनेट किया और खुद पेशेंट बन गए।
0: बिल्कुल
1: सो पहले वो सब हम चेकअप करते हैं कि जो डोनेट करना चाहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फॉर्चुनेटली एक किडनी से कोई भी पेशेंट अच्छी ज़िंदगी जी सकता है, और इसके कारण अगर बाकी सब रिपोर्ट्स ठीक रहे तो एक किडनी डोनेट कर सकता है। सो जिसे हम लाइव डोनर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, और इसमें भी कुछ गवर्नमेंट्स के कानून है, उस हिसाब से हम डोनर सिलेक्ट कर सकते हैं।
0: जी
1: लेकिन सबसे ज़रूरी बात है, जैसे हम डिजीज डोनर और कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं, अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आफ्टर डेथ अगर हम किसी को मदद कर सके तो इससे बड़े चीज़ क्या है।
0: जी
1: और डेथ हम ऐसे मानते हैं कि अगर हमारा हार्ट बंद हो गया तो हमारी डेथ हो गई, एक्चुअली ये ब्रेन है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है,
0: जी
1: और जब ब्रेन काम करना बंद हो जाता है तो उसे हम ब्रेन डेथ कहते हैं।
0: जी जी
1: नाउ कुछ मरीज जिनके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुए, जिनको एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण ब्रेन डैमेज हो जाता है, जहां टेक्निकली व्यवस्थित जांच करके एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये मरीज अभी ब्रेन डेड है, जिसको वापस जिंदा करना पॉसिबल नहीं है, अगर उनके ऑर्गन्स यूज कर सकें तो वो ऑर्गन से काफी लोगों को सेकेंड लाइफ मिल सकती है, जिसे हम कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है
0: जी, जी।
1: क्योंकि अदरवाइज यही ऑर्गन्स या तो हम दफना देते हैं या हम जला देते हैं। अगर समय में ये ऑर्गन्स अगर मिल गए तो काफी लोगों की जिंदगी सुधर सकती है।
0: जी।
1: ये बात मानना गलत है कि कहाँ भी एक्सीडेंट हो गया कहाँ से हम ऑर्गन ले लेंगे और ट्रांसप्लांट कर देंगे, ये सब अगेन मिथ्स है। ऑर्गन डोनेशन के लिए पहले तो मरीज ज़्यादा करके इस बीमारी से जब आईसीयू में वगैरह रहते हैं, जब पूरी ट्रीटमेंट की कोशिश हो जाती है, उसके बावजूद जब चार एक्सपर्ट बताते हैं कि वापस जिंदा रहने की कोई चांस नहीं है, उस समय हम पेशेंट के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है वो रिलेटिव से पूछते हैं कि आप डोनेशन के लिए तैयार है कि नहीं। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत कम समय मिलता है, इसके बाद में हार्ट बंद हो जाता है। अगर एक बार हार्ट बंद हो गया तो ये जो ब्लड फ्लो ऑर्गन्स को मिल रहा था डेड बॉडी में, जिसके कारण ऑर्गन्स कुछ समय तक काम करते हैं, अगर उस समय के दरमियान हमको ऑर्गन मिले तो ही हम यूज़ कर सकते हैं।
0: जी जी।
1: सो ये अगर लोगों को अवेयरनेस रही कि समथिंग कॉल्ड कैडेवर ट्रांसप्लांट जैसा है, जो इस प्रकार के ब्रेन डेड लोगों के ऑर्गन्स जो लीगल फ्रेमवर्क के अंडर जब लिए जाते हैं और पेशेंट्स को देते हैं, काफी पेशेंट्स को सेकंड लाइफ मिलती है।
0: जी।
1: सो ये जानना बहुत जरूरी है।
0: जी।
1: दूसरी बात, ट्रांसप्लांट के बाद भी 100% सक्सेस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली और किसी का ऑर्गन जब मिलता है वो बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर भी निर्भर रहता है।
0: जी, जी।
1: उसके लिए जांच जरूर करते हैं, उसके लिए काफी दवाइयां हैं जिससे ये रिजेक्शन ना हो, वो कोशिश होती है, लेकिन हर बॉडी वो एक्सेप्ट कर सकेगी कि नहीं वो भी प्रश्न रहता है। सो ये सब चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो मरीज ऑर्गन फेलियर से तकलीफ में है, उनके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है, उनको एक नई लाइफ मिल जाती है। सो लोगों को इसके बारे में भी जानकारी बहुत महत्व की है, और इसके पीछे भी काफ़ी मिथ्स जो वगैरह रहती है उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है।
0: जी जी।
1: काफ़ी लोग खाली पड़ते हैं कि ये ऑर्गन चोरी हुई या अनरिलेटेड पैसे दे के ट्रांसप्लांट, वो कॉमन नहीं है।
0: जी जी, जी।
1: इसीलिए राइट सेंटर में राइट लोगों से सलाह लेके राइट लीगल फ्रेमवर्क में अगर हम ये करेंगे तो काफ़ी लोगों को हम नई जिंदगी दे सकते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ब्रेन डेथ इज डेथ, और उनके समय में ऑर्गन अगर हम निकाल के किसी को डोनेट कर सके तो काफी लोगों को फायदा हो सकता है।
0: जी बिल्कुल, बड़ी तथ्यपरक बात कही है आपने, और ये अमूमन लोग जुमला इस्तेमाल करते हैं, सांस रुकी तो इंसान चला गया, लेकिन आपने कितनी जानकारी वाली बात बताई कि मस्तिष्क ब्रेन का काम करना जरूरी है, ब्रेन रुका तो फिर इंसान गया। अब डॉक्टर साहब, एक बड़ी ही ज़रूरी बात है, वो है यूरिनल ट्रैक में कैंसर की समस्या। हम चूँकि यूरिन के विषय पर बात कर रहे हैं तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: सो सबसे बड़ा लक्षण ब्लड इन द यूरिन, जब भी रिपोर्ट में या मरीज देखता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, उस समय जांच करना बहुत ज़रूरी है।
0: जी, जी।
1: किडनी कैंसर जब ये हम जांच करते हैं तो कुछ कुछ किडनी में भी हमें कैंसर दिखाई देता है।
0: जी।
1: सबसे बड़ी समस्या ब्लैडर कैंसर की है।
0: जी जी।
1: और द कॉमनेस्ट कॉज इज स्मोकिंग और टोबैको।
0: ओ।
1: जो लोगों को पता नहीं है, लेकिन टोबैको से ये ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है, और वो अगर समय से ट्रीट किए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा स्प्रेड हो गया तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। सो अगेन यहाँ दो तीन चीज़ें हैं, ऑफकोर्स लाइफस्टाइल चेंजेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आई थिंक टोबैको इज़ अनदर थिंग जिसके कारण शरीर में काफ़ी जगह में कैंसर होने की शक्यता रहती है। और तीसरा है रेगुलर हेल्थ चेकअप, जो अगेन समय में कैंसर की बीमारी पता चलने से उसकी समय में अगर ट्रीटमेंट कर दी तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं
0: जी। मतलब ये पूर्णतः इलाज हो सकता है अगर समय पर।
1: Absolutely.
0: जी, तो अब डॉक्टर साहब चलते चलते एक गाना आपकी पसंद का सुनवाएं, कौन सा गाना?
1: जरूर, आई थिंक ये आइकॉनिक गाना है, लग जा गले फिर कभी मुलाकात हो ना हो।
0: जी, अमूमन अंताक्षरी हो या कहीं कोई स्टेज प्रोग्राम हो या रेडियो का कोई प्रोग्राम हो, इस गाने के बगैर अधूरा सा रहता है। तो आज का ये प्रोग्राम भी जैसे अधूरा सा था इस गाने के बगैर। फिल्म है वो कौन थी, लता मंगेशकर की आवाज़, पर्दे पर साधना, सुनते हैं ये गाना।

0: और अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को सलाह दीजिए डॉक्टर साहब कि ये प्रोस्टेट के बढ़ने के बारे में, प्रोस्टेट और यूरिन की समस्याओं से जूझते लोगों की सजगता के लिए आप चंद शब्दों में क्या कहेंगे?
1: सो कुछ चीज़ें शरीर में कुदरती बढ़ती है, लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड.
0: जी
1: हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि उम्र के हिसाब से बढ़ती है. इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वैसी बात नहीं है. लेकिन रेगुलर चेकअप करने से, एक्सपर्ट के पास चेकअप कराने से, समय में अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो ट्रीट कर सकते हैं. कैंसर बड़ा शब्द है, लेकिन मॉडर्न टाइम में काफ़ी ट्रीटमेंट अवेलेबल है. अगर कैंसर को समय में डिटेक्ट किया तो अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं. यूरिनरी प्रॉब्लम्स कभी कभी छोटे रहते हैं, तकलीफ ज़्यादा देते हैं. लाइफस्टाइल चेंजेस से और प्रॉपर काउंसलिंग और दवाई समय से लेने से काफ़ी टेंशन्स कम हो सकती है और यूरिन के प्रॉब्लम हम कंट्रोल कर सकते हैं. किडनी स्टोन्स हमारे देश में कॉमन है. अगेन, राइट टाइम में डिटेक्शन होना ज़रूरी है.
0: जी
1: और सबसे बड़ी बात, गूगल या कोई भी इंफॉर्मेशन पेशेंट के लिए अच्छा है, हमें जानना ज़रूरी है, लेकिन उस हिसाब से अपने आप ट्रीटमेंट डिसाइड करना, अपने आप टेंशन ले लेना, अपने मित्रों से सलाह लेना, ये सही नहीं है. क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत बातें आती है, वो साइंटिफिकली सही है कि नहीं, वो बताने के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए.
0: बिल्कुल
1: सो मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसी प्रश्न आपके मन में आए, आप एक्सपर्ट को पूछिए.
0: जी
1: अगर आपको कुछ सलाह दी गई है, वो ट्रीटमेंट के बारे में है, ऑपरेशन के बारे में है, अवॉइड मत कीजिए. अगर आपको डाउट है, ज़रूर सेकंड ओपिनियन लीजिए. लेकिन ये बहुत महत्व की चीज़ है कि जो डिजीजेस अगर हमने समय में उसको पकड़ लिया, समय में ट्रीटमेंट उनकी आपको सही तरह से मिल गई, तो आगे जाके उसके कॉम्प्लिकेशंस कम हो गए और वो क्योर होने की शक्यता बढ़ जाती है.
0: जी
1: आई थिंक हेल्थ इज़ वेल्थ, वी ऑल नो.
0: जी
1: और आज के ज़माने में जहाँ इवन आफ्टर एज ऑफ 60, 70, 80 एंड 90 लोगों एक्टिव है, हेल्थ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. ये भी मैं जानता हूँ कि हेल्थ ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव हो रही है. जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इट इज़ कमिंग एट अ कॉस्ट. सो यस, पहले 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ता था, अभी 2 दिन में ट्रीटमेंट हो जाती है.
0: जी जी
1: लेकिन इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर.
0: जी
1: सो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रिवेंशन, एंड दैट इज हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल चेंजेस, एडिक्वेट वाटर ड्रिंकिंग एंड टाइम टू टाइम रेगुलर चेकअप. आई थिंक दिस विल गिव अ गुड रोड मैप फॉर अ गुड हेल्थ, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट क्रूशियल थिंग इन मॉडर्न टाइम.
0: जी
1: थैंक यू वेरी मच.
0: डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी सारी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। विविध भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार
1: नमस्कार.
0: दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
2: सेहतनामा।

0: FM 103.4 MHz पर आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे 5वीं बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार से बातचीत का प्रस्ताव आया था और सुबह 11:50 से इस पर चर्चा जारी है। श्री नड्डा ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में पूर्ण हुई और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रारंभिक चर्चा से विस्तार हुआ। प्रदर्शनकारियों ने शाम करीब 4 बजे सरकार को एक लिखित याचिका सौंपी। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आयोग किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को इस बारे में निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच समिति SIT की गठित की जा सकती है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद का राजनीतिकरण न करने को भी कहा है। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहन्ना की पीठ ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा के कथित गबन की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी से मुलाकात की। श्री नायडू ने कहा कि श्री अब्दुल्ला ने भारत के तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। इसमें रखरखाव, मरम्मत और संचालन तथा विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि मजबूत हवाई संपर्क लंबे समय से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी का मजबूत आधार रहा है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज 4 धाम की यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और 4 धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थयात्रा को अस्थिर रूप से रोकने का निर्णय लिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह फैसला तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर लिया गया है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Both houses of parliament witnessed multiple adjournments amid uproar by opposition parties over various issues, including the NEET paper leak case, on the first day of the monsoon session today. Later, the Lok Sabha and the Rajya Sabha were adjourned for the day. When the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m., the house paid tributes to six of its former members who passed away recently. The house also paid tributes to Father Emir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani. After obituary reference, when the speaker tried to take up the questionnaire, the opposition members, including from Congress and Samajwadi Party, raised the issue of paper leak of NEET examination. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in smooth functioning of the House and maintain decorum, but the opposition members continued with their protest, leading to adjournment of the House till 12 noon. When the Lok Sabha House met after the sixth adjournment at 3 p.m., similar situation prevailed in the House, forcing the chair to finally adjourn the House for the day. The Rajya Sabha also witnessed multiple adjournments before being finally adjourned for the day. The House today witnessed six adjournments over the NEET issue. In the Rajya Sabha, the proceedings began at 11 a.m. with the oath of the newly elected members. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal today introduced the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha. The bill aims to further amend their Supreme

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कार्यक्रम में लीजिए, सुनिए जगजीत सिंह का गाया हुआ ये भजन।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:25 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवा मंच। आज किस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भारतीय नौसेना में कार्यरत लेफ्टिनेंट आराध्य शर्मा से खास बातचीत हमारे सहयोगी संजीव कुमार के साथ।

युवा साथियों, जय हिंद। भारत युवाओं का देश है। हमारे देश के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो उचित मार्गदर्शन, दृढ़ संकल्प, सकारात्मक सोच और लक्ष्य निर्धारण की। फिर एक बार आप सफल हो जाएं तो खुद आत्मविश्वास तो आपका बढ़ता ही है, साथ ही परिवारजनों और मित्र बंधुओं को भी आप पर गर्व होता है। ऐसी ही एक युवा प्रतिभा हमारे साथ हैं, जिनका नाम है आराधन। भारतीय नौसेना में

0: जैसा मौसम रहता है, पूरी दुनिया बच के यहाँ आना चाहती है। और अगर आप इवन सोशल मीडिया भी देख लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल रिलेटेड धर्मशाला के बारे में बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा कि कितनी जगहें हैं यहाँ घूमने के लिए, कितना कुछ है यहाँ पे। मौसम बहुत अच्छा रहता है थ्रू आउट द ईयर, आप देखेंगे गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो जब भी मैं जॉब पे होता हूँ, मैं हमेशा घर को इसीलिए बहुत ज़्यादा याद आती है घर की, कि अभी तो वहाँ पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ़ देखने को मिलती। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो धर्मशाला के बारे में बहुत याद आती है मेरे को।
1: स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई है?
0: मैंने अपनी स्कूलिंग स्कूल से की है, जो कि सिद्धपुर धर्मशाला में ही है। वो ICSE बोर्ड से एफिलिएटेड है, और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और 12th तक की शिक्षा वहीं से की है।
1: खेलकूद की बात करें तो कितनी रुचि आपकी खेलकूद में रही?
0: खेलकूद मैं हमेशा ही इंटरेस्टेड रहा हूँ, चाहे ना बारिश हो, तूफान हो, सर्दी हो या गर्मी हो। वो एक ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी छोड़ी नहीं। और जितना आप नए स्पोर्ट्स सीखते हैं, उतना आप नए किसी स्पोर्ट्स मैन से मिलते हैं, एक स्पोर्ट्स स्पिरिट आपके अंदर आती है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी एक क्वालिटी है जो हर किसी में होनी चाहिए। डिसिप्लिन होना आपको वो बताता है, कोई नई आप स्किल सीखते हैं तो वो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट ही लाता है, तो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। आप कोई भी स्पोर्ट्स ले लीजिए।
1: जी,
0: तो
1: पसंदीदा खेल आपका कौन सा रहा?
0: मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है, क्योंकि आप देखिए कि उसमें आपको, अगर आप अकेले भी, आपके पास एक बॉल हो, आप अकेले प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसमें काफ़ी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। तो बास्केटबॉल मेरा पसंदीदा खेल है।
1: जी, खेल कूद के अलावा और क्या शौक रहे आपके?
0: अभी मैं धर्मशाला से हूँ, यहाँ के ट्रैक्स तो बहुत फेमस हैं, तो मुझे ट्रैकिंग का बहुत शौक है।
1: जी
0: आसपास के ट्रैक्स धर्मशाला में या फिर जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही है, अगर वहाँ मुझे पता चल जाए कोई ट्रैक है, तो मैं ज़रूर ट्रैक तो ज़रूर करता ही हूँ। और साथ में मुझे कैंपिंग का भी शौक है, तो अपने साथ हमेशा एक मैं बैकपैक लेके रखता हूँ जिसमें टेंट रहता है। मुझे गाना सुनने का शौक है, और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट अभी मैं सीख रहा हूँ,
1: जी
0: जो मैं पहले नहीं कर पाया।
1: चोप में रहते हुए आप अपने शौक भी पूरे कर पा रहे हैं।
0: ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लोग अक्सर अपनी जॉब में जो उनकी शौक़ होते हैं उन्हें पीछे छोड़ देते हैं, आप भूल जाते हैं,
1: जी,
0: लेकिन समय निकाल कर अगर आप खुद के शौक़ भी पूरे कर लें तो वो अच्छी चीज़
1: बहुत
0: है
1: अच्छी
0: एक।
1: बात है। और ट्रैकिंग की आपने बात की है, तो ट्रैकिंग आपने अभी शुरू की है या बचपन से ही करते आ रहे हैं?
0: वो तो स्कूल टाइम से ही कुछ दोस्त इकट्ठे हो जाते थे। अभी धर्मशाला की बात करो तो यहाँ पे त्रिउंड है, करेरी लेक है,
1: जी
0: तो वो सब तो स्कूल टाइम में ही कर लिए थे। तो फिर जैसे जैसे बड़े होने लगे तो और ट्रैक्स का पता चलने लगा, और अभी तो काफ़ी इजी भी हो गया है, तो धीरे धीरे वही ज़्यादा ट्रैक्स और वैसे शुरू किया।
1: तो उस वक्त तब आप छोटे थे लेकिन आप ट्रैकिंग पे जाते थे, घर के जो सदस्य हैं वो आपको परमिशन दे देते थे इस चीज़ की?
0: उसके लिए बहुत मनाना पड़ता था कि जल्दी आ जाएंगे, जल्दी जाएंगे, खा लेंगे, फ्रूट्स डाल लेंगे। उन्हें, अगर घर वाले सेटिस्फाइड हैं, उन्हें सेटिस्फाई करना ट्रैक करने से ज़्यादा मुश्किल होता
1: जी जी
0: था,
1: जी
0: तो उसके बाद ही अनुमति मिलती थी।
1: आराधन, आज आप भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है, जाहिर तौर पर वो बहुत कठिन रहा होगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि लक्ष्य निर्धारण कैसे किया आपने, किस तरह से सोचा कि आपने एक लेफ्टिनेंट ही बनना है और वो भी भारतीय नौसेना में?
0: मेरा हमेशा से ही भारतीय डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करने में थोड़ा इंटरेस्ट था, और ये ऐसा ऐसे डेवलप हुआ कि अभी आप देखिए धर्मशाला एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आर्मी की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। योल कैंट ले लीजिए या मैक्लोडगंज वाला कैंट ले लीजिए। तो बचपन से ही मैंने काफ़ी आर्मी वालों को देखा है, मेरे नाना जी आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो यहाँ से, और कभी कुछ मूवीज़ देख के, मुझे अभी भी याद है मैं 8th या 9th क्लास में था जब मैं हूँ ना मूवी देखी थी मैंने,
1: जी
0: तो थोड़ा वहाँ से भी। और देश सेवा अपने में ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी मोटिवेट कर सकती है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। तो यही सब अपने एनवायरनमेंट और खुद से थोड़ा इंटरेस्ट मेरा डेवलप होता रहा, और जब मैं 10वीं या 11वीं कक्षा में हुआ तो मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे डिफेंस फोर्सेस ही ज्वाइन करनी है। और जब मैं तैयारी करने लगा तो पहला पहला एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो वो नेवी का था, और फिर मेरे आगे उसका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, तो इस तरह से मैं नेवी में आया।
1: आपने मैं हूं ना मूवी की बात की है, तो आइए इस फिल्म का एक गीत यहां पर हम सुन लेते हैं।

0: जी आराधन, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आपने तैयारी की बात की है, क्या क्या कठिनाई आपको तैयारी करने में आई है?
1: देखिए, डिफेंस जॉइन करने के लिए एक SSB इंटरव्यू होता है जो कि और कहीं नहीं होता, सिर्फ डिफेंस के लिए ही है, और उसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है
0: जी, तो
1: और
0: इसके लिए आपने
1: काफ़ी।
0: कहीं कोचिंग वगैरह ली है या
1: हाँ
0: अपने आप
1: जी,
0: से तैयारी की है?
1: मैंने ऑनलाइन उस टाइम इतना था नहीं, अगर आप 2017-18 की बात करें तो उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस और इन सब का इतना अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो उस टाइम चंडीगढ़ में एक एकेडमी है जो SSB की कोचिंग के लिए क्लासेस लेते हैं,
0: जी,
1: तो मैंने वहाँ से कोचिंग ली थी।
0: और उसके बाद कितने समय के बाद आपको ऐसा लगा कि अब मैं इस परीक्षा को देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ?
1: कोचिंग के बाद ही, क्योंकि मैं खुद से भी तैयारी कर रहा था, जब मुझे लगा कि अभी मैं तैयार हूँ, बस एक बार एक कोचिंग लेकर मैं कॉन्फिडेंस उतना बिल्डअप कर लूँ कि मैं इसे आगे क्लियर कर सकता हूँ, तो जैसे ही मैंने कोचिंग ख़त्म किया, उसके एक महीने बाद मैंने एग्ज़ाम के लिए अपेयर किया था और मैंने क्लियर कर लिया।
0: युवा साथियों के लिए हम ये भी जानना चाहेंगे कि पढ़ाई के लिए कितना वक्त आप निकाल लेते थे उस समय?
1: पढ़ाई के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा मायने नहीं रखता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप जितनी भी देर पढ़ाई को दे रहे हैं उसमें आप कितना प्रोडक्टिव हैं, उसमें आप कितने अच्छे से, अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं और अगर आप मन लगा के उन 2 घंटे में पढ़ाई करें, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा मायने रखता है इससे कि आप 10 घंटे पढ़ें लेकिन आप अपना ध्यान ना लगाएं या फिर उतना नॉलेज ना ले पाएं। मेरी बात करें तो मैं दिन में 6 घंटे के आसपास, 6 या 7 घंटे के आसपास थोड़ा ब्रेक लेके कि मैं माइंड भी फ्रेश रहे और जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद भी रहे, तो मैं इतना ही पढ़ता था।
0: जी, और आज आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, आपके मित्रों का, आपके परिजनों का कितना सहयोग रहा है इसमें?
1: देखिए, फैमिली सपोर्ट बहुत हमेशा ही बहुत ज़रूरी रहता है। कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये वाला सिलेबस या इस पुस्तक से मैं पढ़ रहा हूँ ये उतना मुझे नहीं हेल्प कर पाएगी, तो फाइनली पेरेंट्स ही होते हैं जो कहीं से पूछ कर या कहीं से पता कर कर आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं, क्योंकि उस स्टेज में आप खुद नहीं जानते कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आपके परिवार वालों का सपोर्ट हमेशा ही बहुत ज़रूरी रहता है।
0: जी,
1: तो जब मुझे तैयारी करनी थी, सिलेबस वगैरह जानना था, तो मैंने भी अपने परिजनों से ही, अपने टीचर्स से गाइडेंस लिया और उन्होंने मुझे सही गाइड किया। तो जितनी भी मैंने तैयारी की उसने मुझे आगे हेल्प किया, तो पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा रहता ही है, आपको हमेशा वो कुछ सही गाइड करेंगे, आपके लिए ही सोचेंगे, तो पेरेंट्स का तो हमें बहुत सपोर्ट रहा है मेरे इस पूरी तैयारी में, मुझे कोचिंग भेजने के लिए, कोचिंग के लिए सही एकेडमी ढूंढने के लिए, सभी चीज़ के लिए पेरेंट्स ने ही साथ दिया है मेरा।
0: और इतनी बड़ी तैयारी करने के लिए, इतना बड़ा जो एग्ज़ाम है इसको क्रैक करने के लिए बहुत सी बार तनाव हो जाता है, टेंशन्स हो जाती हैं, स्ट्रेस हो जाता है। आपको भी कभी हुआ ऐसा?
1: स्ट्रेस तो हमेशा रहता ही था, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन आप देखिए बहुत है, बहुत लोगों में वो देशभक्ति की भावना है, और उसमें भी ऊपर निकल के आना और इंटरव्यू क्लियर करना इतना आसान काम नहीं है, तो तनाव अक्सर हो जाता था। तब थोड़ा घर वालों से बात करके, थोड़ा मेडिटेट करके, खुद को समझा के, खुद को काम करके, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आगे बढ़ना, वो सब धीरे धीरे मैंने सीखा, डेवलप किया।
0: आराधन, यहाँ आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं।
1: योद्धा मूवी का तेरा हिमालय आकाश छूले एक अच्छा गीत है जो मुझे पसंद है।

0: जी आराधन, बहुत ही सुंदर गीत आपकी पसंद का अभी हमने सुना, हमारे सभी श्रोताओं ने भी सुना। और आपसे कार्यक्रम में अब ये जानना चाहेंगे कि जीवन में आप अपना आदर्श किसे मानते हैं?
1: जीवन में मैं अपना आदर्श अपने दादाजी को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपना पैसे इतने थे नहीं कि आप एक अच्छी जगह जाके शिक्षा ले सकें और फिर एक जॉब कर सकें, तो उन्होंने जिस तरह से एक होटल में काम कर कर मतलब अपनी शिक्षा के लिए काम भी किया, साथ में पढ़ाई भी की, और उसके बाद एक जॉब पर भी लगे, वो भी सरकारी जॉब उस टाइम में जो बहुत मुश्किल होती थी मिलना, तो जिस तरह से वो मेहनत करते थे और जिस तरह से उन्होंने मुझे मेरे सफ़र पर हमेशा सपोर्ट किया है या फिर मार्ग दर्शाया है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है और मैं उन्हें आदर्श मानकर जब भी किसी चीज़ की तैयारी करता हूँ या फिर किसी काम को करने के लिए बढ़ता हूँ तो उनके बारे में सोचता हूँ और उनसे काफ़ी मोटिवेशन लेता हूँ।
0: जी आराधन, जब भारतीय नौसेना में आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद बात आती है ट्रेनिंग की, तो वो दौर कैसा बीता?
1: ट्रेनिंग वाला दौर एक ऐसा दौर है जो हर फौजी पूरी ज़िंदगी याद रखेगा, क्योंकि वहीं पर उसे तोड़ा जाता है और वहीं पर उसे बनाया जाता है। 4 साल की ट्रेनिंग आसान नहीं है और आप ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखते हैं, आपको तोड़ कर फिर से बनाया जाता है, आपको उतना सख्त बनाया जाता है कि आप आगे पूरी सर्विस हैंडल कर सकें और जिस रोल के लिए आप फौज ज्वाइन कर रहे हैं आपको वो करने में कोई परेशानी ना आए। अकेडमीज में ऐसा कहा जाता है, यू सेंड अस योर बॉय एंड वील मेक हिम अ जेंटलमैन, तो वैसा ही रहता है जब आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं 17-18 साल की उम्र में और जब आप बाहर आते हैं 20-21 साल की उम्र में, तो आपके अंदर वो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, आप एक बॉय या फिर एक युवा की तरह जाते हैं और जब आप बाहर आते हैं आप एक जेंटलमैन बनकर आते हैं, तो वो जो चेंजेस हैं वो अकेडमी में ही आपके अंदर लाए जाते हैं हर तरीके से, फिजिकली आपके एटीट्यूड में आपके इमोशंस में, वो सारे चेंजेस एकेडमी की ट्रेनिंग से ही आते हैं।
0: और जब ट्रेनिंग आपकी चल रही थी, हमें याद है उस वक्त कोविड का दौर था, एक बहुत बड़ी
1: जी
0: महामारी थी और पूरा देश, या यूं कहें कि पूरा विश्व उस वक्त तनाव में था, तो ऐसे में आपने क्या किया?
1: कोविड का हमारी ट्रेनिंग पर कोई असर नहीं हुआ, पूरे हमारे जो एकेडमी थी उसे लॉक कर दिया गया था। से सबसे बड़ा खतरा था कि वो बीमारी एकेडमी में ना फैल जाए, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है ट्रेनिंग शेड्यूल में ट्रेनीज़ को। हम सभी को क्वारंटीन कर दिया गया था और जब सबके टेस्ट हुए और ये स्थित हो गया था कि कोई भी पॉजिटिव नहीं है, किसी को भी कोविड नहीं है, तो उसके बाद हमारा ट्रेनिंग 1 महीने में फिर से रिज्यूम हो गया था। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी हाइजीन इश्यूज हैं उन सभी को ध्यान रखते हुए हमारी ट्रेनिंग आगे बढ़ती रही। काफ़ी अलग टाइम था, थोड़ा प्रिकॉशन भी लेना था, ट्रेनिंग भी करनी थी, दोनों चीज़ें ज़रूरी थी, बट उससे ऐसा नहीं हुआ कि हमारी ट्रेनिंग में कोई कमी आई हो या किसी चीज़ में कुछ रुकावट हुई हो।
0: आजकल आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है?
1: अभी मैं मुंबई में पोस्टेड हूँ जो कि भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमांड है वहाँ पर।
0: जी, मुंबई में रहकर घर परिवार से इतना दूर रहकर परिजनों को किस तरह याद करते हैं आप?
1: देखिए, घर से दूर जाकर ही घर वालों की अहमियत समझ आती है, जब वो घर का खाना आप ढूंढते हैं कि घर जैसा खाना मुझे कहीं मिल जाए, और घर वालों की थोड़ी याद आती है। जैसा कि मैंने बताया, मैं बचपन से धर्मशाला में ही रहा हूँ और यहाँ इस जगह को मैं बहुत ज़्यादा जब भी दूर जाता हूँ तो बहुत याद आती है। तो घर वालों से बात करना कई बार ऐसा रहता है कि हमारी सेलिंग लंबी खिंच जाती है, कई कई दिनों तक बात नहीं हो पाती है, लेकिन जैसे ही वापस आते हैं सबसे पहले घर पे बात कर कर ही दिल को शांति मिलती है कि घर वाले सही हैं तो सब सही है।
0: और वैसे भी कहते हैं कि भारतीय सेना में जो भी कार्यरत हैं, उनका यूनिट जो होता है, वही उनका परिवार होता है।
1: जी बिल्कुल, अभी आप अगर आप देखेंगे तो मैं साल में 200 से 300 दिन तो अपनी यूनिट के साथ ही बिताता हूँ, जो मेरा परिवार बन चुका है अभी, उन्हीं के साथ समय बिताना, सेलिंग में उनके साथ बैठना, उनके बारे में पूछना, उनके बारे में जानना, उनसे उनका साथ देना, तो धीरे धीरे वही एक परिवार बन जाता है जो घर से थोड़ा दूर है और आप उन्हीं के साथ अपनी भावनाओं को शेयर करने करके अपना मन हल्का कर लेते हैं। कभी ऐसा लगे कि समय थोड़ा मुश्किल जा रहा है तो वही लोग आपका साथ भी देते हैं।

0: आजकल के टाइम अगर आप देखें तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो आपको मदद कर सकते हैं, जो कि पहले के टाइम में इतना आसानी से अवेलेबल नहीं रहते थे। बस वो लगन और वो डेडिकेशन एक खुद में चाहिए कि मुझे करना ही है जैसे भी, और वो एटीट्यूड खुद में लाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन अगर एक बार आ जाता है तो आप कभी भी अपने गोल से या जो भी आपने अपने लिए लक्ष्य रखा है आप हमेशा उसे पाएंगे ही।
1: आराधना, आप आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज में आए, अपनी जीवन के खूबसूरत पलों को हमसे साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।

FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी।

श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ। 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियाँ। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संसद समीक्षा। रात्रि 8:30 पर देशगान सुनवाया जाएगा। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार प्रसारित किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए हुए कुछ फिल्मी गीत। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। रात्रि 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से मानसून सत्र 2026 के दौरान राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई प्रसारित की जाएगी। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 News@9 और रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:00 को हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर करीब 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में आज लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक एक या उससे अधिक है, जो लड़कियों की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्राओं, छात्रों और दिव्यांगजनों के लिए शौचालय, पीने का पानी, बिजली और रेलिंग वाले रैंप जैसी बुनियादी सुविधाओं सहित इंटरनेट कनेक्शन और कंप्यूटर जैसी सुविधाओं की उपलब्धता में भी सुधार देखने को मिला है। कांगड़ा जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित सीमा चौधरी और उपाध्यक्ष पद पर अभिमन्यु कंवर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। चुनाव की प्रक्रिया आज धर्मशाला में पूरी की गई। चुनाव प्रभारी व विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि भाजपा ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद जीते हैं, जो संगठन की एकजुटता व जनता के विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि पंचायत व जिला परिषद चुनावों के परिणामों ने प्रदेश की राजनीतिक दिशा स्पष्ट कर दी है।
1: मुख्यमंत्री जी, आपका जो ये व्यवस्था परिवर्तन है उसका नमूना आप पूरे हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं। युवा हताश है, महिलाएं दुखी हैं, किसान चिंतित है। बिजली मीटर पर 300 यूनिट मुफ्त सिर्फ और सिर्फ काठ की हांडी बन गई है। बिजली के मीटर्स पर अगर जब बिल आता है तो सेस जो है वो हिमाचल प्रदेश के 28 लाख उपभोक्ताओं के जेब में डाका डाला जा रहा है, यानी समाज पूरी तरह से दुखी है, उसी का ये परिणाम है।
0: इस अवसर पर भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने भी प्रदेश की अधिकांश जिला परिषदों में भाजपा समर्थित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव प्रक्रिया टालने का प्रयास किया, लेकिन भाजपा के समर्थन को कमजोर नहीं कर सकी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अपनी भाषा पर संयम रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने देश की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी है और इन नेताओं की याद में उच्च संस्थाओं के नामकरण का निर्णय गलत नहीं है। विनय कुमार ने कहा कि भाजपा के पास कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, ऐसे में झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है और इसके प्रभाव से कई क्षेत्रों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। राजधानी शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। उधर रेड अलर्ट को देखते हुए कांगड़ा जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि सभी संबंधित विभागों को संवेदनशील और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
2: हमारा प्रयास यही है कि पूरे जिले में किसी तरीके का नुकसान ना हो, और अगर कहीं पर भारी बारिश होती भी है तो हम जानी नुकसान से बचें और जितना मिनिमल लॉस बेयर कर सकते हैं उतना विभागों का जो रिस्पॉन्स है वो स्विफ्ट हो, इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले कल बैठक भी की है और हम मॉनिटर भी कर रहे हैं सिचुएशन, ताकि हम लोग इस चीज़ को डिजास्टर की सिचुएशन को ठीक करें।
0: उपायुक्त ने बताया कि पौंग बांध का जलस्तर पिछले कल 1322 फुट दर्ज किया गया, जो अभी सुरक्षित स्तर पर है। उन्होंने कहा कि बांध की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर चरणबद्ध तरीके से पानी छोड़ा जाएगा। भाजपा ने प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स भर्ती के नए नियमों को बेरोजगार युवाओं के हितों के खिलाफ बताया है। कुल्लू से जारी एक बयान में पार्टी प्रवक्ता अखिलेश कपूर ने कहा कि नए नियमों के तहत वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी विभाग आउटसोर्स सेवाएं नहीं ले सकेगा। इसके अलावा आउटसोर्स व्यवस्था को केवल अति आवश्यक परिस्थितियों तक सीमित कर दिया गया है। भाजपा ने कहा कि इससे उन हजारों युवाओं के रोजगार के अवसर प्रभावित होंगे जो आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमई सांझ। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कल की आवाज़ फिल्म से ये गीत। इस गीत को गाया है आशा भोसले और कुमार सानू ने। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
4: कभी हाँ कभी ना इस फिल्म में लीजिए सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया हुआ ये गीत। संगीत है जतिन ललित का और गीत को लिखा है समीर ने।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
4: करण अर्जुन इस फिल्म में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण का गाया हुआ ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह से। संगीत है ए आर रहमान का और गीत को लिखा है समीर ने।

FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां।

0: कार्यक्रम मौजा ग्राएं दियां सुना करदे सारे ही किसान बागबान भाई बहना जो बड़का चाचू की तरफा दे राम राम। किसान साथियों अज टियाले पर ने मंजो सोगी लोका बहुत जी राम राम
1: राम राम बड़का चाचू जी। तुहें भी राम राम कने जितने भी श्रोता इस वेले कार्यक्रम हाँ दा सुना देन उन्हां सारयां दा हाँ अपने इस कार्यक्रम च स्वागत कर देन है ना।
0: बिल्कुल
1: बड़का चाचू जी देखा मौजां रौनकां जिहड़ा सा ग्राएं च लगियां ने न्याणे छुट्टियां भी पईयां कने देखा न्याणे जिहड़ा सा अपने ननिया अल मौसिया अल बुआ अल मामिया अल जेड़े से गए कने देखा सा तिथु अहां दे फल भी लगे हो अजकल है ना। अंब पके हो जमणू लगे हो फरनू लगे हो है ना
0: जी जी जी।
1: खूब आनंद जेड़ा सा माणा करदे कने मंजो लगदा तुहां भी जेड़ा सा अंबे चुप्पी के ही पुज्जे न।
0: देखा हुण जेड़ी गप तुहां लगाए कि न्याणे जियां हुण बोलदे ना कि जियां स्कूले दे छुट्टियां पौंदी न
1: ते
0: मैं मामे घरे जाना या ननिया घरे जाना।
1: हांजी हांजी
0: ते तियां बाण ज मेरे ब्याह थे।
1: अच्छा
0: फेरी तुहानू पता बोले घर च न्याणे हुंदे सियाणे हुंना ताहे घर दी जिहड़ी रौनक के भाईया हुंदी है
1: हुंदी है बड़ी। हांजी हांजी
0: ता दिखा कि भई चलो इक्की दूजे दे घर जियां जांदे न आउंदे न लेकिन खास तौर पर जियां बरसात दा मौसम भी है और न्याणे के हुंदे न कि शरारती भी हुंदे न।
1: हां ए तां पक्की गल गलाई
0: ता न्याणे दा जिहड़ा विशेष ध्यान रखना भी असां दी जिम्मेदारी है। ता कई बार क्या हुंदा कि मतलब भई ज्यादा बरखा होने दे हुंदी है या फिर कुछ मतलब जियां कोई डंगर बच्छू ने चली जांदे न है ना। ता कई बार क्या हुंदा कि जियां रस्ते च कोई नालू खोलू हुंदे न और देखा कि हुण ता बरखा मतलब जोरा शोरा पर न ते दे परिस्थिति च सांझो मतलब अपने मनोरंजन भी हाँ जरूर करने न मतलब हर चीज जो करनी है लेकिन अपनी जेड़ी सावधानी कन भी सिर रखनी है ना।
1: हाँ जी पक्की गल गलाई तुहां मंजो लगा ता तुहां अपने भाणजे अंब भी खवाया है कन्ने कन्ने आपू भी खाया है ना।
0: जी जी जी जी
1: ता ए मौसमी फल हुंदे ने इन्हां दा आनंद जिहड़ा सा जरूर माणना चाहीदा है ना। ਤਾਂ ਦੇਖਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾ ਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਬੜਕਾ ਚਾਚੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ।
0: ਅੱਛਾ
1: ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਿਆ ਗੱਲ ਬੋਲਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਸਹਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪਾਸ ਜਾ

0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है ना। कहने दिखा ये सिर्फ एक आदत ही नहीं है, जिंदगी का अंत है। दिखा परेशानियां कुछ यू नहीं होनी अजकल के समय च, है ना।
0: जी जी
1: ये
0: जी
1: तो
0: जी
1: ये विकल्प नहीं है कि तुह जरा सह नशे पाहें चली आ, है ना। इसका मतलब यह है कि जड़ा अगर कोई हाँ दा भाई बेचारा चली भी गया नशे पाहें, तो उसी जरा सह एक सही राह दसा, है ना।
0: जी जी जी जी जी
1: कने
0: जी
1: सतर्कता कने जागरूकता जी सह बड़ी भरी जरूरी है। कने न्याणे हो छोटे ते ही जड़ा सह अच्छे संस्कार जड़ा सह पाना चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कने इदे कने मैं तुसी यो गलाया सारे दी समाज दी जिम्मेवारी बनदी। हुण देखी लिया अगर सिगटां दे पैकेटां पर भी वैधानिक चेतावनी मिल गई होंदी इतनी
0: बिल्कुल
1: बड़े
0: बिल्कुल
1: निशान पेड़े होंदे, कने उहदे बावजूद भी बोलदे दिखी के भी जिहड़ा असां नशा लिया करदे न, है ना।
0: जी जी जी
1: तां
0: जी
1: दिखा साडा दिमाग कुत्थू है कने अहां कुत्थू न, है ना। तां अहां यो सोचणा पौणा, अहां यो अपनी ऊर्जा जिहड़ा असां लगाना पौणा दूए पाहें, अपने न्याणे जिहड़ा असां अध्यात्म ने जोड़ा, तुहां जिहड़ा खेल कूदा ने जोड़ा, है ना। जिहड़ा तुहां यो पसंद होंदा इहदी ने तुहां दा मां बाबां दा नां भी रोशन होंदा, है ना।
0: बिल्कुल
1: तो मैं
0: बिल्कुल
1: बोले रे गल तो तेरी भी ठीक है, पर अजकल दी पीढ़ी तुम्हें पता है कुछ समझ नहीं मनती, है ना।
0: जी जी जी
1: पर
0: जी
1: फिर भी जड़ा सा है अहां दा भी ये बनदा, अहां जड़ा त्यारे ते संकल्प करिए कि अहां नशे जड़ा सा ना करनी है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल कहना देखा कि जिम्मेदारी तो एक घर दे स्टार्ट होंदी है। अगर घर च एक अच्छा माहौल होगा, अच्छे जिया कि अहाँ मतलब अहाँ जिया होंगे मतलब बड़े पर निर्भर,
1: बड़े पर,
0: कि
1: हाँ जी हाँ
0: बड़े
1: जी
0: की आदत कुछ तरीके दी नन, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: जी बिल्कुल, हाँ जी
0: से मतलब ज्यादा बच्चे हमने मतलब भी ज्यादा अच्छी अच्छी जी गल्ला बातें कहन भी से करना चाहिए ना, एक शांत पूर्वक जो माहौल के भी घर च होना चाहिए। और जिस मतलब जी बच्चे जो अगर पढ़ने की रुचि है, खेलने की रुचि है, तो उस तरह का जो माहौल के भी पैदा के भी करना चाहिए।
1: बिल्कुल जी
0: जो अगर
1: बिल्कुल,
0: घर दे मतलब बच्चे जो अच्छे संस्कार मिलते, तो फिर से जलू बच्चा मतलब इक्की दुगे कहने मिलता
1: मिलता
0: है
1: है। हाँ
0: ना,
1: जी
0: तो
1: हाँ जी हाँ
0: इक्की
1: जी,
0: दुगे कहने भी मतलब बोल देना कि भी सीखता है
1: संगत
0: बच्चा।
1: संगत भी बड़ा फर्क पाती है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कई बारी विसंगत मिली आंदी, तो कई बारी बोलते रहा कुछ नहीं होंदा, लगाई ले, है ना।
0: जी
1: तिथु
0: जी
1: तो
0: जी
1: शुरुआत होंगी कि ना नशा लगी तो जाना, पर बाद जरा सा पूरे परिवार जरा सा तबाह करके रखी, है ना। तो
0: बिल्कुल
1: अहाँ चाहते
0: कहने जागरूकता के भी बड़ी बड़ी जरूरी है।
1: जी
0: और जागरूकता कहने कहने अगर कोई ऐसा साड़ा समाज का ऐसा बच्चा अगर नशे दी उस आई गया है, तो उसियो बिल्कुल हाँ प्यारे कहने, और उदे जड़े मतलब क्या सा मतलब साढ़े ताएं उदी जड़ी समस्या आई सकती है, साढ़े शरीर ताएं कि ऐसे खराब न कुण दी बीमारियां लग सकते हैं, उस हिसाब ने हाँ उसी एक जागरूकता कहने कहने भी समझाई सकते हैं।
1: बिल्कुल जी, प्यारे ने समझांगे ता ही जड़ा सा तिना समझना, है ना। तो हाँ आशा करते हैं अहां दे श्रोता भी इन्हां छोटियां छोटियां गल्लां दा जड़ा सा ध्यान रखगे। कने हुण अहां अपने श्रोतां दा करना मनोरंजन, पर सुनाने पहले कुछ एक संदेश।
0: जी
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
2: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
3: Equipped with features like a 360 degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
2: And now, it's yours at an effective price of just ₹5.59 lakh. Yes, ₹5.59 lakh. Valid till 31st July only.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
4: Nexa.
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just ₹6.70 lakh.
3: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.

0: किसान साथी आशा आशा करने कि यह प्यारा दे लोकगीत तुसां पसंद आया होना और इस लोकगीत दे बाद हुण असां चलना अगली जानकारी की तरफ।
1: जी बड़का चाचू, तो जानकारी है दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे च, है ना
0: जी जी।
1: इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हर घरे जिहड़ा सै लो मिले, है ना, अहां दे जिहड़े दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्र ने जिथे हले भी जिहड़ा सै लो नहीं पुजी हुई, ना पुजी भी तो कुछ डिम होंगी ही, है ना।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: अगर अह समय च थोड़ा दे आपू भी पिछे चली जाए तो अहां दे घरां च भी दिक्कत होंगी ही, डिम लाइट हो जाती है, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इस योजना के अंतर्गत सह जड़ियाँ समस्याएं हुई सह दूर हो, है ना। कन्नै कन्नै तुहां देखा इहदी कन्नै यह भी होया कि अहां दे जिहड़े भी दूर दराज के क्षेत्र उत्थे तक भी जिहड़ा सह बिजली जिहड़ा सह पहुँचाई गई, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: कन्नै बिजली का जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तुसीं भी मजबूती मिली, इस च तुहां ग्रामीण इलाकों च सब स्टेशनों का निर्माण करने का काम होइया या फिर नए ट्रांसफर लगाने का काम होइया, पुरानी जिहड़ियां तारां ते ना बदलने का काम होइया, कन्नै घट वोल्टेज की समस्या का भी हल होया, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: कन्नै इहदे कन्नै कन्नै ही दिखा बिजली आने ने बड़ियां सारियां जिहड़ा सा विकास का काम भी होया, है ना।
0: बिल्कुल दिखा कि जियां कि जिहड़े दूर दराज के ग्रां उत्थों कई बारी जियां लंबा कट लगी जांदा या फिर जियां अज इतनी देर इस ग्रां जो बिजली मिलनी है, इतनी देर इस ग्रां जो बिजली मिलनी है, तो दिसजे भी निजात मिली है। और दूजी गल जियां दिखा कि घरे ताईं हुण लग जिहड़ी बिजली के भी पहुंचाई जा करती है, कहने खेती बाड़ी के काम ताई लग बिजली के भी पहुंचाई जा करती है। कहने देखा कि ट्रांसफार्मर लगाने दे ए फायदा होया लोका भाऊ कि साड़ा जिया जड़ा किसान ऐसे मतलब हूँ जिया मशीनीकरण जिहड़ा मतलब युग के भी चलिया है ना, तो मशीना भी लगाना पौंदी बिजली कहना, तो इससे भी बड़ी जी परेशानी कहते भी रही ही, तो उनसे भी मतलब इस योजना के माध्यम कहने से भी परेशानियां कहने भी दूर हुई हैं,
1: दूर हुई हैं।
0: और अपना जिहड़ा मतलब एक लग दे जिहड़ा और भी जिहड़े काम काज कहन भी बिजली दे माध्यम कहने असर दे जिहड़े किसान साथी कहन भी करी सकदे हन।
1: बिल्कुल करी सकदे, कहने बड़का चाचू दी कन्ने कन्ने बिजली आने ने अहां दियां जिहड़ियां घरेलू किसान भैणां ने तिन्हां इह भी दिखा चुल्हा चौंका करने च भी तिन्हां दी
0: बिल्कुल
1: वधिया कहने बांका होई है, तिन्हां कहने न्याणे भी पढ़ने जिहड़ा सा खरा होई है, है ना।
0: कहने
1: बिजली पुज्जी तां अहां दी पंचायतां दी गल कर लिया, अस्पतालां दी गल करी दिया, स्कूलां दी गल कर लिया, तिथों भी तरक्की जिहड़ा सा होई, है ना
0: जी जी जी जी।
1: कहने बिजली जिहड़ा सा लो बोलते हैं सह अज चमका करता था इस योजना के अंतर्गत, यहाँ के ग्रां ग्रां च बिजली जिहड़ा सा पुजी, कने चमक जिहड़ी सह आई, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इहदे कन्ने ही हुण फिरते चलते रौनक मिले वहां, है ना।
0: बिल्कुल। तो सुनते ने लोकगीत
1: जी।

0: साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: दिखा बड़का चाचू जी, सावन का महीना भी लगी पिया है ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: शिव जी दे भजने च अहां जड़ा सा टियाले पर सुनाई तक ने, आशा करते ना अहां दे श्रोते पसंद भी आया होना है ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बड़का चाचू जी, है जंगा जानू है जो और जाना है सबरी भी की।
2: देखा भाई, हुण बोले ना साले दा त्यौहार है।
1: हाँ जी, हाँ
2: और
1: जी।
2: देखा कि जेडे साडे बड़े जेडे भरा न, बड़े बड़के न, अगर उन्हें बीड़ा उठाया था भाई, जाना था पौना है ना।
1: तो हाँ, बड़ी हिम्मत रखते अली भी।
2: और देखा कि बड़े बड़े दूर दे लोग आंदे न, श्रद्धालु आंदे न।
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: ता मतलब जेडे लोग उथो जिया कि हाँ गल करा करते ने, जेडे कि लम डल दी फिर करेरी डाल तक भी लोग जाते हैं, तो इतों भी मतलब जी जन्माष्टमी मनाते हैं। और वो उपर जियाँ कि बोलते ना कि जेडे बजुर्ग लोग कदे चढ़ी नहीं हुंदा, और फिर भी मते सारे जेडे श्रद्धालु कहन भी लम डाल तक भी जाते हैं। तो देखा कि हुण जग लगना तो शुरू हो जाते हैं भाई, जेड़ा ये अपना धारकंडी का क्षेत्र है जिया नौली का पुल है ना, इतों के जग लगना शुरू हो जाते हैं।
1: अच्छा।
2: और ये तेरे जग मतलब जियाँ कि करेरी तक करेरी लेख दे करी फिर एक उपर बोलते हैं कि जोताली माता।
1: अच्छा।
2: जोताशनी माता।
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: तेतु तक भी लोग जिया अपने अपने स्तर पर जिया जग लाए न।
1: अच्छा।
2: तो देखा कि हुण एक तो बोलते ना कि बोले अगर भोलेनाथ का हुक्म होगा तो बे जाना जाना।
1: अच्छा।
2: लेकिन हुण ये साढ़े जेडे जितने भी मतलब भरा ग्रां के माणू उन्हें एक बीड़ा उठाया था, ये हर साल अहां जाते हैं और इस साल भी भाई जाना है। तो अहां ये आशा करते हैं कि मते दे मते जड़े श्रद्धालु कैन भी आन, और ताई जड़ा मतलब जग लाने दे जड़ा जे मजा के भी आंदा है।
1: बिल्कुल ठीक। तुहां गला दे दिखा चाहे गल करी जाए, तुहां लम डले दी तां इस पाहे ते इंद्रहार पार करिए, तुहां नाग डल होई के, तुहां लम डल होई के सीधा कुंवर सिंह मणि मेसे भी जांदे।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और मते सारे श्रद्धालु कैन भी जांदे ना।
1: हां जी, हां जी। यात्रा करने दा तां पहले अहां दे सियाणे हुंदे तां शायद पैदल ही यात्रा करना पसंद समझदे है ना।
2: जी जी जी।
1: हुण गड्डियां पुजियां, रोड पुजी है ना, मते सारे लोग भी जेड़ा सा जाना लगी पे, पर आहे ओथी जेड़ा सा बड़का चाचू जी सफाई दा विशेष ध्यान जेड़ा सा रखना चाहिदा है ना।
2: बिल्कुल। कहने देखा कि ए बड़ी बांकी गल तुसा गला करदे ने लोका भाव की अपनी सब की तुहां मतलब जी प्लास्टिक ले करी जांदे ने या कुछ होर मतलब
1: खाने
2: पीने दी चीजां लेके जांदे ने, लेकिन ओथू तुहां जो बिल्कुल भी कूड़ा जेड़ा बिल्कुल नहीं फेंकना है। जिया सौगी ले कर जाते हैं तो वापस भी जरा कूड़ा कचरा के भी अपने बैग च वापस लेना है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
2: देखा कि ये देवी देवता के स्थान होंगे ना, और उतु बिल्कुल भी उस तरह का जरा हाँ माहौल नहीं मतलब ऐसा पैदा करना कि जिसके कोई नुकसान हो जाए।
1: बिल्कुल।
2: और देखा कि बोलते ना कि जेडे धार्मिक स्थल होंगे ना, उतु हाँ अगर श्रद्धा करने जाएंगे पूरी मतलब मन करने जाएंगे और एक अच्छा वो करेंगे तो उधर अच्छा ही जड़ा संजो के भी फायदा मिलता है मतलब।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
2: और ये भी बोलते हैं लोग का पाऊ कि बोलते हैं कि जेडे साढ़े ये देवी देवता इतने उच्चे उच्चे पहाड़ा पर ऐसी ऐसी जगह को बस इनता ये मतलब साफ सुथरा इन्हों जो एक वो चाहिए वातावरण चाहिए स्थान चाहिए जितों की भी ये भी भक्ति चैन भी लीन रेंदे ना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक रहा है। तो अहाँ आशा करते हैं इस पर्व च जड़ा सा बड़े सारे लोग हिस्सा लेंगे, पर मौसम जो दिखते हुए कने पर अपनी सेहत ये दिखते हुए ता ही जड़ा सा इन स्थान जड़ा सा जाना चाहिए।
2: बिल्कुल। कने एक चीज और मैं टियाले के माध्यम कने आग्रह करना चाहता कि जियां कि हाँ अगर पहाड़ी क्षेत्र की तरफ जाते हैं तो सांजो अपने जेड़े निघे कपड़े कहने भी से लेना नहीं भूलने।
1: बिल्कुल।
2: कई बार ऐसी बरखा लगती है कि घंटे दो घंटे एक ही जगह सांजो के भी ठहरना पड़ता है, और उस स्थिति च के भी सांजो मतलब अगर निघे कपड़े होंगे तो असा मतलब बड़े बढ़िया तरीके कहने मतलब उतू ठहरी सकते हैं।
1: मुझे लगता ठंडो हो बड़का चाचू तुहां भी।
2: बिल्कुल। पिछली बारी पाऊआ ऐसा होया कि मतलब
1: मजा टनिया
2: मतलब पहला जेड़ा साड़ा जिया ठहराव था मतलब करेरी लेक पर करेरी डल पर।
1: अच्छा।
2: दूजे दिन फिर यहाँ पे आगा निकले था फिर एक ही जगह मतलब संजो खड़ोना पे हालांकि तो भी जग लगे।
1: अच्छा, अच्छा।
2: और मते बरी बंदे थे मतलब हुण जेड़े जग लाने वाले होंगे तिना की यही मन च रही कि जितना भी साड़े हो सकता हाँ मतलब एक दूगे की मदद करना
1: मदद करी है ना। हाँ जी, हाँ जी।
2: और थे बेचारे मतलब उन्होंने चाई का भी प्रबंध किया सब कुछ किया, लेकिन बरखा ऐसी लगी कि सोचे कि भी अजय भरना है।
1: अच्छा,
2: तो
1: अच्छा।
2: उस स्थिति च सारे बोले मिले भगवान शिव जी का ना लिया पाऊगा दिखा कि भाई मतलब ऐसा ये गप लगी कि ऐसा ऐसा कोई काम नहीं करना इतो की जिसदे की साढ़े देवी देवता कहन भी परेशान होना।
1: हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल।
2: तो थोड़ी देर तो ऐसा लगे कि पता नहीं अज क्या होना है, लेकिन जी जी बरखा हटी है चाह पीती है वो तो मतलब उस हाबे ने फिर बोलते चढ़ाई च अपने आप गुरमोस भी आई जाती है।
1: जय शंकर करते जा कने चढ़ जा है ना।
2: बिल्कुल। कहने कई बार भगवान परीक्षा भी लंदा है कि भाई मतलब कुछ
1: मने चले सच्चे मने न चले क्या चले है ना,
2: और कुछ की तरह रस्ते भी ऐसे ना, लेकिन ये सब कुछ बोले भगवान दी वो दया है कि मतलब उन रस्ते जो भी ऐसे ऐसे लोग

0: चढ़ी अंधेरी के जी ना, मतलब भगवान दी दया बोली सकते, और देखा कि ऐसे मतलब पत्थर होंगे ना कि यहाँ
1: हाँ
0: लगता है कि मतलब जी कोई पत्थर ऊपर दे पोता है, मतलब भी कुछ नहीं रहना है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: जी
0: ये सब
1: बिल्कुल
0: कुछ देवी देवता का मतलब एक आशीर्वाद है, और जो सारे जो मिली जुली के ही प्रयास करना चाहिए था कि हाँ जरूर जाना है, लेकिन जेड़ा मतलब साफ सफाई का पूरा जेड़ा ध्यान के भी रखना
1: रखना
0: है।
1: है बिल्कुल जी बिल्कुल। तो हाँ अपनी गल्ला बातें थी विराम दिंदे ने कने सुनांदे ने एक और लोक गीत, पर उससे पहले कुछ एक संदेश।
0: जी
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
2: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
3: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
2: And now, it's yours at an effective price of just rupees 5.59 lakh. Yes, rupees 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
4: Nexa.
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just rupees 6.70 lakh.
3: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.

0: किसान साथियों इसी लोकगीत कने कार्यक्रम मौजा ग्राएं दिया ये तू संपन्न हो करदा कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रिया अंकित धीमान प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह हुण अपने टीआर दे सदस्य बड़का चाचू
1: कने लोके बावजूद अनुमति
0: अच्छा।

0: FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे 5वीं बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनाव में स्टेफान सेल मारी सीफ सिफेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रपति नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों के साथ काम करने की बड़ी संभावना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनाव में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की ये यात्रा पहली राजकीय यात्रा है। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की 8वीं बैठक आज से शुरू हो रही है। 2 दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक ब्रिक्स में आर्थिक विकास को समर्थन देने वाले स्थिर, निष्पक्ष और पूर्वानुमानित ढांचे को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को उजागर करती है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नव निर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। इससे पहले कीर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को प्रभावित परिवारों की तत्काल राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कार्यक्रम खेती बाड़ी सुना कर दे सारे ही किसान बागबान भाई बहना जो बड़का चाचू की तरफा दे राम राम। किसान साथियों आज ट्याले पर मिंजसो की लोका बहुता लोका भाऊजी राम राम
1: राम राम बड़का चाचू जी तुहें भी राम राम। कने जितने भी यहाँ दे श्रोता इस वेले यहाँ दे कार्यक्रम सुना देन उना सारे दा हाँ अपने इस कार्यक्रम च स्वागत कर देन है ना।
0: बिल्कुल
1: बड़का जी देखा बरखा जी ऐसा झमा झम बरा कर दी अंबर है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी बड़ी बढ़िया। कने बाकी गल है यहाँ दी जड़ी मुख्य फसल इस वेले ताने दी लगी है ना तीदी वास्ते तो बड़ी बढ़िया। कने बाकी है कहे की पिछे जड़ा ऐसा अंबर नहीं बरा कर दा तहां दे किसानां दे चेहरे जड़े ऐसा थोड़े दे मुरझाई जो है कहे की जड़े जिन्हें तो पानी लगता है तिन्हें फसल तो ठीक ही पर जड़े यहाँ दे उतर ड़ाले किसान है सह कुथी ना कुछ निराश है पर इन वर्खा करने तिना दे चेहरे पर भी जड़ा सह खुशी आई होनी है ना।
0: बिल्कुल कहने हाले तक भी मौसम विभाग के अनुसार 4-5 दिन जड़ी बरखा होने की पूरी पूरी संभावना है। कहने देखा कि इस बरखा के मौसम च अहां अपने कामकाज भी करने ने लेकिन कामकाज के कन्ने कन्ने अपनी भी जड़ी अहां सुरक्षा के भी करनी है ताकि देखा कि कई बार क्या होंगे कि ज्यादा बरखा लगती या फिर आसमानी जड़ी बिजली कड़कती है ना तो कई बार क्या होंगे कि नुकसान होने की भी जड़ी संभावना के भी रही है।
1: जी जी
0: अगर ज्यादा बरखा होंगी या फिर आसमानी बिजली कड़कती तो उस स्थिति च सानू थोड़ा जिहा मतलब भी अपने कम में जो ठहराव देना चाहिए और जियां ही स्थिति मतलब जियां सामान्य हो जाती है तो फिर अहां अपने काम काज कन भी करी सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक तो हाँ गलाया कहने बड़का चाचू दी कहने यहाँ जड़ा से अपने किसाना ताई इस कार्यक्रम च एक जानकारी भी जड़ा से साझा कर देन है ना।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: इस कड़िए च अज जड़ी गलबात अहां करनी है बड़का चाचू सह जड़ी है प्राकृतिक शून्य लागत खेती दे बारे च है ना।
0: जी जी
1: इस खेती बाड़ी की जरूरत कयो महसूस हुई किसान कहे कि दिखा अहां दे किसान जड़ा सह अहां दी मिट्टी जड़ी है सह दिन प्रतिदिन जड़ा सह अहां रसायना पाई पाई के जड़ा सह बंजर दे पाहन लग पई ही जाना है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ता एक ता ए भी हा कने दूई गल ए भी थी कि अहां दे किसानां दी जड़ी है बोले लागत जड़ी है सह बोले घट है कने तिसियो मुनाफा जड़ा सा ज्यादा होया है ना।
0: बिल्कुल
1: ता
0: बिल्कुल
1: लागत तो ता ही घटनी जालू तिदी खेती बाड़ी च जड़ा खर्चा घटगा है ना।
0: जी जी जी
1: इस खेती बाड़ी दा दिखा ना ही जड़ा सा शून्य लागत लागत मतलब ना दे बराबर होंदी है ना लागत
0: मतलब कोई खर्चा नहीं लगना इससे मतलब
1: जी।
0: जेड़ा भी इस जेड़े भी उत्पाद बनने से घरे दे ही बनने ने मतलब
1: बिल्कुल प्राकृतिक तौर तरीके कन्ने ही बड़का चाचू ए जड़ा इस खेती बाड़ी होंदी है कने इदे जनक जड़े सह सुभाष पालेकर जी थे है ना।
0: बिल्कुल
1: कने तेना सोचा गया कि अहां देखा अहां दे जड़े किसान हुण तां चलो बड़ियां सारियां जड़ियां सह योजना भी चली पईयां जियां किसान सम्मान निधि योजना भी चली पई है तां थोड़ा जी आर्थिक मदद जड़ी है किसाने दे उत्थों ते भी होआ करदी है ना।
0: बिल्कुल कहने देखा लोका भाऊ जी की जड़ी भी ये योजना ओ कर दे चाहे राज्य सरकार की गल की जाए या फिर केंद्र सरकार की तो असा दे किसानों के हित ताई ये योजना ओ कर दे ताकि असा दा किसान साथी के भी एक हर्षोल्लास कने अपनी खेती बाड़ी के कम काज जो करें और कुछ भी उन्हें जो अगर कोई नुकसान होने की संभावना रही है तो जिं कि जिक्र करते हैं जिं तुह कि भी जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तो इस तरह की योजना के माध्यम ने उन्हें जो जी राहत के भी मिलती भी है।
1: बिल्कुल जी मिला करती है कने शून्य लागत प्राकृतिक खेती का इस वेले जड़ा सा बड़ा चलन चलिया सरकार भी अपने बाहे ते जड़ा सा प्रयासरत है हर एक मंच ते जड़ा सा आवाज उठा करती है कि किसानों तो जड़ा सा शून्य लागत प्राकृतिक खेती बाड़ी जो लगा है ना। कने ज्यादा से ज्यादा किसान जड़ा सा प्रेरित करा करते हैं कने अहां का भी प्रयास रहा कि ट्याले ते अहां भी जड़ा सा जितने ज्यादा से ज्यादा किसान हो सकन उन्होंने जड़ा सा प्राकृतिक शून्य लागत खेती कने जड़ा सा जोड़ी सकन है ना।
0: बिल्कुल कने दिखा लोका भाव की असद ट्याले पर भी मते सारे जड़े किसान कहन भी आते हैं और कई बार असा भी उन्होंने खेत खलैना जो जाते हैं तो बड़े सारे जड़े किसान कहन भी इस ताई कहन भी जागरूक भी हुआ करते हैं और इस खेती जो अपना भी करते हैं।
1: जी जी
0: और कई का गलाना है कि देखा कि शुरुआती तौर पर जो विशेषज्ञ थे उन्होंने भी बोलिया है कि भी जिया शुरुआती तौर अहां अगर शून्य लागत प्रकृति खेती जो करते हैं तो उस तरह का उत्पाद नहीं मिलना है लेकिन धीरे धीरे जिया अगर अहां लगातार इस खेती करते हैं तो से उत्पाद भी मिलना कहन भी शुरू हो जाना है।
1: बड़ी गल है बड़का चाचू की इस ते जड़ा भी उत्पादन होना सह अहां दे स्वास्थ्य ताई अहां दे मिट्टी दे स्वास्थ्य ताई अहां दे पर्यावरण ताई बड़ा बढ़िया कने बांका होंदा है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कयो ना अहां तुहां जड़ा सह इसा खेती बाड़ी जो करिए कने अपने पर्यावरण जो जड़ा सह हरा भरा जड़ा सह बनाइए है ना।
0: बिल्कुल कने देखा कि अजकल कई तरह की जड़ी बीमारियां कन भी लगा कर दिया ना ये बीमारियां असा दे जड़ा खान पीने उस दे कारण कन भी लगा कर दिया ना।
1: बिल्कुल अहां तुहां लोकां जड़ा सह रसायना पाई पाई के जड़ा सह मिट्टी जड़ा सह बाड़े पेपर लगाए तो हूँ पिछले दे कणक की फसल वाही तो बोलिया जी अह अंग्रेजी मैल नहीं पाया तो बोले कणक ही नहीं हुई है ना
0: जी, जी, जी,
1: तो देखा अहा जो लोग अहम यदि पर निर्भरता अपनी बढ़ाई थी हूँ अहम अपनी निर्भरता जी असं यदि पर घटाना पौनी है कहना अहम जो अपने अहम के स्याने जिंक करते एक गां रखी होंगी कहने गोबर गोमूत्र कहने जो खेतीबाड़ी जो आती है तो तिस पाहें भी आना पौना क्या तिस भी बड़िया नोईया नोईया तकनीक ने यह नहीं है कि इसते जो उत्पादन नहीं होता बड़ा वधिया कने बांका उत्पादन होता कने भा भी खरा वधिया कने बांका मिलता इसने है ना
0: बिल्कुल
1: जी देखी लिया तो सब्जियां की गल करिए देसी सब्जियां की मांग बाजार च कितनी ज्यादा है ना
0: जी जी जी
1: अजकल तो जेडे भी लोग कने जागरूक हुई कने सह देखा देखी कौन दी चीज अहां स्वास्थ्य ताई खरी कने वधिया कने बांकी है तिस पाहें जेड़ा सह जा कर देन है ना
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो बड़का चाचू अहां आशा करनी कि अहां दे किसान बागवान जेड़ा सह सूने लागत प्राकृतिक खेती पाहें होंगे कने हुणा अहां अपनी गल्लां बातें देना इत्थी विराम कने सुन देन एक प्यारा दिया लोक गीत
0: बिल्कुल

0: किसान साथी आशा आशा करने कि यह प्यारा दे लोक गीत तुसां जो जरूर पसंद आया होना और इस लोक गीत दे बाद उन्हां चलना अगली जानकारी दी तरफ।
1: किसान साथियों कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता की कड़ी विच अहां दा प्रयास रहंदा कि हर दिन नोइयां ते नोइयां जानकारियां अहां तुहां तक पुजाइए, चाहे वह अहां दे कृषि विज्ञानिका द्वारा दी गई जानकारी हो या फिर अहां दे उन्नत किसान बागवान साथियों सोगी की गई गलबात हो। उसी कड़ी विच अज मिंजो मौका मिला कने शाहपुर दे धारकंडी क्षेत्र हारबो जिहड़ा ग्रां दा नां है इत्थों इक उन्नत किसान मेरे सोगी जुड़ा करदे हन करदे न इन्हां कन्ने गलबात। राम राम जी।
2: नमस्कार जी।
1: जी अपना नाम दस्सो।
2: सर काकू राम।
1: अच्छा काकू राम है ना।
2: हाँ जी।
1: काकू जी खेती बाड़ी करते हैं ना।
2: हाँ जी, हाँ जी।
1: अच्छा किन्ना क्या अरसा हुई है खेती करते?
2: खेती करने हुई है सर 7-8 साल।
1: अच्छा तो जमीन कितनी की है तो हाँ बाल?
2: जमीन तो सर अपने लेवल पे काटी है पर लीज पर।
1: अच्छा यानी कि पट्टे पर ले जिसे बोलते हैं ना।
2: हाँ जी, हाँ जी।
1: अच्छा किन्नी जमीन ले लीज पर तो? हाँ
2: लीज पर है 40-50 कनाल।
1: 40-50 कनाल। अच्छा ये सारी खेती दे काबिल है?
2: खेती दे काबिल।
1: अच्छा तो जी क्या क्या लगाते तो हैं सब?
2: इस बारी सर साड़ा चले ट्रायल बेस पर टमाटर है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है।
1: अच्छा
2: बाकी और सारी सब्जी है।
1: तो जिका जेड़ा धारकंडी का जेड़ा इलाका है तो देखा पानी की तो कोई कमी नहीं है ना?
2: पानी तो ठीक ही है,
1: सारी जमीन में पानी लगी जाता है ना।
2: हाँ जी, हाँ जी।
1: अच्छा इस वक्त जी तुम दसिया कि जी टमाटर लगाए हो कोई भिंडी गोभी वगैरह का ठीक है पैदावार सब्जियां दी?
2: हाँ बिल्कुल बढ़िया है।
1: अच्छा काकू जी बीज कुछ ते लेंदे तो? हाँ
2: बीज अपना तो ज्यादा थले ते रहंदा बाकी कुल्लू ते होंदा है।
1: अच्छा कुल्लू ते?
2: हाँ जी।
1: यानी कि खरा विश्वास वाला बीज होना है ना।
2: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो हाँ कुल्लू कुन दसिया तुम जब उतो ते लेने बीज?
2: कुल्लू सर उस साइड काफी काम किया कुल्लू से ना।
1: अच्छा
2: तो उत्थे थोड़ा
1: यानी कि खेती का काम करते है कुल्लू
2: भी? खेती नहीं एग्रीकल्चर का ये सब्जी सुब्जी का।
1: अच्छा कुल्लू च भी तो हाँ रह गए खेती बाड़ी की थी है ना?
2: खेती बाड़ी वहाँ सब्जी खरीदी है ना मार्केट में।
1: अच्छा यानी कि मंडिया समान ढोंदे है ना? यानी कि मंडिया समान पजाना कने कितों ते तुहां जो प्रेरणा मिलनी की
2: कुछ अपना
1: अपना करदे वे है ना अपना उत्पादन ही मंडी विच पजांदे है ना। अच्छा तो जियां 40-50 कनाल जमीन विच काम करना है कल्ले कर लंदे काम इतना?
2: नहीं वो बंदे हैं उत्थे 3-4 बंदे।
1: अच्छा बंदे रखे हुए ना। अच्छा तुहां दा जिहड़ा ये इलाका यानी कि इत्थों खेती कियां करदे? बैलां नाल करदे की?
2: पहले तो पुरानी तो बैला है ना आजकल थोड़ा मॉडर्न हो गया था
1: छोटे आई होने पावर ब्रीडर है ना।
2: पावर ब्रीडर
1: तो हाँ भी ले लिया होना अपना ना। खाद की गल करते हैं देखा ये जड़ा धारकंडी इलाका है प्रकृति पूरी यौवन भरा इस इलाके विच है ना। कुदरत का दित्या हर जड़ा सा कुछ है इतो ता खादा कौन कौन पाते तो? हाँ
2: खादा ज्यादा करे अपना गोबर ही।
1: अच्छा देखा बड़ी अच्छी गल है कि प्राकृतिक जेड़ा विधि करने तो हाँ खेती बाड़ी करा करते हैं ना बाकी और यूरिया वगैरह नहीं पाते?
2: यूरिया तो बिल्कुल टच नहीं करने सर।
1: अच्छा देखा बड़ी अच्छी गल है। हाँ जी काकू जी तो जेड़ा तुहां दा उत्पादन जल हुए तैयार हो जांदा ना कुछ भेज दे सी तुहां तैयार होने दे बाद?
2: इसी ओ सर कुछ कांगड़ा मंडी भेज दे।
1: हाँ जी
2: बक लेवल च हो तो थोड़ा कट लेवल च हो तो अपना शॉप पर जे जेड़ी मेन मेन दुकानां बड़ियां उनां नाल।
1: हाँ जी

0: अच्छा बिकी जांदा ना।
1: हाँ जी हाँ जी
0: अच्छा इसके बाद गल करते हैं ना जिया इतने स्तर पर तो हाँ जी खेतीबाड़ी करा करते हैं समय समय पर विभाग द्वारा जी कोई ट्रेनिंग चलदियाँ कोई कैंप चलते खेती दे तो हाँ भी कुछ सिखलाई वगैरह ले कभी खेती दी
1: नहीं विभाग तो नहीं सर
0: यानी कि जेडे अपने अनुभव
1: अपने
0: है
1: पैसे
0: ना
1: अपने।
0: अपने तजर्बे करने ही
1: हाँ
0: करते
1: जी हाँ
0: आए
1: जी
0: हैं जिया फसलों बच्चे कभी कोई रोग कीट बीमारी तो नहीं आई कभी
1: रोग
0: ऐसे
1: रोग तो आते रहते सर ना टाइम ने
0: क्या
1: उससे
0: करते निदान किए करते फिर तेदा।
1: तीदा कुछ स्प्रे या कुछ फिर अपने मेथड नाल
0: अच्छा यानी कि देसी तरीके ने ना
1: देसी तरीके। हाँ
0: ये जीव अमृत ये घन
1: जी
0: जीव अमृत हो या
1: हाँ जी हाँ
0: अग्नि
1: जी
0: अस्त्र ब्रह्म अस्त्र ना।
1: हाँ जी हाँ जी
0: अच्छा तो जी तो हाँ प्राकृतिक विधि कन्ने तैयार करते न पूरा सब्जियां ना
1: बिल्कुल जी
0: जल ये बेचनियां होन तो बाजार बिच दिखा प्राकृतिक विधि कन्ने थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है ना
1: हाँ
0: जी
1: जी
0: निराई
1: हाँ
0: गुड़ाई
1: जी
0: करनी है तो उस हिसाब से भाव मिली जाते फिर गां
1: उस हिसाब का रेट तो नहीं मिलता ना ये
0: है ना।
1: विदाउट खाद जड़ी है उसका भी सेम
0: हाँ
1: नहीं
0: कनाई कल ग्राहक दिखता
1: सस्ता
0: सस्ता कुछ बहा ना
1: सस्ते चक्रे से ना।
0: भले ही सह यानी कि
1: हाँ
0: भी जिस यहाँ बोलिए वो है पूरा
1: जी
0: जहर ही हो है ना।
1: हाँ
0: अच्छा यानी कि जड़ी तो हाँ जमीन लीजिए कितनी जमीन दसी तो हाँ पट्टे पर लीजिए
1: 50 कनाल जी
0: 50 कनाल है
1: हाँ
0: ना
1: जी
0: तो सह 1 साल वास्ते लेंदे या फिर।
1: एक साल का पेड़ है ना 30 साल बरी काम बनता जाना साल।
0: अच्छा यानी कि ये कुछ पैसे वगैरह लगते
1: हाँ
0: होने
1: जी
0: है
1: हाँ
0: ना
1: जी हाँ जी
0: साले
1: पैसे
0: साल देने है
1: साले
0: ना
1: साल
0: कहना अहाँ दे ग्रामीण भाषा च इसी अहाँ बोलते हैं कि चकोता है ना चकोता एक ये हावी चकोते पर जड़ी से जमीन ली है ना। ये अलावा जी हाँ तो हाँ जिक्र किया है कि देसी खादा तो हाँ अपने खेतर बिच पाते हैं कितने पशु रखे हो घर।
1: पशु तो सर अपने घाट है पर एरिया कलेक्ट कर लेंगे जिते तो ज्यादा है उत्ते गड़िया भारी के कहना फिर प्लाटे भरी।
0: अच्छा
1: हाँ
0: यानी
1: जी
0: कि पशु वाले की मुर्गियां वगैरह वाले भी पाई दे पोल्ट्री।
1: पशु वाले अच्छे मुर्गे ट्रायल किते हैं पर अजय।
0: अच्छा यानी कि
1: हाँ
0: मुल्ला लैनी खाद है ना
1: जी
0: तो जी जीपा का हिसाब करते हैं कि तुल।
1: जीपा जी
0: अच्छा जी आईडी है ना
1: आईडिया
0: किन्ने
1: नहीं
0: दी मिली जाती एक जीप।
1: ये जीप सर 2022-2500।
0: अच्छा जिसी यहाँ बोलते ना कि काफी एक हौसले वाला काम है कि देखा देसी खाद मुल्ला लैनी है
1: हाँ
0: फिर
1: जी
0: जेड़ा सा सब्जी उत्पादन करना है ना।
1: हाँ जी हाँ जी
0: अच्छा इस वेले बाजार बिच क्या क्या उत्पादन भेजा कर दे दो हाँ इस वक्त।
1: इस वक्त तो देखा सर ये मूली तो अपनी आई ही है
0: हाँ जी
1: कहना 2-4 दिन टमाटर चली पड़ना बड़े स्केल पर 2-3 महीने है फिर
0: अच्छा
1: गोभी फूलगोभी सारा चलने वाला है
0: हाँ जी
1: बाकी बैच बाय बैच लगा तो कहाँ भी सिस्टम।
0: जी काकू जी थोड़ा जहा अपने इसे ग्रांड के बारे च और भी दसा जिया जमीन ना जो तो हाँ कुछ बाड़बंदी वगैरह होगी थी कोई जी जंगली जानवर आते नहीं खतरा है तो फसल है कुछ।
1: बाड़बंदी दे है ने कि देखा जहाँ एक बंदा हो है
0: हाँ
1: तो
0: किसी
1: किसी को
0: थोड़ा
1: बड़ा
0: खर्चा ज्यादा पे
1: खर्चा
0: जाना।
1: ज्यादा करना
0: हाँ
1: सिचुएशन नहीं होती ना।
0: दो खेत कदा किन दो
1: हाँ
0: कदा
1: दो
0: किन है
1: करके
0: ना सारे
1: यानी
0: मिली
1: कि
0: के।
1: मिली के करना उस तब बाड़बंदी सी भी है
0: हाँ
1: सामने
0: बंदर वगैरह तो नहीं निकला
1: बंदर वार तो बहुत अंत के
0: और कौन कौन जानवर जंगली।
1: बंदर है सूर है।
0: अच्छा
1: हाँ जी इना ज्यादा अंत का है
0: अच्छा
1: बिर भालू आंदा बाद च। हाँ
0: अच्छा
1: जी
0: अच्छा भालू भी फसल खाई जाता है
1: हाँ जी हाँ जी
0: ना। अच्छा
1: नुकसान करता फसल है।
0: तो जिया खेतर च कोई राती तो नहीं पहरा वगैरह करना पौंदा जिया।
1: हाँ जो तो करना पौंदा सर अपना तो फिर
0: अच्छा
1: समान
0: उतो ही
1: समान
0: बनाया होना खेतर
1: उत
0: बिच ही जिया कुछ रहने जिया ना।
1: उत शेड बनाया उत्ते
0: हाँ
1: सारे।
0: क्योंकि दिखा इतनी मेहनत करनी का ना
1: हाँ जी
0: राती का दिखा बंदर आई आंदा था घंटे ची पूरा तबाह
1: आज तो
0: करी
1: एक
0: जाते।
1: घंटे का खत्म है।
0: हाँ अपने सुनने वाले भी जरा से दस दीजिए कि दिखा बाड़बंदी तो भी विभाग दी मती सारिया स्कीम चली
1: हाँ
0: है
1: जी
0: ना
1: हाँ जी
0: ये मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना है ना बाकी सिंचाई ताइया तो दिखा इसी इलाके में पानी की तो कोई कमी नहीं है।

0: या दो भी है, लास्ट दो ढाई दो दिए
1: अच्छा खर पानी होंदा ना।
0: खुला पानी।
1: अच्छा जी दिखा करना जी, तू पानी है तो तू हाँ सब कुछ तैयार कर सकते है ना,
0: बिल्कुल जी
1: कन्ने
0: बिल्कुल,
1: पानी दे बिना तो कुछ भी नहीं है
0: कुछ
1: ना।
0: नहीं।
1: तो जी यहाँ पानी जो लिफ्ट करने दाइया नहीं को, तो हाँ कोई स्कीम का साधन लिया जी यहाँ, कोई योजना चल दिया
0: स्कीमा साधन तो
1: नहीं
0: नहीं
1: है,
0: सर,
1: कुछ और दूर पानी पहुंचाना हो अपनी खाली जमीन च।
0: खाली तो आज विभाग के तरफ से कोई वो नहीं है,
1: अच्छा
0: कने अपना ही है सिस्टम, जो भी है अपना पाइप खरीदी के ले आओ।
1: अच्छा तो फिर जी पाइप पते पानी हूं सीधा खेतरा च छड़ी थे कि कहाँ टैंक वगैरह बनाया।
0: खेतरा जी
1: अच्छा
0: जल यूज करना तालो, अगर नहीं यूज
1: तो
0: होना से
1: पचाते
0: बार
1: खोल देना ना।
0: कंटिन्यू चला रहता बार ही ना।
1: अच्छा इदे अलावा जी दसिया तो हाँ इतनी बड़ी तो हवाल जमीन है, कुछ तो हाँ पट्टे पर भी लियो, कुछ इदे अलावा जी अपनी जमीना बिच पौधे वगैरह भी लगाए जी फलां फूलां वाले,
0: पौधे लगाए सर,
1: क्या दे लगाए। हाँ
0: पलम है, सेब है,
1: जी
0: जापानी है,
1: अच्छा
0: फिर कीवी है, कुछ
1: अच्छा
0: प्लांट
1: ता फल भी बेचते होने ना।
0: फल जी अपने खाने लायक तो ही है,
1: अच्छा
0: छोट ज्यादा पेड़ ने ना
1: हाँ कहने देखा दार कंडी चाहे जेड़ा भी उत्पादन होगा है पूरा नेचुरली होना है ना,
0: नेचुरली सर।
1: जिदी दे रंग रूप कने बनावट ही जड़ी से फल दी दिखने
0: बिल्कुल
1: वाली है ना। काकू जी आहां दी जड़ी नौजवान युवा पीढ़ी है तिना वाल भी दिखा अपनी खरी खुलियां जमीन ने इहदे बावजूद भी सह जड़ा से तां तू जिसी हां बोलिए कि नौकरियां पिछे नौकरी दी तलाश करा करदे ना, उस युवा पीढ़ी जो भी तो हां कोई ऐसा कोई संदेश दिया कि सभी जड़ा से अपना काम काज करी के अपना रोजगार चलाई पान।
0: युवा पीढ़ी तो है ना भाई, कि
1: हाँ जी
0: अपनी जमीन तो आजकल मॉडर्न तकनीक का सारी है ना,
1: हाँ
0: इस पर अच्छा है उस पर का प्लांट लगाइए या एग्रीकल्चर करा कुछ भी तो
1: हाँ जी
0: अच्छा आउटपुट है इससे।
1: हाँ जी
0: हाँ तो इस इनके घुसना पाना नौजवान भी ना,
1: हाँ
0: क्योंकि नौजवान होंगे ता ही इनके इसी आगे थोड़ी दी रफ्तार
1: खेती जो
0: मिले।
1: बढ़ावा
0: हाँ
1: मिल सकता है
0: जी
1: ना,
0: जी
1: देखा
0: हाँ
1: बुजुर्ग हाँ जैसा खूब मेहनत कीती है ना,
0: बिल्कुल जी
1: अगर
0: बिल्कुल।
1: अहा हूँ बुजुर्गों का साथ नहीं देंगे तो खेती किया होनी है ना
0: हाँ जी
1: जी। काकू जी तुह अपने खेतीबाड़ी के अनुभव अहाँ कन्ने साझा किए, अपना कीमती समय तुम दिता तुहां का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथियों, असा ये सुनी है जानकारी, कहने आशा करने कि इस जानकारी दे जरूर लाभ लेना है। और अगली जड़ी जानकारी ऐसे है मौसम दे बारे च।
3: तो मौसम दिखा किसान साथियों, मौसम विभाग ने भी जड़ा सा आने वाले की दू दिन ताई जड़ा सा ऑरेंज अलर्ट जड़ा सा जारी किया है ना, बरखा वारी जी ऐसा करके बरसात लगी है तो हाँ जड़ा सा आने वाले मौसम जो ध्यान च रखी के अपने खेतीबाड़ी के काम कार जड़े से करने हैं।
2: बिल्कुल
3: तो इस दे बाद जड़ा सा हाँ अपने श्रोताएं ले चलते स्थानीय सब्जी मंडी के थोक मोल भाव पा है, तो बड़का चाचू जी दसा क्या रे थोक भाव।
2: बिल्कुल, कने आलू रेन अज 10 दे 20 रुपये प्रति किलो, कने प्याज 34 दे 35 रुपये प्रति किलो, टमाटर 20 दे 30,
3: जी
2: लहसुन रे 180 दे 200 रुपये प्रति किलो, अदरक 200 दे 210, कने शिमला मिर्च 65 दे 75, अरबी 25 दे 30, खीरा रे 25 दे 45, कने मटर ने 110 दे 120 रुपये प्रति किलो, फूलगोभी 30 दे 50, बंद गोभी 25 दे 30, कने बैंगन 35 दे 40 रुपये प्रति किलो, कद्दू 20 दे 25 रुपये प्रति किलो, मूली री है 25 दे 30, टिंडा रे 50 दे 55 रुपये प्रति किलो,
3: जी
2: पालक 30 दे 35, कने हरी मिर्च री है 30 दे 35 रुपये प्रति किलो, धनिया 180 दे 200 रुपये प्रति किलो, तोरी 35 दे 40, भिंडी री है 25 दे 35 रुपये प्रति किलो, घिया 35 दे 40, कटहल रे 25 दे 40, कने करेला 20 दे 30 रुपये प्रति किलो, फ्रांस बीन 70 दे 75, गाजर 25 दे 30, कने मशरूम 150 दे 160। कने अगली जड़ी जानकारी ऐसे है फला दे बारे च।
3: जी फलां दी गल करिए किसान साथियों, तो सब ते पहले सेब, सेबे दा भाव मंडी च रे अज 100 ते 150 रुपए प्रति किलो, केला जड़ा ऐसा किसान साथियों 50 ते 60 रुपए प्रति दर्जन, अनार दी गल करिए तो अनार भी मंडी च जड़ा ता 100 ते 110 रुपए प्रति किलो, अनानास तुहां दा जड़ा ऐसा 35 ते 40 रुपए प्रति किलो, अमरूद दी गल करिए तो अमरूद दे भाव मिलदा तुहां दा 80 ते 90 रुपए प्रति किलो, मौसमी जड़ी ऐसा 50 ते 60, कने पपीता 45 ते 50 रुपए प्रति किलो। गल करिए किसान साथियों पलम दी, तो पलम तुहां दा अज 40 ते 60 रुपए प्रति किलो मंडी च रहा, तोता अंब जड़ा ऐसा 50 ते 60, अंब दशहरी 40 ते 60, नींबू जड़ा ऐसा 90 ते 100, कने नाशपाती 100 ते 150 खरा मुल मिला था नाशपाती, कने इदे बाद माल्टा भी जड़ा ऐसा 100 ते 110 रुपए प्रति किलो। तो ये थे अहाँ दे स्थानीय सब्जी मंडी कांगड़ा दे थोक मोल भाव, कने इस दे बाद फ्री ते ले चलते अपने साथियों रौनक मेले पाहें, कने सुनांदे ने प्यारा दिया लोक गीत।
2: जी।

0: किसान साथियों इसी लोकगीत कन्ने कार्यक्रम खेतीबाड़ी इतु संपन्न होकर दा कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रिया अंकित धीमान प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह हुण अपने टैल दे सदस्य बड़का चाचू
1: कन्ने लोके बाऊ दे अनुमति
0: अच्छा जी जय हिंद।

0: into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।

0: FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले,
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण,
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में करीब 7,500 पद भरने को दी मंजूरी। आशा वर्करों और नंबरदारों का मानदेय बढ़ा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा विकसित आलू की दो नई किस्मों को केंद्र सरकार ने खेती के लिए किया अधिसूचित। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से प्रदेश में बना अराजकता का माहौल। प्रदेश सरकार के आउटसोर्स भर्ती के नए नियमों की भाजपा ने की आलोचना, बेरोजगारों के हितों के खिलाफ बताया। और प्रदेश में अगले 24 घंटों में 5 जिलों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट, 4 जिलों में कल भी बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में करीब 7,500 पद भरने को मंजूरी दी है। ये निर्णय आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। ये पद शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि बजट घोषणाओं के अनुसार आशा वर्करों और नंबरदारों का मानदेय बढ़ाने को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा पीजी डॉक्टरों का स्टाइपेंड भी 50,000 से 65,000 रुपए तक बढ़ाया गया है।
1: हमारे जो नंबरदार हैं, उनका मानदेय जो है बढ़ाया गया है, वो 500 रुपए जो है। इसी तरह से जो आशा वर्कर्स है हेल्थ डिपार्टमेंट में जो कार्यरत है और वो हजारों की तादाद में है, उनका मानदेय भी जो है वो 1,000 रुपए जो है बढ़ाया गया है। आज सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे जो हिमाचल प्रदेश में जो नौजवान है, बेरोजगार नौजवान है, जो ये उम्मीद रखता है कि हमारे को सरकारी क्षेत्र में नौकरियां मिलेंगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के आज बहुत सारे प्रपोजल्स थे जिसमें कुछ खाली पोस्टों को भरने के लिए स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान की है, कुछ नई पोस्टें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में स्वीकृत की। लगभग कोई 7,500 के करीब पोस्टें जो है आज कैबिनेट ने जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में स्वीकृत की है।
0: मंत्रिमंडल ने हमीरपुर में एम्स स्तर का आयुर्वेदिक अस्पताल बनाने को भी स्वीकृति दी है। इसके अलावा आईजीएमसी शिमला में रेडियोथेरेपी की 30 नई सीटें शुरू की जाएंगी। बैठक में लिए गए एक अन्य निर्णय के अनुसार प्रदेश में मेरिट आधार पर सीबीएसई स्कूलों में भर्ती की जाएगी। मंत्रिमंडल ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सी ग्रेड के सेब खरीद को भी मंजूरी दी है, हालांकि समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर फैसला नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने आलू की दो नई किस्मों कुफरी अभेद्य और कुफरी रूबी को खेती के लिए अधिसूचित कर दिया है। ये दोनों किस्में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा विकसित की गई हैं। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश सिंह ने बताया कि ये अधिसूचना हिमाचल के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि आलू राज्य की प्रमुख नकदी फसलों में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे देश की गुणवत्ता युक्त बीज प्रणाली को मजबूती मिलेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इससे रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता भी कम होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में

0: प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ना तो अपने मंत्रियों और विधायकों की बात सुन रहे हैं और ना ही अधिकारियों द्वारा मंत्रियों की बात को सुना जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस कार्यप्रणाली की वजह से कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने सक्रिय राजनीति से मुंह मोड़ लिया है। कांगड़ा जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचित होने पर उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस सरकार की करारी राजनीतिक हार है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अपनी भाषा पर संयम रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने देश की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी है और इन नेताओं की याद में उच्च संस्थाओं के नामकरण का निर्णय गलत नहीं है। विनय कुमार ने कहा कि भाजपा के पास कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, ऐसे में झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। भाजपा ने प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स भर्ती के नए नियमों को बेरोजगार युवाओं के हितों के खिलाफ बताया है। कुल्लू से जारी एक बयान में पार्टी प्रवक्ता अखिलेश कपूर ने कहा कि नए नियमों के तहत वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी विभाग आउटसोर्स सेवाएं नहीं ले सकेगा। इसके अलावा आउटसोर्स व्यवस्था को केवल अति आवश्यक परिस्थितियों तक सीमित कर दिया गया है। भाजपा ने कहा कि इससे उन हजारों युवाओं के रोजगार के अवसर प्रभावित होंगे जो आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित सीमा चौधरी और उपाध्यक्ष पद पर अभिमन्यु कंवर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। चुनाव की प्रक्रिया आज धर्मशाला में पूरी की गई। चुनाव प्रभारी व विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि भाजपा ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद जीते हैं, जो संगठन की एकजुटता व जनता के विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि पंचायत व जिला परिषद चुनावों के परिणामों ने प्रदेश की राजनीतिक दिशा स्पष्ट कर दी है।
1: मुख्यमंत्री जी, आपका जो ये व्यवस्था परिवर्तन है उसका नमूना आप पूरे हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं। युवा हताश है, महिलाएं दुखी हैं, किसान चिंतित है। बिजली मीटर पर 300 यूनिट मुफ्त सिर्फ और सिर्फ काट की हांडी बन गई है। बिजली के मीटर्स पर अगर जब बिल आता है तो सेस जो है वो हिमाचल प्रदेश के 28 लाख उपभोक्ताओं के जेब में डाका डाला जा रहा है, यानी समाज पूरी तरह से दुखी है, उसी का ये परिणाम है।
0: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हाल ही में जान गंवाने वाले आदित्य शर्मा के परिवार ने मुख्यमंत्री से न्याय की मांग की है। आदित्य शर्मा के पिता राजेश शर्मा ने आज शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट कर इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने शोकग्रस्त परिवार के प्रति संवेदनाएं जताते हुए परिवार को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला के चहुंमुखी विकास के लिए कई बड़ी परियोजनाएं मंजूर की हैं। हमीरपुर जिले की उखरी पंचायत के विभिन्न स्थानों पर आज जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि जिले में विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों के राज्य स्तरीय कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं। सुनील शर्मा ने कहा कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों को भी हमीरपुर शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे जिले के विकास को बल मिलेगा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सुनील शर्मा के समक्ष पेयजल और विद्युत आपूर्ति से जुड़ी कई समस्याएं रखी। उन्होंने ट्रांसफार्मर स्थापित करने, क्षेत्र के मोक्षधाम की सड़क के निर्माण, महिला मंडल भवन की मरम्मत और इसके साथ ही अतिरिक्त कमरे के निर्माण की मांग भी रखी। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है और इसके प्रभाव से कई क्षेत्रों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में कल भी सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। रेड अलर्ट को देखते हुए कांगड़ा जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट

0: पर है। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि पौंग बांध का जलस्तर पिछले कल 1322 फुट दर्ज किया गया, जो अभी सुरक्षित स्तर पर है। उन्होंने कहा कि बांध की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर चरणबद्ध तरीके से पानी छोड़ा जाएगा। उधर सिरमौर की उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि मॉनसून की वर्षा से जिले में अब तक करीब 16 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
1: जो हमारा अभी नुकसान का स्टेटस है, नाहन की अभी 3 ब्लॉक्स हैं, रोड्स हैं पीडब्ल्यूडी की जो अभी ब्लॉक्ड है, बाकी सारी सब डिविजन्स की खुली हुई हैं और सारे हमारे NH ओपन हैं। इसके अलावा कोई भी DTR अफेक्टेड नहीं है और जल शक्ति की भी सारी जो वाटर स्कीम्स है वो अफेक्टेड नहीं है, सारी रिस्टोर्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 30 जून से लेकर 19 जुलाई तक का जो नुकसान हुआ है वो 16,98,87,000 का हुआ है और इसमें जो टोटल डेथ्स हुई हैं वो 8 हुई हैं।
0: भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल के AI उन्नयन को डिजिटल भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उन्होंने लोकसभा में कहा कि इस पहल से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में करीब 7,500 पद भरने को दी मंजूरी। आशा वर्करों और नंबरदारों का मानदेय बढ़ा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा विकसित आलू की 2 नई किस्मों को केंद्र सरकार ने खेती के लिए किया अधिसूचित। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से प्रदेश में बना अराजकता का माहौल। प्रदेश सरकार के आउटसोर्स भर्ती के नए नियमों की भाजपा ने की आलोचना, बेरोजगारों के हितों के खिलाफ बताया। और प्रदेश में अगले 24 घंटों में 5 जिलों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट, 4 जिलों में कल भी बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
3: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
2: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
3: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
2: जानकारी लें, अधिकार जानें।
3: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं रोजगार समाचार। स्कूल शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश लालपानी शिमला से प्राप्त सूचना के अनुसार कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक JBT के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों को प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर से या हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से JBT अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों में से जॉब ट्रेनी आधार पर भरने जा रहा है। इन पदों को जॉब ट्रेनी आधार पर स्थिर वेतन 18,000 रुपये अनुसार भरा जाएगा। प्रार्थी की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। पदों का जिलावार विवरण इस प्रकार है। बिलासपुर 9, चंबा 5, हमीरपुर 4, कांगड़ा 10, किन्नौर 1, कुल्लू 1, मंडी 15, शिमला 5, सिरमौर 11, सोलन 8, ऊना 3। आवेदन प्रक्रिया। पात्र अभ्यर्थी अपना पूर्ण विवरण निर्धारित बायोडेटा प्रपत्र में भरकर स्थायी पते, शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की सब प्रमाणित प्रतियों सहित निदेशक स्कूल शिक्षा हिमाचल प्रदेश लालपानी शिमला 171001 के नाम दिनांक 22 अगस्त 2026 तक डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। अनिवार्य शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता। आवेदक के पास कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक JBT पद हेतु प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों दिनांक 19/2/2025 तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा समय समय पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएं होनी चाहिए तथा अभ्यर्थी द्वारा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला अथवा सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो। बायोडेटा फॉर्म विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप स्कूल शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश लालपानी शिमला दूरभाष 01772812464 पर संपर्क कर सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारे
5: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से अब आकाशवाणी दिल्ली से संसद समीक्षा रिले की जाएगी।
6: विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सासी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अल सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सेकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की भी कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55,49,00,000 उपयोगकर्ता UPI से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ UPI लेनदेन में 314,00,000 करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। श्री चौधरी ने कहा कि UPI आधारित लेनदेन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार RBI और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने कई पहले शुरू की हैं। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह अपराध का एक साधारण मामला है और न्यायालय का काम केवल उचित जांच सुनिश्चित करना है। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की 8वीं बैठक आज से शुरू हो रही है। 2 दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण को आगे बढ़ाती है। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक ब्रिक्स में आर्थिक विकास को समर्थन देने वाले स्थिर, निष्पक्ष और पूर्वानुमानित ढांचे को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को उजागर करती है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नव निर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। इससे पहले कीर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिले में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमान की हानि पर भी गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल के समय में लोगों के साथ है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को प्रभावित परिवारों की तत्काल राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कुमार
1: किया गया है। इस योजना के तहत भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाने के उद्देश्य से एनसीईआरटी द्वारा एआई विषय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें 96,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार सीबीएसई भी शिक्षकों को शिक्षण अधिगम तथा मूल्य

234 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों के 64,775 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय करियर सेवा एनसीएस पोर्टल देश भर के सभी हितधारकों के निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। उन्होंने कहा कि एनसीएस परियोजना में अन्य बातों के साथ साथ राज्यों संस्थाओं के सहयोग से करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आदर्श करियर केंद्र एमसीसी स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। अब तक सरकार ने पूरे देश में 407 आदर्श करियर केंद्रों को मंजूरी दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रयास देश से सभी बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना है। बैंकिंग आउटलेट उपलब्धता की निगरानी एक भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित एप्लीकेशन जनधन दर्शक JDD ऐप द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व अनुमति के बिना वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट्स बैंकों, स्थानीय क्षेत्रों के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत में कहीं भी बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते कुल शाखाओं का 25% हिस्सा बैंकिंग सुविधाओं वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाए। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति CP राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपने संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनके इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। हंगामे के कारण उच्च सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके और कोई विधायी कामकाज भी नहीं हो सका। इससे पहले दिन में 11 बजे मॉनसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को

0: की सदस्यता की शपथ दिलाई। गुजरात से भाजपा के मुकेश भाई जे राठवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा, मध्य प्रदेश से भाजपा के महेश केवच, मेघालय से एनपीपी के जेम्स पगसा कोंकल संगमा, मिजोरम से खिंग्यांगटे लातलू आंगकीमा, राजस्थान से भाजपा के डॉ सतीश पूनिया, पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रकाश चेक बड़ाइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। खेड़ा ने अंग्रेजी में मुकेश भाई जे राठवा, महेश केवट, जेम्स पगसा कोंकल संगमा, डॉ सतीश पूनिया और प्रकाश गड़ाइक ने हिंदी में तथा सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रॉय ने बांग्ला में शपथ ली। बजट सत्र संपन्न होने और मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले निर्वाचित हुए कुछ अन्य सदस्य अंतर सत्र अवधि के दौरान सभापति के कक्ष में शपथ ले चुके हैं। सभापति ने नए सदस्यों का सदन में स्वागत किया। इसके बाद सदन में चार दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाही रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। श्री खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकता न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्यों ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल बंटवारे का मुद्दा उठाने की कोशिश की तथा सदन के बीच में आने का प्रयास किया। हालांकि सभापति राधाकृष्णन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सभापति ने बैठक स्थगित करने से पहले कहा कि वो गतिरोध को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा करेंगे। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने वाले विधेयकों के लिए तय किए गए समय के बारे में सदन को बताया। उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन और उन पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। उपसभापति हरवंश ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि सुबह से अब तक कोई कामकाज नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये उच्च सदन है और इस तरह का व्यवधान उचित नहीं है। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सभापति ने सत्र के प्रारंभ में अपने संबोधन में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। सभापति ने कहा, मैं सदन के सभी पक्षों के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखें। हालांकि संसदीय लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें इस तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए कि सदन की पवित्रता बनी रहे। व्यवधानों को इसके कामकाज को बाधित नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने सत्र के उत्पादक, रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण रहने की कामना की और कहा, मैं राज्यसभा के 271वें सत्र की शुरुआत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सदन की सार्थक चर्चाओं की गौरवशाली परंपरा रही है और मुझे विश्वास है कि इस सत्र उस विरासत को आगे बढ़ाएगा। हमारे सामने 19 बैठकें हैं और ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस बहुमूल्य समय का उपयोग राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करने और उन पर निर्णय लेने में करें। सभापति ने कहा, इस सत्र का एक महत्वपूर्ण विधायी और विचार विमर्श संबंधी एजेंडा है। मैं सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे कामकाज के समय पर निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान देश और उन लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी करता है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि सत्र से उच्च सदन के सचिवालय ने सदस्यों की सीटों पर लगे मल्टीमीडिया उपकरणों के माध्यम से 9 भाषाओं में कार्यवाही का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद शुरू किया है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इस सुविधा का सभी 22 अनुसूचित भाषाओं तक विस्तार किया जाएगा। उन्होंने इस व्यवस्था में सुधार के लिए सदस्यों से अपनी प्रतिक्रिया देने को भी कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशगान कार्यक्रम का पहला देशभक्ति गीत। सुनिए सिकंदर आजम फिल्म से, इस देशभक्ति गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पूरब और पश्चिम फिल्म से ये देशभक्ति गीत। इस देशभक्ति गीत को गाया है महेंद्र कपूर ने।

FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9 रिले की जाएगी।

0: कठिनाइयों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत। पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
3: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार

0: आर संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनोव में स्टेफान सेल मारिसे स्वेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आज़ादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनोव में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
1: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश देने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली SIT को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स द्वितीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
2: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में

0: लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले दो दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तेज बारिश के कारण पुंछ और राजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, राजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
2: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2-3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55,49,00,000 उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेन देन में 314,00,000 करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: appeals to end sit-in and restore normalcy. President Draupadi Murmu calls for stronger economic partnership between India and Moldova and greater cooperation in high-growth sectors. Heavy rainfall claims 4 lives in Jammu Division, taking death toll over past 2 days to 16. Red alert issued for very heavy rainfall over Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir tomorrow. And Labour Party leader Andy Burnham assumes office as the new Prime Minister of the United Kingdom. That is all in the news at 9. Good night.
1: FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं संगीतकार मदन मोहन। श्रोताओं, मदन मोहन हिंदी फिल्मों में संगीत देने के लिए संगीत सम्राट उनको कहा जाता था। 1930 में उनका जन्म हुआ। आवाज़ और सुर में दर्द घोल देना ही उनकी खासियत थी, और संगीत में भी। लता मंगेशकर के साथ इन्होंने कई फिल्मों के लिए संगीत दिया, जिसमें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गाने गाए। इनकी फिल्मों की बात करें तो वो कौन थी, हैदर, मेरा साया, दस्तक, ही रांझा आदि।

श्रोताओं, मदन मोहन को अपने जीवन काल में वो लोकप्रियता और सम्मान नहीं मिला जिसके वे वास्तव में हकदार थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी प्रतिभा को पहचान मिली। फिल्म वीर ज़ारा में उनकी पुरानी धुनों का इस्तेमाल किया गया। संगीत मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली ने उन धुनों को फिल्म के लिए तैयार किया। फिल्म के गीतों ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि मदन मोहन की धुनें समय से परे हैं।

श्रोताओं, मदन मोहन की सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वे दर्द भरी, मधुर और दिल को छूने वाली धुनें बनाते थे। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराई और गज़ल की नज़ाकत दोनों मिलती थी।

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर करण सिंह का गाया हुआ ये डोगरी लोकगीत।

0: FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई रिले की जाएगी।
1: आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की

0: प्रतीक्षा कीजिए, ये आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे।
1: माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी,
2: माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को अपने 6 पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री नादेन दला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के खम्मम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, जो अभी तेलंगाना में है, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेंदला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु सील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु सील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्त संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें नए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 बार उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धनपालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अमर बिन खलीपाल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्न माननीय सदस्यगण प्लीज, आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नहीं, सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। नो, मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज, प्रश्नकाल प्रश्न नंबर 1 धवन लक्ष्मण भाई पटेल।
3: प्रश्न नंबर 1।
4: प्रश्न संख्या 1, क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क भारत की धरोहर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई ज्ञान भारतम पहल के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं? ख, क्या भारत की पांडुलिपि और ज्ञान की विरासत के संरक्षण के लिए उक्त पहल में दक्षिण गुजरात के वलसाड निर्वाचन क्षेत्र के ढोडिया, कोकना और वर्ली समुदायों सहित जनजातीय समुदायों की मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं का प्रलेखन शामिल है? ग, उक्त पहल के अंतर्गत ऐसी जनजातीय ज्ञान परंपराओं सहित प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान की परंपरा के डिजिटीकरण, परिरक्षण और प्रसार में कितनी प्रगति हुई है? घ, ये पहल भारत की सभ्यता और ज्ञान की विरासत को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले व्यापक प्रयासों के साथ किस प्रकार जुड़ती है? और अंग, क्या सरकार के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग सहित इन डिजिटीकृत संसाधनों के साथ विद्वान जन के व्यापक जुड़ाव, सहयोग और लोगों के लिए इनकी सुलभता हेतु कोई रूपरेखा है?
5: मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के ढोडिया, कोकड़ा और वार्ली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है?
6: माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे? मोदी जी ने प्राण लेलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण लेलवाते हुए गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी, और तीसरा प्रण लेलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि युवा सबसे प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मेनू हमारी विरासत है, और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा। और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैन्युस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज हो चुके हैं और उसमें से 3,74,000 मैन्युस्क्रिप्ट अब ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैन्युस्क्रिप्ट होगी उसको भी सर्वे में शामिल करके उसको भी उसके प्रति संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा।
2: सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह है आप सदन के अंदर साथ चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर्स अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त रात के 10:13 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं काशिफ अहमद की गज़लों को हमारे कार्यक्रम गुलदस्ता में।

0: जलदाता ग्रैंड वाटर, कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त रात के 10:30

FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। सुनिए फिल्म गाइड से, इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने और संगीत है श्री बर्मन का और गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और रात्रि 11 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार

0: स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Monsoon session of Parliament began on a stormy note today. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the neat paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Our correspondent has the details.
4: The proceedings of both the Houses of Parliament were disrupted due to the repeated adjournments following opposition sloganeering on the NEET paper leak case and other issues. The Lok Sabha witnessed 7 adjournments while the Rajya Sabha was adjourned 6 times due to the opposition protest. Due to the disruptions, question hour in both the houses were also not taken up. Amid opposition uproar in the lower house, Union Minister for Law and Justice Arjun Ram Meghwal introduced the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In the Rajya Sabha, when the proceedings began at 11 a.m., 9 newly elected and re-elected members took oath as members of the upper house. Anand Kumar, Akashwadi News, Delhi.
3: Union Minister Jagat Prakash Nadda today met the representatives of protesters in New Delhi. In a social media post, Mr. Nadda said that a proposal came from the protesters to hold talks with the government this morning. The minister said the meeting took place in a cordial atmosphere and initial verbal discussion was held in detail with their delegation and they submitted a written petition to the government at around 4 p.m. Mr. Nadda urged all the protesters to end their sit-in and assist the administration in restoring normalcy. President Draupadi Murmu today called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth sectors. The president was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau today, referring to the vision of Vikasit Bharat 2047. President Murmu said India seeks partnerships based on trust and shared prosperity, while Moldova's strategic location and skilled workforce offer promising opportunities for Indian businesses. Earlier, President Draupadi Murmu and her Moldovan counterpart, Maya Sandu, held delegation-level talks. President Murmu also paid floral tributes at the monument of Stefan Cel Mareșii Sfânt in Chisinau. This is the first ever visit by an Indian president to Moldova. President is on a three-nation state visit to Moldova, North Macedonia and Romania. In the United Kingdom, newly elected leader of the Labour Party, Andy Burnham, has took charge as country's new prime minister. King Charles III invited the 56-year-old mayor of Greater Manchester to form a new government following the resignation of Keir Starmer. In his inaugural speech at 10 Downing Street, Mr. Burnham said he will make politics more about problem solving. Supreme Court today directed the union government to constitute a committee within 2 weeks to frame uniform guidelines governing the post-retirement facilities to be extended to retired chief justices and judges of the high courts across the country. A bench led by Chief Justice of India Suryakant directed that the committee shall be constituted in 2 weeks and submit its recommendations to both the union government and the Supreme Court within 3 months of its constitution. India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for very heavy rainfall over Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh during the next 2 days. Similar weather conditions will prevail over Madhya Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, West Bengal and parts of Northeast India during the next 2 to 3 days. In Jammu and Kashmir, 4 more people lost their lives in rain-related incidents across the Jammu division today, taking the death toll to 16 in the past 2 days.

छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 to 3 डेज. इन जम्मू एंड कश्मीर 4 मोर पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स अक्रॉस द जम्मू डिवीजन टुडे, टेकिंग द डेथ टोल टू 16 इन द पास्ट 2 डेज. एटलीस्ट 7 पीपल आर